0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठी तिथि के तदनुसार 27 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 और 48 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5:57

हो चुके हैं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। सात बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का और 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। ठीक 8 बजे जारी रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और ठीक 9 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने।

10 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 10:05 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक। ठीक 11 बजे एक बार फिर से होंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स।

ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 12:05 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक। एक बजे होंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। ये थी जानकारी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। पांच 5:59 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि

और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ साहब, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 MHz पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई सुबह, नई किरणों और नई उम्मीदों के साथ मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद, और अगले एक घंटे तक हम रहेंगे साथ कुछ अच्छे विचारों के साथ और उन सदाबहार गीतों के साथ जो आपकी सुबह को और खुशनुमा बना देंगे। दोस्तों, हर सुबह अपने साथ एक अनमोल संदेश लेकर आती है, यानी प्रकृति हमें बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा जाती है। सूरज कभी ये नहीं सोचता कि कल बादल थे इसलिए आज नहीं निकलूंगा, और हर दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ जो रोशनी है उसे बिखेरता है। यही संदेश हमें भी अपनाना है अपनी ज़िंदगी में। कई बार हम बीते हुए कल की गलतियों को याद करते हैं और आज का खूबसूरत दिन भी हमारे हाथ से निकल जाता है, लेकिन सच तो ये है कि ज़िंदगी हमें हमेशा आज में जीने का मौका देती है। बिना बीता हुआ जो वक्त है वो केवल अनुभव है, और आने वाला समय जो है वो संभावना है। हमारे पास अगर कुछ है तो वो है आज का पल, अभी का पल। वैसे एक शायर ने भी खूब कहा है कि हर सुबह तेरे नाम एक पैगाम लिखती है, हर सुबह तेरे नाम एक पैगाम लिखती है, उठ मुस्कुरा जिंदगी तुझे फिर से सलाम करती है। इसलिए नई उम्मीद के साथ जागिए और घर से निकलिए, और नए जोश नए उमंग के साथ

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद और प्रोग्राम है सुप्रभात। अक्सर हम सोचते हैं कि सफल लोग हमसे अलग होते हैं, उनके पास ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, ज़्यादा अवसर होते हैं या फिर किस्मत उनका साथ देती है। लेकिन अगर आप दुनिया के कहें कि ज़्यादातर सफल लोगों की कहानियाँ पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनकी

सबसे बड़ी ताकत कोई जादू नहीं था, बल्कि हर दिन एक छोटा सा कदम बढ़ाने का था। जैसे आपने सुना भी होगा कि एक कहावत है कि 100 मील का सफर पहले कदम से शुरू होता है। सोचिए अगर कोई किसान ये सोचकर बीज न बोए कि पता नहीं फसल होगी या नहीं, तो क्या कभी खेत लहलहा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बीज बोना उनका काम है और फल देना प्रकृति का काम है। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारा कहें कि अधिकार केवल कर्म करना है, परिणाम पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर कर्म करेंगे तो परिणाम खुद ब खुद आपको मिल ही जाएगा। इसलिए आज अगर आपके पास कोई सपना है, चाहे वो पढ़ने का हो, नौकरी का हो, अपने परिवार को बेहतर जीवन देने का हो, या खुद को बेहतर इंसान बनाने का, तो उसकी शुरुआत आज से ही करनी है आपको। बहुत से लोग सही वक्त का इंतज़ार भी करते हैं, लेकिन सच ये है कि सही वक्त कभी नहीं आता, जबकि सही वक्त को बनाया जाता है। शेर है कि चल पड़ा है जो मुसाफिर वो किनारा पाएगा, चल पड़ा है जो मुसाफिर वो किनारा पाएगा, हौसलों की रोशनी में हर अंधेरा मिट जाएगा। तो आज का संकल्प बस इतना सा रखिए कि कल से बेहतर बनने के लिए आज एक छोटा सा कदम ज़रूर उठाना है। चाहे 10 मिनट किताब पढ़ना ही क्यों ना हो, या फिर किसी अपने का हाल पूछना हो, या फिर अपने कहीं कि अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ देर टहलना ही क्यों ना हो। छोटे छोटे कदम जो हैं वो बड़े बदलाव लेकर आते हैं। इसलिए छोटे छोटे कदम ज़रूर ज़िंदगी में बढ़ाइए, तभी आप दूर तक ज़िंदगी को महसूस कर पाएंगे।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: जैसा आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर, मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। और दोस्तों, जिंदगी में खुश रहना कोई कला नहीं है बल्कि एक आदत है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक होगा तब हम खुश हो जाएंगे, लेकिन अनुभव कहता है कि खुश रहने वाले लोग परिस्थितियों का इंतज़ार नहीं करते बल्कि हर परिस्थिति में खुशी खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। ज़रा सोचिए कि सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट और चाय की चुस्की, घर वालों की मुस्कान, ये सब किसी बड़ी दौलत से कम नहीं है, लेकिन हम इन्हें महसूस तभी करते हैं जब हमारे मन में शिकायतों की जगह शुक्रिया होता है। और आज सुबह एक छोटा सा एक अभ्यास कहें या एक्सरसाइज करें कि अपने जीवन की 3 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप ईश्वर के आभारी हैं। यकीन मानिए आपका पूरा नज़रिया बदल जाएगा। सोच कर देखिए, जो मिला है उसे मुकद्दर समझ कर अपना लो। कहते हैं कि जो मिला है उसे मुकद्दर समझ के अपना लो, जो नहीं मिला शायद उसकी ज़रूरत थी ही नहीं। याद रखिए, तुलना हमेशा खुशी छीन लेती है, जबकि किसी चीज़ के प्रति कृतज्ञता जो है वो खुशी को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए खुश रहने की

डालिए। तो आज से अपने दिन की शुरुआत शिकायतों से नहीं बल्कि शुक्रिया अदा करने से कीजिए, क्योंकि जो इंसान छोटी छोटी खुशियों की कदर करना सीखता है ना, उसे बड़ी खुशियां खुद तलाश लेती हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। फिलहाल इस प्रोग्राम से इजाज़त, लेकिन 8 से 9 फिर आपसे मुलाकात होगी।

कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अर्थात प्रेम दाता शिरोमणि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, उनसे बड़ा अवतार कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना पात्र अपात्र कुपात्र के सोचे जगत के जीवों को प्रेम दिया, आज तक दे रहे हैं। और ये तो आपको पता ही है कि भजन भक्ति का उद्देश्य ही भगवत प्रेम की प्राप्ति है, और इस भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ता है। साधन भी इस तरह का करना पड़ता है कि अनर्थ निवृत्ति होते होते ही कई जन्म लग जाते हैं, तब कहीं जाकर के निष्ठा रुचि आसक्ति ये सब आता है, और तब कहीं भाव उदय होता है, तब कहीं जाकर प्रेम प्राप्त होता है किसी साधक को। पर श्रीमन महाप्रभु की विशेषता ये है कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो श्री राधिका का महाभाव और उनकी अंग कांति लेकर प्रकटित हुए हैं। यानी राधा कृष्ण जब एक हो जाते हैं तब वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं, और तब प्रिया जी की करुणा उनके अंदर इतनी अधिक होती है कि वो दिल खोल करके भगवत प्रेम प्रदान करते हैं। देखिए, हमारे आचार्य बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते हैं श्रीमन महाप्रभु के इस महादान को। वो कहते हैं, पतित हेरिया कांदे

नाहिक बांधे करुण नयने चाय, निरुपम हेम जनु उजोर गौर तनु अवनि घन गड़ी जाए। गोरा पहुर निचनी लोइया मरी, ओ रूप माधुरी पीरीति चातुरी तिले पाशरिते नारी। वर्ण आश्रम किंचन अकिंचन कारो दोष नहीं माने, कमला शिव बिही दुर्लभ प्रेम धन दान करलु जग जने। ऐछन सदय हृदय प्रेममय गौर भेलु प्रकाश, प्रेम धने धनी करलु अवनी वंचित गोविंद दास। आहा, तो देखिए हमारे गौरांग महाप्रभु जीव मात्र को प्रेम प्रदान करने के लिए कृत संकल्प रहे, प्रेम प्रदान करने के लिए ही उनका अवतार हुआ। महापापी हो या कोई धर्माचरण करे या कोई वेद धर्म का ही अनधिकारी हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, महाप्रभु समस्त पतित दुर्गत जनों की दुर्दशा देखकर व्यथित होकर क्रंदन करते थे, धैर्य ही धारण नहीं कर पाते थे। इसीलिए वो सबके प्रति करुणा से आर्द्र नयनों से दृष्टिपात करते हैं। आहा, और उस दृष्टिपात से पतित जीवगण समस्त पवित्र होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। उनके नाम मात्र से हृदय में पवित्रता आ जाती है, हृदय निर्मल हो जाता है, चित्त एकदम कलमश रहित हो जाता है मात्र गौरांग महाप्रभु का नाम लेने से। ये वही महावदान्य अवतार हैं जिन्होंने जगत के जीवों को हरिनाम संकीर्तन प्रदान किया, जिन्होंने हरिनाम का महत्व बताया, नहीं तो कौन जानता था हरिनाम के महत्व को, कौन लेता था भगवान का नाम इतनी इतनी बार, सारा दिन सारा समय भगवान का नाम कहाँ किसी को प्रिय लगता था। तो हरिनाम संकीर्तन को जगत के जीवों को प्रदान किया क्योंकि जीवों के प्रति महाकरुणा से आर्द्र श्री गौरांग महाप्रभु रहे हैं, जिनकी निरूपम स्वर्ण से भी उज्जवल गौर कांति समस्त दिशाओं को उज्जवल कर रही है, उल्लसित कर रही है। वही प्रेम आवेश में घन घन धरणी पर लुंठित हो रहे हैं, ऐसे प्रभु की बलिहारी जाए। ये जो गौर रूप है अर्थात श्री राधा भाव में श्री कृष्ण का रसास्वादन, और न्यासी वेश में अर्थात जब उन्होंने देखा कि जगत की दुर्दशा कितनी अधिक है, वो प्रेम तक को समझ नहीं पा रहे हैं, जो प्रेम का दान दे रहा है उसी की निंदा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सन्यास वेश धारण किया और जाति कुल विद्या धन आदि के अभिमानी दाम्भिक गणों का उद्धार करना प्रारंभ किया। ऐसे गौरांग महाप्रभु की महिमा भला कौन भूल सकता है, अगर गौर नहीं होते तो कौन खोज पाता वृंदावन धाम को, कौन जान पाता वृंदावन धाम कहाँ है, कहाँ है बरसाना धाम, कहाँ है गिरिराज जी, कहाँ है श्री राधा कुंड, कौन जान ही पाता और कौन यहाँ भजन करने ही आ पाता, सब तो लुप्त हो गया था। गौरांग महाप्रभु की कृपा हुई और उन्होंने अपने भक्तों को यहाँ भेजा लुप्त तीर्थ उद्धार करने के लिए, साधन पथ दिखाने के लिए कि कैसे साधन करना है, कैसे एक साधक को रहना है, उसकी रहनी कैसे होनी चाहिए, उसका भजन कैसा होना चाहिए, वैराग्य कैसा होना चाहिए और भगवत प्रेम कैसा होना चाहिए। महाप्रभु के अनुगत्य में जितने आचार्य इस धराधाम पर आए, उन्होंने प्रेम की संपत्ति को बिना पात्र अपात्र जाने सबको बांटा, सबको ग्रंथों के रूप में, आचरण के रूप में,

0: नाम की महिमा के रूप में। तो ऐसे गौरांग महाप्रभु जिन्होंने वर्ण आश्रम योग्य अयोग्य किसी भी चीज का विचार नहीं किया, किसी दोष का विचार नहीं किया, और उन्होंने जिस प्रेम को बांटा अनर्पित चरि अवदान, वो ऐसा प्रेम था जो लक्ष्मी जी महादेव ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ था। ऐसे प्रेममय श्री गौरचंद्र गौड़ मंडल में प्रकट हुए, श्री नवद्वीप धाम में प्रकट हुए, समस्त जगत को प्रेम धन से धनी करने के लिए। तो ऐसे गौरांग महाप्रभु की जय हो। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन ये कोई कोई जानता है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परम भगवान हैं। परम भगवान क्योंकि कृष्ण और श्री राधा ये तो दो हैं, लेकिन जब कृष्ण और राधा एक हो जाते हैं तब वो हो जाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और ऐसे ही किसी को अवतार नहीं कह दिया जाता, शास्त्रों में वर्णन आता है, शास्त्रों में, बिना शास्त्र प्रमाण के किसी को अवतार नहीं कहा जा सकता। हमारे श्रीमन महाप्रभु के लिए तो अनंत शास्त्रों में वर्णन आया, अथर्ववेदीय चैतन्य उपनिषद में कहा गया, जाह्नवी तीरे नवद्वीपे गोलोकाख्य धामनी गोविंदो द्विभुजो गौरः सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत सत्व रूपो भक्तिम लोके काश्यति। अर्थात भगवती भागीरथी के तट पर विद्यमान गोलोक नाम से प्रसिद्ध नवद्वीप धाम में सर्व अंतर्यामी महापुरुष महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत शुद्ध सत्व स्वरूप षड ऐश्वर्य पूर्ण श्री गोविंद भगवान द्विभुज श्री गौरांग रूप से अवतीर्ण होकर लोक में भक्ति का प्रकाश करेंगे। आहा, और इस तरह से और भी अनेक अनेक शास्त्रों में उनके बारे में कहा गया, अथर्ववेद में तो बताया ही गया, विश्वंभर विश्वेन माम पाहि स्वाहा। अर्थात प्रेम का दान कर त्रिभुवन को धारण और पोषण करने वाले परमात्मा विश्वंभर के श्री चरणों में मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, वो मेरी विश्व से रक्षा करें। ऐसे ही नारद पंचरात्र के शानामृत सार में बाल कृष्ण सहस्र नाम स्तोत्र में कहा गया, भक्त प्रियो भक्ति दाता दामोदर इभस्पति ही इंद्र दर्प हरो अनंतो नित्यानंद चिदात्मकः चैतन्य रूपश्चैतन्य चेतना गुणोर्जितः अद्वैताचार निपुणो अद्वैतः परम नायकः नीलः श्वेतः सितः कृष्णो गौरः पीताम्बर छदः शचीसुत जयप्रदः। इन श्लोकों में स्पष्ट रूप से भक्ति प्रिय भक्तिदाता दामोदर चैतन्य चैतन्य रूप नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु शचीसुत आदि नामों से सब परिकर श्रीमन महाप्रभु जी के बारे में ही तो कहा गया है। और श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, छन्न कलौ यद भव स्त्रियुगो अत सत्वम। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान की जब स्तुति की तो उन्होंने कहा कि हे पुरुषोत्तम, आप कलयुग में छिपकर गुप्त रूप से अवतार धारण करते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। तो ये जो गुप्त अवतार है यही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। तो इस तरह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण अतिशय सुंदर हैं, प्रिया जी उनसे भी सुंदर हैं क्योंकि महाभाव स्वरूपणी हैं। स्वयं भगवान जिनके महाभाव का आस्वादन करने के लिए अतिशय अतिशय कातर रहते हैं, ऐसी प्रियाजू हैं। लेकिन जब दोनों ही एक हो जाते हैं तो सोचिए वो कितने सुंदर होंगे, कितना सुंदर स्वरूप होगा, कितने करुणामय होंगे। ऐसे ही करुणामय हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने कलिहत जीव को ऐसा प्रेम दिया, ऐसी उपासना दी, और वो भी इतने सहज रूप में दी जिसकी कभी भी तुलना नहीं हो सकती है। कूर्म पुराण में कहा गया, कलिना दहिया मानाना मुद्धाराय तनुभृताम जन्म प्रथम संध्यायाम भविष्यति द्विजालय। अर्थात कली रूप दावनल से जलते हुए भक्तों के उद्धार के लिए कली की प्रथम संध्या में भूतल पर ब्राह्मणों के कुल में मैं अवतीर्ण होऊंगा। गरुड़ पुराण में और भी उनके बारे में बताया गया, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संधौ विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थः सन्यासी गौर विग्रह यद गोपी कुच कुंभ संभ्रम भरारंभेण संवर्धितम यद्वा गोप कुमार सार कलया रंगे सुभंगी कृतम यद वृंदावन कानने प्रविलसत श्री दामादिभिः स्तत प्रेम प्रकटम चकार भगवान चैतन्य रूपः प्रभु। कि मैं कलयुग की प्रथम संध्या में श्री मायापुर नवद्वीप में शचीनंदन रूप से पूर्ण अवतार धारण करूंगा। कलयुग की प्रथम संध्या में षड ऐश्वर्य पूर्ण परिपूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान ही दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के समीप श्री गौरांग रूप धारण करके संन्यास वेश में अवतीर्ण होंगे। गरुड़ पुराण के ये श्लोक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं अनेक अनेक शास्त्र हैं जहां पर श्रीमन महाप्रभु के बारे में बताया गया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के वैकुंठ वर्णन में कहा गया, यत्र योगेश्वरः साक्षात् योगी चिंतयो जनार्दनः चैतन्यव पुरास्ते वै सान्द्रानन्दात्मकः प्रभुः कलेह प्रथम संध्यायाम गौरांगो अहम महीतले भागीरथी तटे रम्य भविष्यामि शचीसुतः। जिस दिव्याति दिव्य वैकुंठ में योगी जनों के चिंतनीय सान्द्रानन्दात्मक जनार्दन भगवान योगेश्वर चैतन्य विग्रह से विराजमान रहते हैं, वे वैकुंठ अधिपति कहते हैं कि मैं कली की प्रथम संध्या में परम रमणीय भागीरथी के तीर पर भूतल में शची मैया से प्राकट्य धारण कर श्री गौरांग रूप में अवतीर्ण होऊंगा। ब्रह्म पुराण में भी इस तरह की बात कही गई, कलहे प्रथम संध्यायाम गौरांगो अहम महीतले भागीरथी तटे भूमि भविष्यामि सनातना। भविष्य पुराण में भी कहा गया, आनंदाश्रु कलारोम हर्षण पूर्णम तपोधन सर्वे मामेव द्रक्षन्ति कलौ सन्यासी रूपिण। कि हे तपोधन, कलयुग में सब भक्तजन मुझको आनंद अश्रु कलाओं से रोम हर्ष से परिपूर्ण वपु सन्यास वेश में देखेंगे। तात्पर्य यही कि ये सब प्रेम के अष्ट सात्विक विकार सन्यासी रूपधारी श्री गौर हरि में अनुभूत हुए हैं, इसलिए ये उन्हीं के अवतार का संकेत है। मत्स्य पुराण में भी यही कहा गया, मंडो गौरा सुदीर्घांग स्त्री स्त्रोतस्तीर संभव दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलौ युगे। वायु पुराण में भी इस तरह की बात कही गई, कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शचीसुतः स्वर्णद्युतिम समास्थाय नवद्वीपे जनाशये शुद्धो गौरः सुदीर्घांगो गंगा तीर समुद्भवः दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलौ युगे। यानी कली काल में संकीर्तन का प्रारंभ करने के लिए नवद्वीप नामक पुरी में मैं स्वर्ण कांति ग्रहण कर शचीपुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। हे देवताओं, कलयुग में मैं गंगा जी के तीर पर स्थित श्री मायापुर नवद्वीप में प्रकट होकर सर्वसाधारण पापी तापी जीवों को नाम संकीर्तन की परिपाटी सिखाऊंगा। उस समय के जीवों की दृष्टि में मैं मुंडित केश गौरवर्ण विशिष्ट अजानुलंबित भुजाओं से दीर्घांग और पात्र पात्र विचार अधिकार भूमिका से परे उच्च कोटि के परम दयालु रूप से अनुभूत होऊंगा। तो इस तरह और भी अनेक शास्त्र हैं, जैसे मार्कंडेय पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, उप पुराण, अनंत संहिता, इन सब में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में भविष्यवाणी की गई। विष्णु पुराण में भी भविष्यवाणी की गई। तो अनंत ऐसे शास्त्र प्रमाण हैं जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528 9811254।

हाँ, भगवत स्वरूप दिखाया। सब तो जानते नहीं थे कि वो भगवान है, लेकिन जब वो अभी घुटनों और हाथों के बल पर ही चलने लग रहे थे, तब उस समय एक ब्राह्मण देवता को, जगन्नाथ मिश्र जी जो गौरांग महाप्रभु के पिता थे, उन्होंने निमंत्रण दिया। और जब जब वो भोग लगाते भगवान श्री कृष्ण को, तब तब निमाई पंडित यानी ये जो गौरहरी थे अपने बचपन में, वो आकर उस भोग को खा लेते। जैसे ही भोग को पा लेते, वो पंडित जी चिल्लाने लगते, मेरा भोग जूठा हो गया, जूठा हो गया। ऐसे दो बार हुआ। निमाई को बार बार रोका गया, निमाई अर्थात गौरांग महाप्रभु, बार बार। और अंत में तो उनको एक कमरे में ही बंद कर दिया गया। किंतु जब तीसरी बार विप्र ने अपनी शालिग्राम जी को भोग लगाया, तो फिर से निमाई बाहर आ गए और भोग थाल में हाथ लगा करके भोग पाते हुए दिखे। विप्रदेव फिर से हाहाकार कर उठे। इतने में ही निमाई शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में और एक हाथ में मक्खन रख, दूसरे हाथ से मक्खन को खाते हुए अद्भुत सौंदर्य मंडित बाल गोपाल के रूप में दिखे। उन्होंने दर्शन दिया और विप्रदेव की तो अवस्था आप सोच सकते हैं क्या हुई होगी। वो तो प्रेम से गदगद हो गए अपने इष्ट का दर्शन पा करके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने विप्र को कहा कि इस लीला को गुप्त रखना। इसी तरह से दिग्विजय पंडित जी के बारे में भी आपको पता है कि कैसे वो आए और श्रीमन महाप्रभु से वो शास्त्रार्थ करने लगे। उनको सरस्वती जी सिद्ध थी, कोई उन्हें हरा नहीं सकता था, लेकिन वो हार गए श्रीमन महाप्रभु से, तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने सारी रात अनशन किया और सरस्वती माता का आह्वान किया। तो माता ने कहा, आज ही मेरी आराधना का यथार्थ फल तुम्हें मिला है। ये निमाई कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि मेरे पति स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके चरण कमलों में जाओ, शीघ्र आत्मसमर्पण करो। और फिर दिग्विजय पंडित सवेरे निमाई पंडित के चरणों में लकुटी की तरह गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। ठीक ही तो है, विद्या की परिसमाप्ति भगवत चरणारविंदों की शरणागति में ही तो सार्थक है। इसी तरह से जब भक्त प्रवर शिवास पंडित अपने घर में नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे, तो अचानक शचिनंदन गौरहरी वहां उपस्थित हो गए और शिवास जी का नाम लेकर पुकारने लगे। शिवास जी ने बाहर देखा तो क्या देखते हैं कि श्री शचिनंदन गौरहरी ने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर चतुर्भुज नरसिंह भगवान का रूप धारण कर लिया और पंडित जी तो प्रेम से गदगद होकर उनकी विधिवत पूजा करने लगे, स्तुति करने लगे। तो इस तरह से वहां भी उन्होंने अपने भगवत प्रकाश को प्रकट किया। और उस समय गौड़ देश में यवन शासन की संकीर्तन संबंधी निषेध आज्ञा से सब जगह भीषण आतंक छाया हुआ था। भक्तजन बहुत डर रहे थे, तो कोई समझ नहीं पा रहा था क्या किया जाए। शचिनंदन गौरहरी भक्तजनों की मनोभावना को समझ रहे थे। तो कहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, शिवराह का अवतार का प्रसंग चल रहा था। उस प्रसंग को सुनकर श्री गौर सुंदर शिवराह आवेश में गर्जन करते हुए अपने परम भक्त श्री मुरारी गुप्त के घर पधारे और उन्होंने वहां चतुर्भुज वराह मूर्ति को प्रकट कर भक्तों को निर्भयता प्रदान किया और संकीर्तन करने का आदेश दिया। उस दिन से भक्तजन निर्भय होकर सर्वत्र जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करने लगे। ऐसे ही व्यास पूर्णिमा का दिन था, नित्यानंद प्रभु को कहा गया कि आप व्यास जी की पूजा कीजिए और वो माला उठा करके महाप्रभु को खोज रहे थे। जैसे ही उन्हें गौरांग महाप्रभु नजर आए, तो उन्होंने उनके मस्तक पर ही वो पुष्पमाला डाल दी। जैसे ही माला श्रीमन महाप्रभु के मस्तक पर आई, उन्होंने अपने चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म और दो हाथों में हल और मूशल धारण करके षडभुज रूप में श्री नित्यानंद प्रभु को दर्शन दिया। नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही षडभुज मूर्ति का दर्शन किया, वो तो पृथ्वी पर गिरकर अचेत ही हो गए। और इसी प्रकार श्री गौरहरी शिवास भवन में एक बार भगवत भाव में आविष्ट हुए और सात प्रहर तक भक्तों को विविध प्रकार के वर प्रदान करने लगे। उन्होंने भगवत प्रकाश को प्रकट कर लिया। तो उन्हीं के आदेश से
श्री नवद्वीप के एक

छोर पर फूस की टूटी फूटी झोपड़ी में सारी रात उच्च स्वर से संकीर्तन करने वाले श्रीधर जी को बुलाया गया। और जैसे ही श्रीधर जी वहाँ आए तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा, देखो मैंने तुमसे बचपन में बहुत प्रेम कलह की, प्रतिदिन केले के पत्ते, केले का फूल, धोड़, ये सब कुछ ना कुछ मैं लेकर छीन कर सब्जी बनवा कर खा लेता था। श्रीधर जी तब सब्जी बेचा करते थे। श्रीधर जी को उपस्थित देखकर श्रीमन महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको भी अपना दिव्य स्वरूप दर्शन कराया। श्रीधर जी ने देखा अद्भुत श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्ण रूप, अधर पल्लवों पर मोहनवंशी विराजमान है। दक्षिण में श्री बलराम जी सुशोभित हैं। ब्रह्मा शिव सनत कुमार नारद शुकादि नाना प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। इस स्वरूप का दर्शन करते ही भक्त श्रीधर प्रेम में विवल हो पड़े। और इसी तरह से गौरांग महाप्रभु ने श्री मुरारी गुप्त को जगत जननी श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ नव दुर्वादल श्याम कांति विशिष्ट परम मनोहर श्री रामचंद्र जी के रूप से भी दर्शन दिए। और अद्वैताचार्य जी जो श्रीवास आंगन में गोपी भाव में आविष्ट होकर के नृत्य कर रहे थे, उनकी अभिलाषा थी कि मैं ऐश्वर्य रूप देखना चाहता हूँ श्रीमन महाप्रभु का, कृष्ण अवतार में जैसे आपने अर्जुन को दिखाया था। बस फिर क्या था, गौरांग महाप्रभु ने अपना विराट और भीषण विश्व रूप धारण करके अद्वैताचार्य जी को दिखाया। जिस प्रकार से दोनों सैन्य दलों के बीच में उस अद्भुत विश्व रूप का दर्शन करके अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे, उस समय अद्वैताचार्य जी भी परम विस्मित हो गए और उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की स्तुति करनी प्रारंभ की। उसी समय श्री नित्यानंद प्रभु भी वहां उपस्थित हुए। जैसे ही उन्होंने विश्व रूप का दर्शन किया, वो तो आंखें बंद कर दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। और जहां तक बात है भगवत स्वरूप को दिखाने की, तो जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी अपना षडभुज रूप दिखाया था श्रीमन महाप्रभु ने। और साथ ही श्रीमन महाप्रभु ने श्री रामानंद राय जी को भी अपना असली स्वरूप दिखाया था, जहां उन्होंने दिखाया श्री राधा कृष्ण मिलित स्वरूप, क्योंकि श्री रामानंद राय जी और कोई नहीं, उनकी कुंज की सखी श्री विशाखा जी हैं। और ये स्वरूप जैसे ही रामानंद राय जी ने देखा, वो भी मूर्छित हो गए थे। तो श्रीमन महाप्रभु जो कि यूं तो प्रच्छन्न अवतार रहे, परंतु उन्होंने गाहे बगाहे अपने भगवत आवेश को प्रकट ही किया अपने निज भक्तों के लिए, और हम सब जगत के जीवों को उन्होंने दिया कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम अमृत और अनर्पित चरी अवदान गोपी भाव। तो श्रीमन महाप्रभु के चरणों में हमारा अनंत कोटि प्रणाम है और उनके चरणों में हमारा यही निवेदन है कि प्रभु आपने हरि नामामृत पिलाया सबको, हमारे हृदय में भी हरि नामामृत के प्रति निष्ठा हो, आकर्षण हो, और हमें भी आप उसी भगवत नाम का रस पिलाइए, प्रेम प्रदान कीजिए, क्योंकि हम जैसे कलिहत जीवों का आशय आपके अलावा और कोई नहीं है। तो ये था आज का कार्यक्रम आपके लिए, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। 7वां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एब्सोल्युटली एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और बिल्कुल जून के महीने का आखिरी शनिवार आपका बहुत बहुत स्वागत। 7:05 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आशुतोष के साथ आप जुड़ चुके हैं और बिल्कुल इतना वादा है कि आपका ये जो सफ़र है ना बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम ना सफ़र का मतलब मज़ा नहीं लेते हैं। हम लगता हमेशा सोचते हैं कि मंजिल हमें क्या मिलेगी, हम क्या डेस्टिनेशन में क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, लेकिन अक्सर हम इसी से धोखा खा जाते हैं। लेकिन अगर आप सफ़र को एंजॉय करेंगे ना, इसको इसका पूरा मज़ा लेंगे, इससे इश्क करेंगे ना, तो आपको मंजिल बहुत बहुत आसान लगेगी और बहुत आसानी के साथ आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा जो सफ़र होता है ना बहुत ही कमाल का होता है, हमेशा आपके साथ जुड़े रहने का, और जब भी आपसे जुड़ते हैं मिलते हैं आपसे तो बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल इस गीत के साथ शुरू कर रहे हैं आज के दिन की, कनेक्ट रहिए हमारे साथ क्योंकि बहुत सारी अपडेट इंतज़ार कर रही हैं आपका यहाँ पर हमारे स्टूडियो से। बिल्कुल लाइव आपके साथ हम जुड़ चुके हैं, बाहर खिड़की से देख रहा हूँ सनराइज़ हो चुका है। कुछ ही पलों में बताऊँगा कि वेदर अपडेट क्या कुछ है आज के दिन आपके लिए। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

बिल्कुल, और आप भी इस पल को जी हमारे साथ बिल्कुल ऐसे एंजॉय करते रहिए। और फिलहाल आज के टेम्परेचर की बात करें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है और मिनिमम है 31 डिग्री सेल्सियस। और आज है 27 जून और बिल्कुल सूर्योदय हो चुका है सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त होगा आज 7:23 पर। तो आज के दिन की प्लानिंग आप अच्छे से कर सकते हैं, हो सकता है आप कहीं लॉन्ग वीकेंड पर कहीं घूमने निकली हो, तो लेकिन हमारे साथ आपका जो सफर है ना लगातार ऐसे बना रहेगा। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज के दिन से जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स यहाँ पर बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था आज के दिन, वो भी आपके लिए बहुत हम स्पेशली लेकर आए हैं चीज़ें। फिलहाल सुनते रहिए हमारे साथ, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

बिल्कुल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और बिल्कुल आज के दिन से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बताते चलें। आज के दिन 1957 को ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, और ये रिपोर्ट 25 साल के शोध पर आधारित थी। 1967 की बात करें तो लंदन के एनफील्ड में विश्व का पहला ATM स्थापित किया गया था। 1981 में कंबोडिया ने अपना संविधान अपनाया, और 1998 की बात करें तो मलेशिया में कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खोला गया आज के दिन। और 2015 में भारत के फिल्म इतिहास में अपना एक खास मुकाम रखने वाले फिल्मकार भारत रत्न सत्यजीत रे की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र ने अपने मुख्यालय में प्रदर्शित करने का फैसला किया था। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज का दिन, और आज है 27 जून, और आप हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। कनेक्ट रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज बहुत सारी अमेजिंग पर्सनैलिटीज की बर्थ एनिवर्सरीज हैं, डेथ एनिवर्सरीज हैं, और बर्थडे भी हैं। सो स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत खास है आज का एपिसोड, और आपके लिए एक और बहुत ही अमेजिंग ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज़ में निकल रहा है। 7:16 और 50 सेकेंड्स हो चुके हैं।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
3: म्यूजिक मस्ती।
9: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

बिल्कुल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिल्कुल, आज हम आपको लिए चलते हैं इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में जहां एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने अपनी बहादुरी और दूरदर्शिता और न्यायप्रियता से पूरे पंजाब को एक सूत्र में बांध दिया था। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह जी की, जिन्हें दुनिया शेर ए पंजाब के नाम से जानती है। और बिल्कुल, 13 नवंबर 1780 को गुजरेवाला में जन्मे रणजीत सिंह ने कम उम्र में ही नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल ली थी और महज 19 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया था और 1801 में महाराजा की उपाधि धारण कर ली थी। और उनकी ताजपोशी गुरु नानक देव जी के वंशज द्वारा कराई गई और यहीं से शुरू हुआ एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य का स्वर्णिम अध्याय। महाराजा रणजीत सिंह केवल एक विजेता नहीं थे बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अमृतसर, कश्मीर, मुल्तान और पेशावर, लद्दाख तक अपने राज्य का विस्तार किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने अपने जीवन काल में अंग्रेजों को पंजाब की सीमाओं से दूर रखा था। और साथ ही साथ ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी माना था कि यदि रणजीत सिंह एक पीढ़ी पहले जन्मे होते तो शायद पूरा हिंदुस्तान उनके अधीन होता। और महाराजा रणजीत सिंह की पहचान केवल उनकी सैन्य शक्ति ही नहीं, वे धार्मिक सद्भाव के प्रतीक थे। उनकी राज्यसभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समुदायों के लोग उच्च पदों पर कार्यरत थे और उन्होंने अपने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया और एक ऐसी मिसाल कायम की जहाँ किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। उनके शासन को सरकार खालसा कहा जाता था और उनके नाम के सिक्कों पर गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह का सम्मान अंकित हुआ करता था। 17 जून आज के दिन 1839 को लाहौर में उनका निधन हुआ, लेकिन आज भी पंजाब की मिट्टी में उनकी वीरता की गाथाएं गूंजती हैं। वे केवल एक राजा नहीं थे बल्कि एक ऐसे राष्ट्र निर्माता थे जिन्होंने एकता, साहस और धार्मिक सहिष्णुता की अमिट मिसाल पेश की। और इतिहास में एक ऐसे महान व्यक्तित्व हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा नेतृत्व शक्ति से नहीं बल्कि न्याय, सम्मान और दूरदर्शिता से स्थापित होता है। तो आज हम उनको नमन कर रहे हैं, उनको सम्मान से याद कर रहे हैं। फिलहाल आप भी हमारे साथ सुनते रहिए गुड मॉर्निंग टेली एनसीआर।

बिल्कुल। और भारतीय सेना इतिहास में स्वर्णिम अध्याय में जब भी साहस, नेतृत्व और विजय की बात होगी तब एक नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाएगा, बिल्कुल सैम मानेकशॉ। एक ऐसा सैनिक जिसने केवल युद्ध नहीं जीते बल्कि एक ऐसा देश का आत्मविश्वास बढ़ाया है, और एक ऐसा सेनापति जिसने दुनिया जानती है सैम बहादुर के नाम से। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में जन्मे सैम हरमुनसजी प्रेम जी जमशेद जी मानेकशॉ भारतीय सैन्य अकादमी के पहले बैच के कैडेट्स में शामिल थे, और सेना की वर्दी पहनने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा मोर्चे पर लड़ते हुए उनके शरीर में कई गोलियां लगी और डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की उम्मीद बिल्कुल भी बहुत बहुत कम हो गई थी, लेकिन सैम मानेकशॉ ने हंसते हुए कहा कि मुझे तो बस एक जिद्दी खच्चर ने लात मार दी है, और यही था उनका जज्बा। और मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी वो मुस्कुराते हुए निकल जाया करते थे। 1947 में जब कश्मीर युद्ध से लेकर चीन और पाकिस्तान के साथ हुए संघर्षों तक सैम मानेकशॉ हर चुनौती के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे, और लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जब पूर्वी पाकिस्तान में मानवाधिकार संकट गहराया और लाखों शरणार्थी भारत आने लगे, तब युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। और उस समय सेना प्रमुख के रूप में सैम मानेकशॉ ने जल्दबाजी के बजाय तैयारी को प्राथमिकता दी और पूरा समय लिया अपना, और जब समय आया तो उनकी रणनीति ने इतिहास रच दिया, और केवल 13 दिनों के युद्ध में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नया राष्ट्र उभरा, जी हाँ, जिसको हम जानते हैं बांग्लादेश के नाम से। और ये जीत केवल एक सैन्य विजय ही नहीं थी बल्कि भारत के आत्मविश्वास की जीत थी। उनकी नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण, पद्म विभूषण और 1973 में देश के पहले फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया। और सैम मानेकशॉ अपनी बेबाकी के लिए मशहूर थे और वे सच बोलने से कभी भी नहीं हिचकिचाया करते थे और लगातार बिल्कुल मानते थे कि बिल्कुल आपको सच बोलना चाहिए। और उनका मानना था कि एक सैनिक की सबसे बड़ी ताकत केवल हथियार नहीं बल्कि उसका चरित्र और आत्मविश्वास होता है। और बिल्कुल उनकी एक प्रसिद्ध बात आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि वो कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोलता है या फिर वो गोरखा है, बिल्कुल। और आज के दिन 2008 में इस महान योद्धा ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीय सेना के हर जवान के मनोबल में जीवित है। और सैम मानेकशॉ सिर्फ एक फौजी अफसर नहीं थी बल्कि नेतृत्व, साहस और राष्ट्र सेवा की जीती जागती मिसाल थे। बिल्कुल आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। आप भी उनके जैसा जोश अपने जीवन में लगातार बनाए रखें, उनको हम सलाम करते हैं।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और अब बात करते हैं एक ऐसे संगीतकार की जिनका संगीत पीढ़ियों की धड़कन बन गया और जिनकी हर धुन में था नवाचार, हर सुर में था जुनून और हर गीत में था दिल की धड़कनों का एहसास। जी, हम बात कर रहे हैं राहुल देव बर्मन, यानी कि हमारे चहेते पंचमदा की। आज उनकी जयंती है और 1939 को कोलकाता में जन्मे पंचमदा संगीत को विरासत में लेकर आए थे। उनके पिता सचिन देव बर्मन भारतीय सिनेमा के महान संगीतकार थे, लेकिन राहुल देव बर्मन ने अपनी अलग पहचान अपने अनोखे प्रयोगों और नई सोच से बनाई। और क्या आप जानते हैं कि उन्हें पंचम नाम कैसे मिला था? बचपन में वे अक्सर रियाज किया करते थे, प प प धुने गुनगुनाया करते थे, और अभिनेता अशोक कुमार ने जब ये सुना तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सारे गामा और ये तो पंचम है, और तभी से राहुल देव बर्मन बन गए पंचमदा। और उनके संगीत में भारतीय शास्त्रीय सुरों की मिठास भी थी और पश्चिम संगीत की नई ऊर्जा भी थी, और वे उन पहले संगीतकारों में थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों, माउथ ऑर्गन, बोतल, कंघी, रोजमर्रा की चीज़ों तक के अनोखी धुनों को रच दिया था अपने संगीत में। और यही वजह थी कि उन्हें भारतीय फिल्म संगीत का सबसे बड़ा प्रयोगधर्मी संगीतकार माना जाता है। और तीसरी मंजिल, यादों की बारात, कारवां, हर किसी, हम किसी से कम नहीं, शोले, 1942 लव स्टोरी, बिल्कुल ये तमाम वो फिल्म

हैं कि जिनका संगीत आज भी उतना ही ताज़ा लगता है जितना कि अपने दौर में लगता था। चिंगारी कोई भड़के की गहराई हो, देखेंगे आप तो कुछ तो लोग कहेंगे कि संवेदनशीलता। पिया तू अब तो आजा की जो मस्ती है वो आप उसको भी महसूस कर पाएंगे। और महबूबा महबूबा जो उनकी अनूठी आवाज़ थी, उसकी जो अलग लय थी, हर गीत में पंजमदा का जादू साफ दिखाई देता है, सुनाई देता है। और राजेश खन्ना, किशोर कुमार और पंचमदा की तिगड़ी 70s के दशक में हिंदी फिल्म संगीत की नई, बिल्कुल एक नया एक एंथम बन गया था उनका और एक नई ऊंचाइयों पर उसको ले गई थी वो। वहीं गुलजार साहब के साथ उनकी जोड़ी में आंधी, खुशबू, किनारा, इजाज़त जैसी फिल्मों में भावनाओं को सिरों में भाषा से संजो दिया और उनके जीवन में उन्हें कई उतार चढ़ाव भी देखने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी संगीत से समझौता नहीं किया। उनकी अंतिम फिल्म में से एक 1942 लव स्टोरी का संगीत आज भी उनकी प्रतिभा का अमर प्रमाण माना जाता है। और 4 जनवरी 1994 को पंचमदा हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वो आज भी अपनी धुनों के माध्यम से हमारे साथ अभी मौजूद रहते हैं। जब भी हम उनके संगीत को सुनते हैं ना, एकदम से नई ऊर्जा, नई रिफ्रेश हो जाते हैं हम बिल्कुल नई तरीके से। और बिल्कुल हर महफिल, हर रेडियो स्टेशन पर उनका संगीत दिलों में गूंजता है। और संगीत बदलता रहता है, दौर बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती। राहुल देव बर्मन यानी कि हमारे प्यारे पंचमदा ऐसे ही अमर धुनों के सर्जक थे और जिनका संगीत आने वाली हर पीढ़ी को यूं ही गुनगुनाने पर प्रेरित करता रहेगा। फिलहाल उन्हीं की फिल्म 1942 लव स्टोरी से ये अमेजिंग ट्रैक, जो कि उस वक्त बिल्कुल एंथम बन चुका था हर युवा दिलों की धड़कनों में, तो आइए इस गीत को एक बार फिर से सुनते हैं और उनको हम

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बिल्कुल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और शनिवार की सुबह में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। और बिल्कुल अब बात करते हैं उन लाखों सपनों की जो छोटे छोटे कारोबारों के रूप में हमारे देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। बिल्कुल, और हर वर्ष आज के दिन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी कि MSME डे मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई ताकि ये बताया जा सके कि छोटे और मध्यम उद्योग रोजगार सृजन और नवाचार और सतत विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बिल्कुल, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 95% से अधिक व्यवसाय MSME क्षेत्र में आते हैं और ये निजी क्षेत्र लगभग 60% रोजगार उपलब्ध करवाते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 50% GDP का योगदान देते हैं। और भारत में भी MSME क्षेत्र की को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, चाहे गाँव का कुटीर उद्योग हो, शहर का स्टार्टअप हो या फिर हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा उद्योग, IT सेवाएं, हर छोटा उद्यम आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रख रहा है। और MSME केवल व्यापार ही नहीं बढ़ाता बल्कि युवाओं को रोजगार, महिलाओं को उद्यमिता और के अवसर और स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान भी दिलाते हैं। और यही कारण है कि ये गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण रोजगार और नवाचार और सतत आर्थिक विकास जैसे वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो बिल्कुल इस सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस पर हम अपने आसपास के स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करें और वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और उन उद्यमियों का सम्मान करें कि जो अपने साहस और मेहनत से देश की प्रगति को बिल्कुल एक नई कहानी लिख रहे हैं।

बिल्कुल, और आज का दिन भारतीय खेल इतिहास की उस महान हस्ती को समर्पित है जिसने अपनी रफ्तार से दुनिया को चौंका दिया और करोड़ों भारतीयों को ये विश्वास दिलाया कि सपने चाहे कितने भी बड़े हों, उन्हें मेहनत और लगन से सच किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं भारत की उड़न भरी पीटी ऊषा की, जिनका जन्म आज के दिन 1964 को केरल में हुआ था और आज उनका बर्थडे है। आज उनको हमें हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और ये कहानी सिर्फ एक धाविका नहीं है बल्कि उस जज्बे की है जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद इतिहास रच दिया और बचपन से ही दौड़ने का शौक रखने वाली ऊषा की प्रतिभा को उनके कोच ओपी नंबियार ने पहचाना और यही पहचान आगे चलकर भारत की सबसे महान एथलीटों में से एक की पहचान बन गई। और साल 1984 को लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 400 मीटर बाधा दौड़ का फाइनल और पूरी दुनिया की निगाहें ट्रैक पर थी। पीटी ऊषा ने एक ऐसा प्रदर्शन किया कि भारत की उम्मीदें पदक तक पहुंच गई थी, लेकिन किस्मत ने मात्र 100वें हिस्से यानी कि 0.01 सेकंड के अंतर से उन्हें कांस्य पदक से दूर कर दिया। पदक भले ही ना मिला लेकिन उस दिन उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया और ये उपलब्धि आज भी भारतीय एथलेटिक्स के सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक गिनी जाती है। और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1985 की एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक, 1986 में सियोल और एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 1 रजत, और ये उपलब्धियाँ बताती हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। पीटी ऊषा को पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने करियर में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ उनके पदक नहीं बल्कि वो प्रेरणा है जो उन्होंने नई पीढ़ी को दी है। और आज भी पीटी ऊषा युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर भारत के खेल भविष्य को मजबूत बनाने में जुटी हुई हैं और उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि हर शुरुआत कहीं ना कहीं एक मेहनत से की जाती है और हार अंत नहीं होता बल्कि अगली बड़ी जीत की तैयारी होती है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कठिन रास्तों से होकर गुजरते हैं और उससे घबराते नहीं हैं। कि भारत की उड़न परी पीटी ऊषा को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आज हम उनको बर्थडे विश कर रहे हैं। अपनी ओर से फिलहाल आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ क्योंकि कुछ ही पलों में आपके मैसेजेस भी हम शामिल करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग।

बिल्कुल, और आपके इशारे भी हम समझ रहे हैं और आपके मैसेज हमारे पास लगातार हैं। राजकुमार संतानिया खोला महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं। राजेश भल्ला भी इस वक्त हमारे साथ मेरठ से कनेक्टेड हैं, गुड मॉर्निंग आपका भी, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही साथ पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हैप्पी मॉर्निंग्स भेज रहे हैं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस शनिवार को। और डॉली दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से हमारे जुड़ने का। और बस अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, मुझे निकलना होगा क्योंकि अब कुछ ही पलों में आपके साथ जुड़ेंगे खुर्शीद, बिल्कुल गुड मॉर्निंग डेलियंसिया का अगला सफ़र लेकर आपके साथ आठ बजे से, आठ से नौ के बीच आप सुन पाएंगे। और उसके बाद दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर मैं लौटूंगा नौ बजे से। फिलहाल अब चलता हूँ, लेकिन चलने से पहले एक और अमेजिंग ट्रैक निकाल रहा हूँ खास आपके लिए, इसे सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। शनिवार आपका बहुत अमेजिंग गुजरे और वीकेंड बहुत ही लॉन्ग था, तो इसलिए अब इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और समय का सदुपयोग कीजिए और उसको अच्छे से स्पेंड कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा समय। और अपनी सेहत का बहुत खास ख्याल रखना है, फिट रहना है और फाइन रहना है, इसलिए हमेशा खुश रहिए और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।

आपकी वाणी आकाशवाणी जब आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया 102.6 एफएम पर, मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और अभी आपके साथ इसके पहले हिस्से में आपके साथ कौन था? जी हाँ, आपके साथ थे आशुतोष। और इस दूसरे हिस्से में मैं रहूँगा आपके साथ इस पूरे घंटे। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं और पहला गीत सुनते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें करनी है आपसे।

ज़बा आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर आप शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी खबरों के साथ जो आपके आने वाले वक्त में आपकी रोज़ की यात्रा को बहुत ज़्यादा आसान करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए करीब 658 करोड़ रुपए की जो बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के मुताबिक यानी 270 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों को मजबूत किया जाएगा और उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। वैसे इस अभियान में सड़क की पुरानी परत हटाकर नई मजबूत लेयर बिछाई जाएगी, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे ताकि बरसात में जल भराव कम हो, और साथ ही नई रोड मार्किंग और रिफ्लेक्टर्स भी लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि दिल्ली की सड़कें ज़्यादा सुरक्षित हों, टिकाऊ और सुगम बन सकें और हमारी यात्रा बहुत खूबसूरत हो जाए। और ये काम राजधानी के कई इलाकों में कहें कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से किया जाएगा, तो बेहतर सड़कें सिर्फ सफ़र को आसान नहीं बनाती हैं बल्कि समय की बचत, सुरक्षित यात्रा और शहर के विकास की पहचान भी बनती है। और यही दिल्ली की नई रफ्तार है और यही है आज की पहली जो मैंने आपको न्यूज़ सुनाई है, पॉजिटिव न्यूज़। और बहुत अच्छी खबर है कि अब हमारे जो रास्ते हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर। मैं हूं आपके साथ खुर्शीद और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।
3: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
4: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
5: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
4: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
5: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
6: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

0: जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं। और अब एक बात ऐसी ऐसी खबर है जो दिल्ली के हजारों स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लेने वाली है। दिल्ली सरकार ने 75 सीएम श्री स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए करीब 265 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और इस योजना के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग सुविधाएं, नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडिटोरियम, बेहतर इंटरनेट और लैंड नेटवर्क के साथ ही हरित परिसर विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को ऐसा शिक्षण वातावरण देना है जो उन्हें भविष्य की चुनौती के लिए तैयार कर सके। तो दोस्तों, जब स्कूल बेहतर होते हैं ना, तो सिर्फ इमारतें नहीं बदलती बल्कि बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिलती है। और आधुनिक शिक्षा ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है। बहरहाल, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: जवाकाशवाणी रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद। और अब बात करते हैं अगली खबर की। वैसे अगली जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपके घर में कोई बेटा बेटी छोटा भाई बहन दिल्ली यूनिवर्सिटी में है या फिर आप खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर है। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में UG एडमिशन 2026 के लिए CSAC पोर्टल खोल दिया गया है। अब CUET UG क्वालिफाइंग करने वाले छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुन सकते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है डिजिटल है, जिसमें दाखिला पहले से ज़्यादा पारदर्शी और आसान हो गया है। अगर आपके परिवार में कोई DU का सपना देख रहा है तो आज ही ज़रूरी दस्तावेज तैयार कर लें और वक्त पर जो है आवेदन करना ना भूलें, क्योंकि नई शुरुआत है और नए सपने हैं। और उन सपनों को दिल से शुभकामनाएं हमारी पूरी रेनबो टीम की तरफ से। इसलिए नई जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं नए कॉलेज में, और आप नई उड़ान भरेंगे, नई भविष्य की नींव रखेंगे, तो आपके लिए बेहद बेहद शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।

साहब, अब आपको बता दें ट्रैफिक अपडेट। वैसे आज शनिवार है और शनिवार के दिन अपेक्षाकृत बाकी जो रोड पर आवाजाही है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। दिल्ली के अधिकांश मार्गों पर ट्रैफिक जो है इस वक्त सामान्य है, लेकिन भोगल फ्लाईओवर पर RRTS निर्माण कार्य के चलते कुछ डायवर्जन लागू हैं, लेकिन इस इलाके से गुजरने वाले वाहनों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह भी हम देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डायवर्जन वहाँ पर हो सकता है। लेकिन आश्रम चौक कॉरिडोर पर मरम्मत कार्य के बाद स्थिति पहले से बेहतर हो गई है और पीक आवर्स में हल्की सुस्ती देखने को मिल सकती है। और आज बारिश की संभावना तो है ही, क्योंकि बारिश की संभावना को देखते हुए कुछ इलाकों पर जलभराव होने पर ट्रैफिक धीमा हो सकता है, इसलिए इसकी भी आप घर से निकलने से पहले तैयारी कर लीजिएगा। और आकाशवाणी का रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं, मैं आपके साथ खुर्शीद।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

और जब आप बात करते हैं खेल और फिटनेस की, क्योंकि एक स्वस्थ शहर ही एक मजबूत शानदार शहर बनाता है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 123 में लगभग 145 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दी है। और करीब 26 एकड़ में बनने वाले इस स्पोर्ट्स हब में 40 मीटर का एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट्स और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इंडोर स्पोर्ट्स सुविधाएं और खिलाड़ियों के लिए आधुनिक ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विकसित किया जाएगा। और परियोजनाओं का निर्माण जो है वो चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। और इस पहल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ये होगा कि नोएडा और आसपास के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, युवाओं को अपने शहर में ही विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं जो हैं वो मिल सकेंगी। इससे नई खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा और लोगों में फिटनेस के प्रति भी जागरूकता जो है वो बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये जब शहर खेलता है ना, तो तभी जो शहर है वो आगे बढ़ता भी है। मैदानों में पसीना बहाने वाले युवा ही भविष्य में देश का नाम रोशन करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि आप देश का नाम रोशन करें। और सुनते रहिए रेनबो, FM रेनबो।

और अब बात करते हैं पर्यावरण से जुड़ी एक ऐसी खबर की जो पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। वैसे पूर्वी दिल्ली की संजय लेक का नाम तो आपने सुना है, संजय झील को फिर से उसकी प्राकृतिक खूबसूरती लौटाने का काम तेजी से चल रहा है और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने इस पुनर्जीवन परियोजना को अगले साल मई तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का जो लक्ष्य रखा है और इस परियोजना के मुताबिक झील की सफाई, किनारों को मजबूत करना और बायो स्लैब्स के जरिए जो वर्षा का जल है और भूजल संरक्षण, आधुनिक एरेशन सिस्टम और 5,000 से ज़्यादा देसी पेड़ पौधे का रोपण भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ झील को सुंदर बनाना नहीं है बल्कि इसे फिर से पक्षियों, जैव विविधता और स्थानीय लोगों के लिए एक जीवंत हरित स्थल के रूप में विकसित करना है। तो दोस्तों, शहर की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों से नहीं होती है बल्कि उसकी हरियाली और स्वच्छ जलाशयों से भी होती है और हमारी झीलें और पार्क सुरक्षित रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वस्थ और सुंदर दिल्ली मिलेगी। क्या ख्याल है आपका? सही कहा ना मैंने?

कुछ ऐसा तुम रखते हो जिगर तो इश्क करो खुद को मिट

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 एफएम पर और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। और अब मौसम की एक अच्छी खबर मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिल्ली वालों को आज

0: उन तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इंडिया गेट के पास आयोजित हो रहा है त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026। हर दिन सुबह 11 बजे से 9 बजे तक खुलने वाले इस फेस्टिवल में आपको मिलेगा त्रिपुरा का मशहूर जीआई टैग्ड क्वीन पाइनएप्पल और स्वादिष्ट नॉर्थ इंडियन व्यंजन भी आप यहां पर लुत्फ उठा सकते हैं उनका। और रंग बिरंगे हस्तशिल्प, लोक संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और बहुत कुछ। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि एंट्री बिल्कुल फ्री है। और तो इस वीकेंड परिवार और दोस्तों के साथ जाइए, घूमकर आइए और दिल्ली में रहकर ही उत्तर पूर्व भारत की संस्कृति और स्वाद का आनंद लीजिए। और आनंद इस बात से भी अब आपको लेना है कि अब इस प्रोग्राम से मुझे इजाजत चाहिए, क्योंकि जाऊंगा नहीं तो आऊंगा कैसे। बहरहाल जाते जाते सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि अपना ख्याल रखें और उनका भी बेहद ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द।
1: मैं जानू चल गया पागल में।

जी साहब, आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं, मेरे साथ मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। और दिल्ली वालों के लिए आज अच्छी खबर यह है कि अगर इस वीकेंड कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एक शानदार मौका आपका इंतज़ार कर रहा है। यानी आज 27 जून से 29

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: बिल्कुल जी, और शनिवार की सुबह में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका है और फिलहाल लेटेस्ट ट्रैक के साथ शुरू कर रहे हैं। बहुत ही धूम धड़ाका होने वाला है इस पूरे घंटे में, और उसके बाद आर डी बर्मन साहब को याद करेंगे उन्हीं की बहुत ही बेहतरीन नगमों के साथ रेट्रो हिट्स में। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए यहीं पर दिल के तराने, गाने नए पुराने।
3: सुनो सुनो, स्टार्ट होने लगा

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
1: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
1: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
2: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में, दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

0: हनी सिंह
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने FM रेनबो 102.6 पर।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ पूरे घंटे एंजॉय करने के लिए, और बहुत ही अमेजिंग ट्रैक्स आपके लिए हमने प्ले किए, और आर डी बर्मन साहब को आज हमने याद किया उनके रेट्रो हिट्स के माध्यम से। और फिलहाल बस अब मेरे चलने का वक्त हो चुका है, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि कौन से प्रोग्राम्स आप सुन पाएंगे। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुन पाएंगे मैचलेस म्यूजिक आवर सचिन ठाकुर के साथ, और उसके बाद आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स प्रियंका वर्मा के साथ, और प्लेट कूल आप सुन पाएंगे 12:05 से सचिन ठाकुर।

के साथ, और उसके बाद 1:05 से आपका फेवरेट प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग प्रियंका वर्मा के साथ आप सुन पाएंगे। और फिलहाल जो हमारे साथ हमारे लिसनर्स कनेक्टेड हैं वो उनको हम शामिल ज़रूर कर लें, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नुरैनी अंसारी, असना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं कुरवाली से, और इन्हीं के साथ हमें सुन रहे हैं राजकुमार संतानी अकोला महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। टोनी शाह और पुष्पेंद्र पाल सिंह इस वक्त गुनैना मंडी भटिंडा से कनेक्टेड हैं, और डॉली इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से कनेक्टेड हैं, राजेश बरला साहब मेरठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। फिलहाल आशुतोष लेते हैं आपसे अनुमति, बहुत बहुत शुक्रिया और अपना वीकेंड्स आपका बहुत अच्छे से गुजरे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्बनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में यह सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला रविवार को होगा। वहीं फीफा विश्व कप 2026 में 2 बार का विश्व विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बयाना ने स्पेन के लिए विजयी गोल किया। ग्रुप एच में काबू वर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबू वर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अभी तो पार्टी शुरू हो रही है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

एंड विद दिस सॉन्ग भाई अब मैं भी चली क्योंकि प्रियंका इज इन द स्टूडियो राइट नाउ एंड इट्स टाइम फॉर मी टू रैप अप. आई विल बी बैक विद प्ले इट कूल शार्प एट 12:05 नून वेयर आई विल बी टेकिंग योर सॉन्ग रिक्वेस्ट एज वेल. अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड एंड कीप स्माइलिंग. दिस इज सची साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. सी यू अगेन एट 12. बाय बाय.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉ. मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रोजेक्ट हॉकाई के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर हवाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट तैनात की गई हैं। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला अब इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व कप विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। ग्रुप एच में काबो वेर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबो वेर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। लाइट कैमरा एक्शन सिर्फ एक फेज नहीं है बल्कि हार्ट बीट है बॉलीवुड की, जहां पर बनती है वो मूवीज जो करती हैं आपको एंटरटेन, आपके इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड कराती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं, मोटिवेट करती है और दिल के अंदर एक पेट्रियोटिक जज्बा जगाती है, देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा। So guys, let's dive into the vibrant world of Bollywood, जिसके लेटेस्ट अपडेट्स के साथ सर्व होंगे हैपनिंग गाने। इसलिए लॉगिन करें आप हमारे रेडियो ऐप या फिर चले रेडियो के क्लोज, क्योंकि हम देंगे आपको बॉलीवुड डोज आकाशवाणी रेनबो पर, जहां मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके

वेल दोस्तों, सिर्फ ये ट्रैक नहीं है, सिंपल एक सोलफुल हीलिंग सॉन्ग है। और जब आप किसी यू नो आप इमोशनल हो, कंफ्यूज हो, या किसी पेन से गुजर रहे हो, या आपका कोई लॉस हुआ, तो ये गाना एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बन जाता है ना। स्पेशली इस गाने की जो एक लाइन है, जो तेरा था वो जाकर तुझमें समाया, ये लाइन लॉस और एक्सेप्टेंस का एक स्पिरिचुअल फिलोसफिकल एक्सप्रेशन है। आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। सुरों के सागर की लय और रवानी थे पंचमदा, सुरों के सागर की लय और रवानी थे पंचमदा, वो हर सांस को एहसास की धुन और हर गीत को मेलेडी बना देते थे। एक तरफ उनके संगीत में इंडियन क्लासिकल की गहराई और रूहानियत थी दोस्तों, तो दूसरी तरफ कंटेम्प्रेरी साउंड्स और ग्लोबल म्यूजिक का दिलकश संगम था दोस्तों। उनका हर साउंड सुरों का कैलाइडोस्कोप था, जहाँ हर मेलेडी एक नया एहसास और हर नोट एक कहानी थी। आर डी बर्मन यानी राहुल देव बर्मन यानी हमारे पंचमदा, द मैवरिक मैस्ट्रो हु रीडिफाइंड बॉलीवुड म्यूजिक। दोस्तों आज है इनकी बर्थ एनिवर्सरी, 27 जून 1939 को कोलकाता में पहली बार गूंजी इनकी आवाज़ फिजाओं में। इलस्ट्रियस कंपोजर सचिन देव बर्मन और लिरिसिस्ट एंड म्यूजिशियन मीरा देव बर्मन के इकलौते

बेटे राहुल देव बर्मन यानी हमारे पंचम दा के लिए संगीत सिर्फ एक विरासत या कला नहीं बल्कि रूह की आवाज, जज्बात की जुबान और संगीत जिंदगी की धड़कन थी। बचपन से ही सुर उनकी सांसों में बसते थे और धुनें उनके ख्यालों में जन्म लेती थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में आर डी बर्मन ने अपना पहला गाना ए मेरी टोपी पलट किया कंपोज कर दिया था, जिसके बाद से उनके पिता ने फिल्म फंटूश ने इनकी धुनों को यूज किया। इतना ही नहीं, आइकॉनिक ट्रैक है ना, सिर तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए, इसकी जो धुन है ना वो पंचम दा ने बचपन में ही कंपोज कर दी थी, जिसके बाद फिल्म प्यासा के साउंड ट्रैक का हिस्सा बनाया गया। उस्ताद अली अकबर खान से सरोद और समता प्रसाद जी से तबला की बारीकियां सीखने वाले पंचम दा ने क्लासिकल म्यूजिक की गहराइयों को समझा। अपने करियर के शुरुआती दिनों में पंचम दा ने अपने पिता एस डी बर्मन को असिस्टेंट के रूप में उनके साथ काम किया और उनके ऑर्केस्ट्राज में अक्सर हारमोनिका की मधुर धुनें भी प्ले करते थे। फिल्म 16 साल के सुपरहिट गीत था ना हे अपना दिल तो आवारा में सुनने वाले जो माउथ ऑर्गन की दिलकश और एन्चेंटिंग धुन है ना, वो भी पंचम दा ने ही बजाई थी। आर डी बर्मन की फर्स्ट रिलीज फिल्म एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर थी 1961 की छोटे नवाब। जब 1960 से मैं कहूंगी 1960 से लेकर 1990 तक पंचम दा ने भारतीय सिनेमा को सुरों की कैसी झालर से सजाया जो आज भी उतना ही फ्रेश, वाइब्रेंट और दिलकश महसूस होता है। 300 से भी ज्यादा फिल्मों को धुनों से निखारा, जिनमें हिंदी के अलावा बंगाली, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मराठी फिल्म भी इंक्लूडेड है। उनकी मैं कहूंगी अपनी खास आवाज से उन्होंने अपने कई गीतों को भी यादगार बनाया है। इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल आर डी बर्मन ने सिर्फ म्यूजिक कंपोज नहीं किया दोस्तों, बल्कि हिंदी सिनेमा के म्यूजिक को नए डायमेंशंस दिए हैं। फिल्म खुशबू का गीत ओ माझी रे में उन्होंने अलग अलग लेवल से बॉटल्स में फूंक मार के एक अनोखा मेस्मराइजिंग फूंक साउंड क्रिएट किया। वहीं सत्ते पे सत्ता के लिए उन्होंने सिंगर एनेट पिंटो से गागल करवा कर एक यूनिक बैकग्राउंड इफेक्ट रिकॉर्ड करवाया और जो उस दौर के लिए म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट से कम नहीं था। और फिल्म चुरा लिया है तुमने जो दिल को, इसकी दिलकश धुन में सुनाई देने वाली जो खनक है वो कप्स और सॉसर्स की हेल्प से क्रिएट की गई है। जबकि शोले का आइकॉनिक गाना महबूबा ओ महबूबा की ओपनिंग बीट्स के लिए पंचम दा ने बॉटल्स ने फूंक मारी। दोस्तों उनकी कॉम्पोजिशन एक म्यूजिकल क्लाइडोस्कोप की तरह थी, जहाँ हर सुर एक नई सोच और एक नया एहसास लेकर आती थी। उनकी क्रिएटिविटी और म्यूजिकल ब्रिलियंस आज की जनरेशन को इंस्पायर करती है और आगे भी करती रहेंगी। दौर आते रहेंगे, दौर जाते रहेंगे, लेकिन पंचम दा की धुनें फिजाओं में गूंजती रहेंगी। चलिए अब हम उन्हीं की धुनों से निखरे एक ट्रैक को सुनते हैं जो है सागर किनारे दिल ये पुकारे। दोस्तों बस मैं ये कहूंगी कि पंचम दा ने इस कॉम्पोजिशन में एक ऐसा इमर्सिव साउंडस्केप क्रिएट किया जहाँ मेलेडी समुद्र की लहरों की तरह बहती हैं और हर नोट सुकून और गहरे एहसासों से दिल को भर देता है। उनके टाइमलेस म्यूजिकल विजन का ये खूबसूरत मास्टरपीस है।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
4: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
5: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
6: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
5: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
7: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में, दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

वेलकम बैक। वेल दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रिल्स में। सुरों की सादगी आवाज में मिठास, सुरों की सादगी आवाज में मिठास, नितिन मुकेश के गीत रहते हैं दिल के पास। दोस्तों, हर गीत में है एहसास की गहराई, जहाँ ताल सरगम और जज्बात लेते हैं खूबसूरत अंगड़ाई। वेटरन सिंगर नितिन मुकेश जी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे गाइस। 27 जून 1950 को इनकी पहली बार गूंजी आवाज फिजा में। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर मुकेश जी के बेटे नितिन जी के लिए संगीत सिर्फ संगीत एक कला नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा था। घर का माहौल सुरों से महकता था। सुबह की शुरुआत या रियाज से होती, हारमोनियम की मधुर धुनें घर के कोने कोने में गूंजी और मुकेश जी की रूहानी आवाज हर पल संगीत के नए पहलुओं को स्टडी करने और उसकी गहराई को महसूस करने का एहसास कराती। शोमैन राज कपूर के साथ मुकेश जी की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग रही है। दोस्तों, 1970 में रिलीज हुई मेरा नाम जोकर में नितिन जी ने इंग्लिश सॉन्ग विद अ चीयर नॉट अ टियर इन योर आई की कुछ लाइंस गाकर अपने सिंगिंग वर्सटैलिटी का खूबसूरत एहसास कराया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी का नाम दोस्ती, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी की न टूटे लड़ी सो गया ये जहाँ, जैसी करनी वैसी बनी, पैसा बोलता है तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊँ, जैसे कहीं

यादगार गीतों को अपनी सुरीली आवाज से सजाने वाले नितिन जी ने 80s और 90s के दौर में खयाम साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अबापी लहरी, राजेश रोशन, आनंद मिलन जैसे रेनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करके म्यूजिकल वर्ल्ड में अपनी एक अलग और खास जगह बनाई। नितिन जी ने अपने करियर में सिर्फ बॉलीवुड फिल्म के अलावा भजनों की दुनिया में भी अपने सुरों की मिठास बिखेरी। विशिंग नितिन मुकेश जी अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। म्यूजिकल कॉस्मोस में आपकी सोलफुल रेंडिशंस यूं ही हर दौर में म्यूजिक लवर्स के दिलों को छूती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं की आवाज से निखरे इस गाने को सुनते हैं, सो गया ये जहां। वैसे इस गाने में ना नितिन मुकेश जी की आवाज में एक अलग ही सुकून और गहराई लेकर आए ट्रैक। उनकी सोलफुल, वेलवेटी और एफर्टलेस एक्सप्रेसिव वॉइस गाने के हर लफ्ज को एहसास से भर देती है, और वो ना सिर्फ सुरों को निभाती बल्कि उनमें तन्हाई, उदासी, उम्मीद के जज्बात भी खुल जाते हैं। इनफैक्ट गाइस, इस मल्टी सिंगर कॉम्पोजिशन में आप महसूस करेंगे इस गाने को जब सुनेंगे कि नितिन मुकेश जी की आवाज़ अपनी वार्म्थ और सिंसेरिटी की वजह से अलग ही पहचानी जाती है। सो हियर वी गो।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: जी वेलकम बैक, और देखते हैं हमारे साथ समय कौन है फोन लाइन पर। हेलो
4: हेलो
3: हेलो, अपने नाम बताइए दोस्त।
4: मेरा नाम हरीश गौड़ है, मेरठ से बोल रहा हूँ।
3: हरीश गौड़ जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर।
4: थैंक यू।
3: कैसे हैं आप?
4: मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आपकी आवाज़ सुनी तो और अच्छी हो गई।
3: चलिए बहुत बढ़िया है। और क्या करते हैं आप?
4: मैडम मैं फार्मा मार्केटिंग में हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी में मार्केटिंग में हूँ।
3: ओके, तो उसमें आप मेडिसिन बेचते हैं राइट?
4: मैं बेचते नहीं, मैं प्रमोट करते हैं डॉक्टर्स को।
3: मेडिसिन प्रमोट करते हैं
4: डॉक्टर्स को।
3: और आपको पता है कि सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी है?
4: सबसे लाफ्टर इज द बेस्ट मैन म्यूजिक एंड लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन।
3: एग्जैक्टली, लाफ्टर एंड म्यूजिक, ये बहुत आधा यू नो ये बेस्ट मेडिसिन है। और म्यूजिक जो है वो आपको म्यूजिकल राइट जो है आकाशवाणी रेनबो पर मिलती है।
4: जी बिल्कुल,
3: है ना, और सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है।
4: Exactly.
3: है ना, तो एक तीसरे दो निशाने हो जाते हैं ना हमारे।
4: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
3: ओके, तो आप आरडी बर्मन के बारे में कितना जानते हैं?
4: आरडी बर्मन साहब तो वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन है, मतलब और देखा जाए तो क्लासिकल और वेस्टर्न का जो एक कंपोज उन्होंने ब्लेंड किया है,
3: संगम किया है,
4: ब्लेंड किया संगम का, सब एक से उन्होंने ही सबसे पहले किया था
3: जी।
4: और अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने म्यूजिक में, जो शायद बहुत कम म्यूजिशियन ऐसे हैं जो इतना रिस्क ले पाए।
3: जी बिल्कुल, इनफैक्ट जब मुझे पता लगा कि 9 साल की उम्र में ही उन्होंने जो फंटूश में यूज किया था, उनके फादर ने वो धुन यूज की थी, ए मेरी टोपी पलट गया, और साथ में जो एक टाइमलेस ट्रैक है सरजो तेरा चक्राया, उसकी धुन भी पंचम दा ने बचपन में क्रिएट की थी। तो मेरे लिए मुझे भी लगा कि मतलब इतने म्यूजिकल जीनियस जो हैं आज के टाइम में थोड़ा कम देखने को मिलते हैं, है ना।
4: और उस टाइम इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता था, अब तो इंस्ट्रूमेंट इतने हो गए आप कुछ नहीं कर सकते।
3: हाँ, अब तो खैर बात अलग होगी, लेकिन उस समय वो कहते हैं कि बॉटल से भी फूंक की आवाज निकाल लेते थे, और सॉसेस के साथ वो आवाज निकालते थे, स्पेशली जो गाना है चुरा लिया है तुमने जो दिल को, उसकी दिलकश धुन है उसमें, जो
4: कटोरी में पानी भर के उस पर जल तरंग निकाल देते
3: हैं। हाँ जी, और जब वो जो सिंगर जो सत्य पे सत्ता का गाना है उसमें सिंगर से उन्हें गागल कराया था, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब जो डेली रूटीन में जो चीजें यूज होती हैं उससे वो म्यूजिक निकाल लेते थे। तभी कहते हैं कि हर जगह संगीत है, हमारी दिल की धड़कन को महसूस करो उसमें भी संगीत,
4: उसमें संगीत है।
3: जी बिल्कुल, तो चलिए इसी बात पे कुछ अच्छा से सुना दीजिए।
4: अभी अभी आपने एक गाना सुनाया था जब सो गया ये, जहां नितिन मंगेशकर की आवाज में था, बहुत अच्छा गाना, मतलब बहुत अच्छा ट्रैक है, आपने सुनाया था, मैं उसी की दो लाइनें सुना रहा था।
3: ओके,
4: सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां,

Us? Station of the Nation, Akashwani Rainbow. मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ. ध्यान से सुनिए उनके म्यूजिक को.

चुप कैसे। वेल दोस्तों, आपके मैसेजेस ले लेते हैं वरना हमें पड़ेगी डांट आपसे। हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मंदिर में राम राम जी। मंदिर में गूंजती हर जयकारे की पुकार आपसे है। सूरज की लाली की चमकार आपसे है। फूलों पर आई बहार की निखार आपसे है। इस लाइन को मैं करेक्ट करूंगी रोहित जी। देश की सीमा पर तैनात हर जवान की ताकत की गूंजती झनकार देश से ही है। यूं ही हम नहीं सुनते रेनबो पूरा दिन। इस पर प्रस्तुत होने वाले हर कार्यक्रम और संगीत की बहार आपसे है। आपके बड़े भाई और प्यार बड़े भाई का प्यार और आशीर्वाद भी खुद आपसे है। अर्थात इस जीवन की हर दुख सुख की आने वाली याद और फरियाद भी आपसे है। जय हिंद। रोहित खेरा, दिल्ली 9। इसी के साथ राहुल देव वर्मा सलीम मलिक ने बिल्कुल सही जवाब दिया था यूपी से। तरुण कोहली सूरज कुंड रोड, उन्होंने भी सही बिल्कुल सही जवाब दिया था। प्रवीण जी ने गलत जवाब दिया था मध्य प्रदेश से। इसी के साथ शैलेंद्र वर्मा जी ने भी सही जवाब दिया। पंकज अमरावती ने भी हमें सही जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि पिछली बार यस हमने प्रोग्राम किया था। आई नो न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर प्रसारण नहीं हो पाया था ये प्रोग्राम। रवि जोशी मेरठ भी हमें बिल्कुल सही जवाब लिखते हैं और इन्होंने कहा है कि जिसके रक्षक महाकाल उसका क्या बिगाड़े काल। बिल्कुल। और इसी के साथ सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल से हमें बिल्कुल सही जवाब लिखते हैं। एकता जी पंचकुला से हैं। मैंने काफ़ी आपको ट्राई किया था, आपका कॉल नहीं मिला था। और दीपा ने भी गलत जवाब दिया हमें बठिंडा से। और इसी के साथ गौतम कुमार समस्तीपुर बिहार से हमें सही जवाब लिखते हैं। और इसी के साथ हमें डॉली ने भी बिल्कुल

सही जवाब देने को भी हमने कॉल किया था, लेकिन हम ये ऑनर नहीं हो पाए। और इसी के साथ देवेंद्र इंगती हमें बिल्कुल सही जवाब लिखते हैं आसाम से। मोहम्मद फुकान जी ने हमें कम से कम 6-7 मैसेज भेजे हैं और बिल्कुल सही जवाब दिया है मोहम्मद फुकान जी। और आपने कहा कि ये जो गाना है सो गया ये जहाँ, आपको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तनीष कतौली भी लिखते हैं ओके। और इसी के साथ संतोष कुमार बिहार से हमें बिल्कुल सही जवाब लिखते हैं। इसी के साथ बस यही कहूँगी कि आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहिए। अभी और भी मैसेज आ रहे हैं ओके। संतोष कुमार राज्य बिहार से हमें मैसेज आया है ओके। और इसी के साथ हमें उमेश कुमार ख्याला से बिल्कुल सही जवाब लिखा है। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है ओके। मैसेज तो काफ़ी डिलीट हो गए हैं, आप मैसेज इतना करते हैं उसके बाद डिलीट भी कर देते हैं ओके। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है, आपके गीत एक से बढ़कर एक सुनवा रहे हैं ओके। जयराम खोरवाल हमें उत्तम नगर से लिखते हैं, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आऊँगी ठीक 1 बजे, लेकिन प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग रहेगा हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड वेलकम टू आकाशवाणी एफएम रेनबो एट 102.6 मेगाहर्ट्ज। इट्स 5 minutes past 12 एंड इट्स टाइम फॉर द प्रोग्राम प्ले इट कूल। दिस इज सची एंड वी हैव लाइंड अप सम ऑफ द हॉटेस्ट हिट्स अलोंग विथ योर फेवरेट सॉन्ग रिक्वेस्ट। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, हियर इज द फर्स्ट सॉन्ग कमिंग योर वे।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
9: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
10: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
9: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
10: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
11: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में, दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

0: I Love Cheap Thrills by Sia. Well, it's time for a short break. Don't go anywhere. Stay tuned to Akashvani Rainbow at 102.6 megahertz.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर

0: रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। जैसे गानों का है आवाज से रिश्ता, जैसे गानों का है आवाज से रिश्ता, सुरों का है सांस से रिश्ता। जो गाने रहते हैं आपकी जुबान पर, नक छोड़ जाते हैं आपके दिलो जहां पर, वही गानों के बारे में पूछेंगे आपसे और बहुत सी बातें भी करेंगे आपसे, क्योंकि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर, जहां मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ। 9868107070 ये वो व्हाट्सएप नंबर है जहां आप भेज सकते हो गाने जो वजह बेवजह हैं आपके दिल के करीब, जो आपको पसंद है। अब आप कहेंगे प्रियंका मुझे इस गाने से ना मतलब मैं कुछ कनेक्ट कर जाता हूँ, वाइब कनेक्ट हो जाती है, या फिर इसकी बीट्स पसंद है, या ऐसे जुड़ी कोई याद कोई बात, जो आपका मन करे ना आप मुझे उस गाने के बारे में लिखिए, रीज़न बताएंगे ना ये गाना क्यों पसंद है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 9868107070। और बहुत सारे मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं फिलहाल ये गाना। गुड आफ्टरनून गाइज़।

What a masterpiece. Seriously guys, ये गाना सिर्फ रोमांटिक ट्रैक नहीं है बल्कि एक सफर है जो धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअल ट्रांस का एहसास कराता है. आकाशवाणी रेन पर चल रहा है प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, और आपकी रिक्वेस्ट देख के समझ में आ गई है कि चलिए नंबर मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन जो नए लिसनर्स जुड़ते हैं उनके लिए मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ प्रोग्राम का फॉर्मेट. पहले तो नंबर है 9868107070, ये वो नंबर है जो ये आपको हमसे कनेक्ट करता है. आप जल्दी से भेजिए वो गाने जो वजह बेवजह हैं आपके दिल के करीब, और प्लीज़ 2000 ईयर के बाद के गाने हों, थोड़े आगे पीछे 90s वगैरह में हो सकते हैं, बहुत पुराने ना हो मेरे दोस्त. एकता नरुला पंचकुला से लिखती है, डियर प्रियंका आई लव योर वॉइस, सो आई फील आई कनेक्ट विथ यू, प्ले इफ पॉसिबल, मेरी आवाज़ ही पहचान है अगर याद रहे. आई मैसेज इन बॉलीवुड सताज क्वेश्चन जस्ट टू ट्राई इफ आई कैन गेट टू टॉक टू यू ओवर फोन एंड कॉम्प्लीमेंट यू अबाउट योर वॉइस. थैंक यू सो मच एकता, मैंने आपको ट्राई किया, ट्राइड यू एटलीस्ट 4-5 times, लेकिन आपका कॉल जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपका मैसेज जो है वो सबसे पहले आया था एग्जैक्ट 11:28

पे आपका मैसेज था. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स. उसी के साथ हमें मैसेज आया है. ओके, ये है अंशी शर्मा हसनापुर मेरठ से, हमें लिखती हैं, वेलकम टू द शो विद फ्लास डियर्स प्रियंका मैम, कैसी हैं आप? एंड मुझे वो सॉन्ग सुना है अरिजीत सिंह की वॉइस में, ए दिल संभल ज़रा फिर मोहब्बत करने चला है चू चला है तू. ओके, सुनिधि चौहान की वॉइस में लेडूबा, कविता कृष्णमूर्ति का भी आपने लिखा. चलो तीन चार चॉइसेस भेजी हैं अंशी, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इनमें से, क्योंकि पिछली बार आपका जो मैं ट्राई नहीं कर पाई थी. और इसी के साथ राजेश कुमार चौहान जलंधर, नमस्कार, प्यार के कागज पे दिल की कलम से जिगर का है. ओके, ये गाना मोबाइल के समय में चिट्ठियों के समय की याद कराता है. जी बिल्कुल राजेश जी. और इसी के साथ हमें मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, मोहम्मद इम्तियाज, सलमा बेगम, जवाहर कैम, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली से, फिल्म ईश्वर से, आगे सुख है तो पीछे दुख है, सॉन्ग में नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़, और जिंदगी को समझाते हुए हर दुख ज्यादा देर तक नहीं होता, खुशी में कंट्रोल रहे. ओके, क्या बात है, साथ में आपने सुझाव भी दे दिया. पता है मोहम्मद इम्तियाज जी, इस बात से मुझे एक बात याद आई, कहते हैं कि कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता, बुरे वक्त का एक सही बात होती है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और अच्छे वक्त की एक ख़राब बात होती है कि वो भी बीत जाता है. तो वक्त जो है वो कहते हैं ना चलता रहता है समय की धारा की तरह, हमें भी बहते रहना है. और इसी के साथ मैसेज आया है, ओके नमस्कार प्रियंका को, नमस्कार, आपने हमें तीन चार चॉइसेस भेजी हैं, इस समय गर्मी बहुत हो रही है, इंतज़ार है बारिश का, तो एक गीत सुना दीजिए. ओके, भगवती जी लिखती है न्यू दिल्ली से, आजकल तुम्हारा बॉलीवुड रील सुन नहीं पा रहे. ओ कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जरूर सुनिएगा. और इसी के साथ मैसेज आया है, ओके नाम नहीं आया, आपने तीन चार चॉइसेस भेजी हैं, चेतन कुमार मनपुर बाजार, ओके गया बिहार से मैसेज है. प्रियंका जी नमस्कार, आपके प्रोग्राम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अपनी मर्जी का कोई भी गाना सुनवा दीजिए. शैलेंद्र वर्मा, थैंक यू सो मच. और इस बार इस प्रोग्राम में तो आपकी मर्जी ही चलती है, मेरा वाला सॉन्ग जो है ये आप लोगों का है, और आपकी जो चॉइस होती है वो मेरी भी चॉइस होती है. इसी के साथ नीता वर्मा पीतमपुरा से हमें तीन चार चॉइसेस भेजी हैं. और इसी के साथ हमें, नमस्ते मैम, ओके मैं नवलू वरक फ्रॉम मलपड़ गोवा से प्रोग्राम सुन रहा हूँ आकाशवाणी का FM रेनबो चन, आज मुझे गाना सुनवा दीजिए फ्रॉम मिशन कश्मीर सॉन्ग, भूमरो भूमरो शाम रंग भूमरो. ओके, बहुत अच्छा ट्रैक है ये भी. और इसी के साथ अच्छा मैंने ये आपका जो है सही इसका उच्चारण किया होगा जो आपने पूरा लिख के भेजा, आई होप. उसी के साथ हमें मैसेज आया है राधा और कविता का स्कूल ग्रुप फ्रॉम उत्तराखंड, और उन्होंने कहा है कि मौसम की सरगम को सुनना है खामोशी फिल्म से. ओके, मुझे यहाँ तक याद है ना कि इस गाने में जो नेचर और मेलोडी को बहुत ही खूबसूरती के साथ पिरोया गया है ना. तो चलिए बिना देर के इस ट्रैक को सुनते हैं. मौसम की सरगम को सुन क्या गा रहा है समा, लवली चॉइस.

वेल दोस्तों, ये हमें भगवती जी ने चॉइस भेजी है कि प्रियंका एक गीत अलका याग्निक की आवाज़ में सुनाओ। तो जब से उन्हें पुरस्कार लेते देखा है, उन्हें देखकर बहुत दुख हुआ कि उनको आजकल सुनाई नहीं दे रहा है, तो कोई भी गीत हम सुना देते हैं। जी हाँ, अगर तुम साथ हो, पद्म भूषण से सम्मानित की गई हैं, और यकीन मानिए अलका याग्निक की जो आवाज़ इस गाने में, क्या बहुत से उनके ऐसे ट्रैक है जो एवरग्रीन ट्रैक्स हैं, एक गहरी इमोशनल वॉर्म्थ होती है, टाइमलेस ग्रेस लेकर आती है उनकी वॉइस। तो चलिए उनकी क्रिस्टल क्लियर वॉइस को सुनते हैं।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

जी हाँ, वेलकम बैक। आ गई हूँ मैं प्रियंका वर्मा आपसे बातें करने के लिए। और दोस्तों एक बात है कि आपको पता है कि गाना सुनना क्यों ज़रूरी होता है? अब आपको अगर कहते हैं ना म्यूज़िक थेरेपी है, कैसे हम फील करते हैं कि हम रिलैक्स हो जाते हैं, होता है ना कि गाना सुनते वक्त ब्रेन का जो फील गुड सिस्टम होता है ना, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ डोपामिन रिलीज होता है जो खुशी और मोटिवेशन का सिग्नल देता है। जी हाँ, इससे मूड अपलिफ्ट होता है, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है और मन हल्का महसूस करता है। इसलिए गाना सुनना एक नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है। और गाने हमारे यादों से भी जुड़े होते हैं। कोई एक ट्यून हमें बचपन में ले जाती है तो कोई एक लाइन किसी अपने की याद दिलाती है। ये इमोशनल रिकॉल हमारे दिमाग को सेफ फील कराता है, अकेलापन कम करता है, हमें संभालता है, हमें हिम्मत देता है। जी हाँ, और कहते हैं कि गानों को कुछ हर्ट्स होते हैं इनके, उस हर्ट्स पे ही हमें सुनना चाहिए, फ्रिक्वेंसी होती है। जी हाँ, क्योंकि हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन सब इम्प्रूव होता है अगर गाने को सही तरीके से, सही राग, सही समय पे सुना जाए। कि हाँ जी हाँ, ये भी एक स्टडी होती है। तो हमारा ब्रेन जो है ना, वो सही मामले में एक्टिव होता है। और गाना सुनना शायद इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब दुनिया शोर मचा रही होती है ना, तो म्यूज़िक हमें अपनी ही धड़कन सुनाना सिखा देता है। अब हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि मैम प्लीज़ हमें आर डी बर्मन। जी बिल्कुल। अब जैसे कि हमें पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, रिम झिम भीगे भीगे, ये वाला ट्रैक मैंने क्यों कर रखा है, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है हमें आर डी बर्मन साहब की। और क्यों ना हो, जी हाँ, ये जो है कहते हैं ना कि माइस्ट्रो हैं हमारे जो इंडियन सिनेमा के हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगी मैवरिक माइस्ट्रो है, हु रीडिफाइंड बॉलीवुड म्यूज़िक। और जैसे कि इनके बारे में हमने बोला भी था ना आपसे कि सुरों के सागर की लय और रवानी थे पंचमता, वो हर सांस को एहसास की धुन और गीत की मेलोडी में बना देते थे। एक तरफ उनके संगीत में इंडियन क्लासिकल की गहराई और रूहानियत थी, तो दूसरी तरफ कंटेम्प्रेरी साउंड्स और ग्लोबल म्यूजिक का दिलकश संगम। उनका हर साउंड सुरों का क्लाइडोस्कोप था दोस्तों, जहाँ हर मेलोडी एक नया एहसास और हर नोट एक नई कहानी थी। पंकज अमरावती जी, आपने हमें लिखा है कि इस गाने को ज़रूर शामिल कीजिएगा, और गीत प्ले नहीं हुआ तो नाम ही शामिल कर लीजिए। जी आपकी रिक्वेस्ट ही पूरी होगी। इसी के साथ हमें इनफैक्ट होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने भी 1942 लव स्टोरी का हमें रिक्वेस्ट भेजा कि गाना कोई और है, लेकिन उन्होंने कहा कि 1:05 पर आपने मैसेज किया था। जी बहुत सारे मैसेजेस हैं यकीन मानिए, तो मैंने उसी फिल्म का रिम झिम जो है दोस्त क्यों कर दिया है। और इसी के साथ वेरी गुड आफ्टरनून मैम, प्लीज प्ले द सॉन्ग। ओके, प्लीज प्ले द सॉन्ग। ऊपर वाला अपने साथ है, फ्रॉम द मूवी ऑफ सिर्फ तुम, डेडिकेट टू रॉय, सॉरी दोस्त मैं इसका सही उच्चारण अगर कर पाई तो बताइएगा, रॉय कोविल मीथा, आई एम सॉरी मैं उसका लगता सही उच्चारण नहीं कर पाई हूँ, सुनीता मोंदिरा, अंजोली भाईकॉन, अमल, सुष्मिता दिलाली, ओके दिलाई, मरीना, सुनील फ्रॉम जपरा लंगो, ओके नागालैंड बॉर्डर से आपने मैसेज किया है, ओके नागालैंड बॉर्डर से असम करबी अंग्लो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट, ओके दोस्त थैंक यू सो मच कि आप हमें वहाँ पर सुन रहे हैं। इफ़ नॉट देयर दिस सॉन्ग कुड वी प्ले अनदर सॉन्ग, कहीं प्यार हो ना जाए। भाई कुमार सानू एंड अलका याग्निक, थैंक्स मैम, बहुत अच्छा लगा दोस्त कि आप सब हमारे आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहिए, और इसी तरह जुड़े रहिएगा। और इसी के साथ मैं तेरे नाल लव हो गया, ओके उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, और इसी के साथ मोनू परासर अलीपुर विलेज से हमें लिखते हैं, ओके इनके भी चॉइस आई है। और इसी के साथ आदम नमस्कार जी, नमस्कार, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा और रियाज मोहम्मद, समरीन माहिरा, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, बिल्कुल हमने शामिल कर लिया है। इसी के साथ अंशु में थैंक यू मैम लिखती हैं, और इसके साथ हमें कृष्ण गुप्ता जौनपुर उत्तर प्रदेश से भी हमें मैसेज करते हैं, कान से मोहम्मद फुकान जी ने भी हमें मैसेज किए हैं, और गुड्डू धाकर मध्य प्रदेश उज्जैन से हमें इन्हें सभी गाने पसंद आ रहे हैं, किसी भी दोस्त के साथ हमारा नाम ले लीजिएगा, बारिश का कोई गाना ऐसा सुना दीजिएगा। ओके बिल्कुल, हमारे यहाँ अभी मैंने क्यों कर दिया रिम झिम, आई होप आप इस गाने को पसंद करेंगे, आर डी बर्मन की धुनों से निखरे इस ट्रैक को आप पसंद करेंगे आप। ओके, इसी के साथ मैसेज आया ये हमें, प्रियंका जी प्लीज़ कविता देवभूमि उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल, फिल्म कयामत, वो लड़की बहुत याद आती है फिल्म रमा, 2-3 चॉइसेस आपने भेजी है दोस्त, कोशिश की जाएगी। इनफैक्ट ये हमें मैसेज आया है जैद और हुदा का, ओके आपने भी हमें रिक्वेस्ट भेजी है बहुत सारे गानों की, सुन बरसात की धुन सुन, यहाँ तो बारिश का मौसम है, धूप जो है, सूर्य जो है वो अच्छा खासा चमक रहा है, फिर भी मैंने रिम झिम क्यों करा है। और इसी के साथ ये मैसेज आया कि थैंक यू मैम फॉर रीडिंग माई मैसेज, थैंक यू डियर,
और इसी के साथ चलिए प्रियंका जी, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। लवली ये गाना सुनवा दीजिए। आज आरडी बर्मन जी की बर्थ एनिवर्सरी है, उन्हीं को समर्पित है। ओके, या फिर आरडी बर्मन का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड। रवि जोशी मेरठ से लिखते हैं, बिल्कुल। तो चलिए रिम झिम रिम झिम। वैसे एक बात है, अगर आप इस गाने को सुनेंगे ना, इसमें ना पंचम दाग की म्यूजिकल ब्रिलियंस नज़र आती है। कैसे टाइमलेस म्यूजिकल विजन का एक बेहतरीन एग्जांपल है, जहाँ इंडियन मेलोडी, पता आप देखिएगा किस तरह से बारिश के मौसम के साथ। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि पंचम दा ने बारिश के एहसासों को सुरों में इस तरह पिरोया है कि हर नोट बूंदों की तरह नरम और दिलकश महसूस होता है।

कहते हैं दोस्तों कि साउंड एयर में वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं और ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस की वजह से साउंड हमारे कानों तक पहुंचती है, हमें म्यूजिक सुनाई देता है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने कानों तक पहुंचाइए, रिलैक्स रहिए और हमें अपनी चॉइस बताते रहिए 9868107070 पर। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है डॉली का दिल्ली से, कहते हैं हेलो प्रियंका कैसी हैं, वेरी इमोशनल सॉन्ग इन्होंने हमें लिखा था तब भी बॉलीवुड ट्रेल्स में। और अभी उनका जो मैसेज है वो ये है, थैंक्स अ लॉट आपने कॉल की, बहुत अच्छा लगा, किसी और शो में हंसते हंसते बात होगी जब भगवान जी चाहेंगे बिल्कुल, और आपके फादर स्वस्थ रहें, क्योंकि हमने इनको कॉल किया था, इनका नंबर पहले, इनका जो मैसेज पहले था, लेकिन इनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, तो बस जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए। और अगर तुम साथ हो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, हमारे पास खुश रहने की बहुत सी वजह हैं कि हम स्वस्थ हैं, जैसे अलका याग्निक जी के साथ हुआ कि सुनाई देना बंद हो गया, तब लगता है कितने सही, कितना कुछ सही है जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल ये बात तुमने बिल्कुल सही की डॉली, हम पॉजिटिव चीज़ों को देखते ही नहीं, हम बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, अपनी अपनी डेली रूटीन की सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। गीत सुनने का टाइम होता है, बिल्कुल सही कहा, कुछ गीत रात में सुनने से जो फील आता है वो दिन में नहीं आता, जैसे ये रात नहीं पुरानी, ये रात नहीं पुरानी, जी हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ हमें एक और मैसेज आया है, बहुत प्यारा एक मैसेज है दोस्त, मैं वही मैसेज देख रही थी कि वो मैसेज जो है वो कहाँ चला गया, बट नहीं, मेरे सामने अभी फ्लैश हो रहा है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं। और बस इसी के साथ हमें ये मैसेज है, ओके, राम राम जी, हेलो नमस्ते इंडिया, भाई ने बहन का, बहन के हाथ भेजा है पैगाम, क्योंकि इसी बहन के हाथ में है अब इस भाई की जुबान की लगाम, जो होगा बहन को पसंद वही होगा भाई की पसंद, एक मधुर संगीत का नजराना आज प्रियंका जी सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद का अपने भाई के लिए भेंट करेंगे और इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए भाई का को नजराना देंगी। ओके, शनिवार का सुनहरा दिन होगा, रेनबो के साथ हो, क्योंकि प्रियंका जी आपकी बातें और आपकी सकारात्मकता की सकारात्मकता ही सभी श्रोताओं को सुखद होने का एहसास दिलाती है और हर शनिवार आपको हमारे पास बुलाती है। इसके लिए हमारी रेनबो टीम के सभी सदस्य और आप सभी सभी श्रोताओं को तहे दिल से जय हिंद। रोहित खेरा नई दिल्ली से लिखते हैं, थैंक यू सो मच रोहित जी, सारे गाने मेरी चॉइस के चल रहे हैं और आपको मैं डेडिकेट कौन सा गाना करूँ अभी मैं इसको सोचती हूँ, क्योंकि सारे गाने मैं कहती हूँ कि ना देशभक्ति ट्रैक जो है ना मैं सभी को डेडिकेट करना चाहूँगी जो मैं नेक्स्ट क्यू कर रही हूँ। और इसी के साथ एक बहुत कृष्ण गुप्ता जी जौनपुर से, आप बहुत कुछ लिख रहे हैं, मैं और भी गाने देख रही हूँ दोस्त, आपकी भी चॉइस देख रही हूँ, क्योंकि एक बार गाना सिस्टम भी नहीं होता तो बताइए हम क्या करें, आप इतना गलत मत लिखिए। और इसी के साथ आज ये प्रियंका साहिबा जी, आदाब, इस गर्मी में इस तरह के गीत सुनाकर भी बादल आँख में चोली करने लगते हैं जैसे ये वाले फिल्म के गीत। ओके, आपने दो तीन हमें चॉइसेस भेजी हैं। ओके, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान, फायरा तारा, बुलंद चहल से, ओके, संगीत के सितारे रेडियो लिसनर्स क्लब भी आपको अलग अलग जगह पर सुन रहे हैं, इतना उम्दा प्रोग्राम पेश करने के लिए और गीत सुनवाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप अदा बस कर रहे हैं, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, आपका दिल से शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज ही प्रियंका मैडम जी, आप पोएम बहुत लिखती हैं, संगीतकार आर डी बर्मन पर बहुत बढ़िया पोएम लिखी है, थैंक यू सो मच। प्रियंका का आपने रिमझिम सॉन्ग प्ले किया है, बहुत ही बेहतरीन नगमा है, रिलीज से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी आर डी बर्मन जी की, जी बिल्कुल। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से लिखते हैं और इसी के साथ हमें मैसेज आया है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी हमें लिखते हैं, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी सैटरडे, गुड आफ्टरनून। और आपने भी हमें दो तीन चॉइसेस लिखी हैं, आर डी बर्मन साहब का मैंने गीत जरूर प्ले किया है दोस्त। और इसी के साथ ये मैसेज आया है, सत श्री अकाल मैडम जी, कैसी हैं आप, मैडम मुझे शक्ति फिल्म का सॉन्ग सुनवा दीजिए, जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया हम, बहुत अच्छा गाना ये भी, मैडम मेरा मैसेज जरूर शामिल कीजिएगा। ये हरी किरण सिंह फारुखाबाद उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, जी बिल्कुल। और फिलहाल ये मेरे सभी लिसनर्स के लिए, खासकर रोहित जी आपके लिए गाना है, देश से की मिट्टी से जुड़ा ये गाना है, तो चलिए अरिजीत सिंह को सुनते हैं।

इस गाने की एक एक लाइन आप महसूस कीजिएगा। इसके जो लिरिक्स है ना, दिल से निकले हुए लगते हैं। एक फौजी के जज्बात, एक सोल्जर्स के जज्बात, उनकी कुर्बानी, अपने देश के लिए उनकी मोहब्बत को बहुत ही संजीदगी से पोर्ट्रे किया गया है।

प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम. ओके, मेरा वाला सॉन्ग आपकी स्वीट वॉइस में एंजॉय कर रही हूँ. आपने राज पिक्चर का गाना कहा है प्ले करने के लिए, क्योंकि आज आपकी पांच बेटियों के होते हुए आप अकेली बैठी, क्योंकि सब विदा होकर घर चली गई हैं, उनकी विदाई याद आ रही है. ये सॉन्ग सुनकर पुरानी याद ताज़ा हो जाएगी. मिसेज धर्म भाटिया रोहतक से हमें लिखती हैं. पहले तो कितनी बड़ी बात है ना कि देखिए आपकी सारी बेटियाँ अपने अपने घर में सुखी हैं, और मैं यही कहूँगी कि ये बहुत मतलब कहूँगी सभी वहाँ सुखी हैं. और आप देखिए मतलब आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी की हैं. और ये वाला गाना मैं एक्चुअली ढूंढ रही हूँ, सच बताऊँ तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि आपका मैसेज पहले भी आया था और अभी दोबारा मैं मैसेज इसको देख रही हूँ कि प्लीज़ ये गाना मुझे कहीं से मिल जाएगा. नहीं मिल पाता तो मैं कहूँगी कि हमारे आप अकेली कैसे हैं, आकाशवाणी रेनबो आपके साथ है ना, तो बस उसके साथ पूरा टाइम जुड़े रहिए. आप जुड़ी भी रहती हैं, आप अकेला बिल्कुल फील नहीं करेंगी. और सारे अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए. अभी देखिए हमें कितना अच्छा मैसेज था डॉली का कि हमारे पास कितना कुछ अच्छा होता कि हम देखते ही नहीं हैं, बस हमें उस तरफ नज़रें ज़रा कितना कि घुमानी पड़ती है कि अच्छे पर्सपेक्टिव्स को भी देखना होता है ना. और इसी के साथ इसलिए नाराज बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल भी नहीं. और इसी के साथ हमें लिखा है ओके, राम राम जी वर्मा जी को जय हिंद. सुन लिया जी आपकी जुबानी देशभक्ति का प्यारा सा नजराना, तभी तो हमारा दिल से नमन है प्रणाम है. रोहित खेरा हमें लिखते हैं, और इसी के साथ डॉली भी हमें लिखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रियंका, आपकी दुआओं के लिए, थैंक यू सो मच. और इसी के साथ मैसेज है प्रियंका जी, थोड़ी देर के लिए मैं दूसरे स्टेशन पर चला गया था, क्या आपने हमारी पसंद का गाना चला दिया? ओके, वेल, मेरठ से हमें दिग्दर्शन और कविता जी का मैसेज आया है. बहुत सारी चॉइसेस प्ले हुई हैं दोस्त, अब आपका गाना प्ले हुआ या नहीं हुआ ये तो हम नहीं बता सकते. और इसी के साथ मैसेज आया है कि बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच. कार्यक्रम के आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को सादर नमस्कार, थैंक यू सो मच. और आपने ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से मैसेज किया है. उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश और परिवार. इसी के साथ जो मैसेज है, तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं, अपनी प्रेम कहानी सुनाइए, अपनी प्रेम कहानी. नितिन मुकेश जी की सुरों से सजा इस गाने को सुनिए.

जैसे आज बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि नितिन मुकेश जी का भी बर्थडे है, तो उनके लिए उनकी आवाज़ से सुर से सजे किसी गाने को सुनाइएगा। तो बिल्कुल, और इस इनकी गायकी की सबसे खूबसूरत मैं बात कहूँगी कि अंडरस्टेटेड एलिगेंस है। जी हाँ, उनकी आवाज़ कॉम्पोजिशन की मेलोडी के साथ इतनी खूबसूरती से घुल जाती है ना कि म्यूज़िक और वोकल्स एक ही रूह का हिस्सा लगते हैं, लगता नहीं है। कहते हैं ना, मैंने उनके बारे में लिखा है कि सुरों की साथ की आवाज़ में मिठास, सुरों की साथ की आवाज़ में मिठास, नितिन मुकेश के गीत रहते हैं दिल के पास। हर गीत में एहसास की गहराई, जहां ताल सरगम और जज्बात लेते हैं खूबसूरत अंगड़ाई।

तो मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊँ अपनी प्रेम कहानी, अपनी अपनी बातें हम एक दूसरे से शेयर करते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। इसी के साथ प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून। आनंद विहार वालों से क्या नाराज़गी है, हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं हमारी पसंद का कोई भी गीत शामिल कर लीजिए। अभी तो गीत चलाया प्ले नहीं कर पाऊँगी। किशन वंजनी, नीलम स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमें लिखते हैं और इसी के साथ हमें मैसेज आए हैं, बहुत सारे मैसेज हैं दोस्त, इस समय मैं नहीं रीड कर पा रही हूँ। इसी के साथ प्रियंका जी, सुरीली गानों के अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पर कोई प्यारी सी धुन भी स्ट्रेस बस्टर बन जाती है और सुकून भी मिलता है। बिल्कुल, रवि जोशी जी मेरठ से लिखते हैं, धुनें जो होती हैं वो भी रिलैक्स करती हैं। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है, ओके, पदमपुर जिला राजस्थान से मैसेज है और ये है मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका। फिलहाल ये वाला ट्रैक है ओ सैया। ये बहुत ही प्यारी चॉइस हमें आई है, दिल्ली से मैसेज आया है। दोस्त नाम लिख देते, मुझे मुकेश लगा, शायद मुकेश, क्योंकि आपका पहले जो नाम आ रहा है वो भी उससे पता लग रहा है कि मुकेश का मैसेज है दिल्ली से। तो ये गाना बहुत अच्छा है, अग्निपथ मूवी से। इसी के साथ कहूँगी कि दोस्तों गीतों के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखिए और अपनी चॉइस हमें बताते रहिए। आकाशवाणी रेनबो पर चल रहा है प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। फिलहाल मनीष आ गए हैं, चलिए इसी के साथ टेक केयर गाइस, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: कितने बढ़िया वाले ट्रैक चलाए ना प्रियंका ने, एक से बढ़कर एक। मैं गाड़ी में आ रहा था, सुनता सुनता क्या मजा आ रहा था। लेकिन फिलहाल जो एक मजा जो था वो धीरे धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं बाहर कभी निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि वो गर्मियों के दिनों के अंदर ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। संगीत लेकिन ऐसी साधना है, संगीत ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं वो हर किसी चीज का आनंद दिलवाई देता है। अब देखो ना, गर्मियों के तेज दिन है, दोपहर में आप घर के अंदर एसी में, कोई कूलर में, कोई पंखे में बैठकर आप सभी लोगों में स्वागत यहाँ पे कर रहा हूँ। क्यों, बात तो वो ही है ना, फिर कहीं ना कहीं कुछ तो हमारे शो इस आशियाना के अंदर जहां बात करते हैं एक घर की, एक छत की, उसमें रहने वाले व्यक्तियों की, प्यार की, अपनेपन की और उन सभी एहसासों की जहां से हमारा परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ता है, एक बनता है और जिसको हम कहते हैं आशियाना। तो आज के इस आशियाना प्रोग्राम के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इधर रेडियो पर मैं हूं मनीष आजाद रेडियो वाला, वहां पर हैं आप, तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे आज के इस शो के अंदर। शुरुआत करते हैं और बहुत सारी और भी धीरे धीरे परिवार को लेकर कुछ कुछ कुछ बात करेंगे, क्योंकि ये है आशियाना।

हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं परिवार की, हम बात कर रहे हैं अपनेपन की, हम बात कर रहे हैं परिवार की मुखियाओं की, एहसासों की, उस घर की, उस छत की, जहां सब कुछ होता है, तब जाकर हम कहते हैं कि एक आशियाना है। अब हम हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने घर के अंदर जो लोग रहते हैं या उस छत को, हम सब कहते हैं कि वो एक ही परिवार है। फिर भी एक ही परिवार होने के बावजूद भी उस परिवार की, या कहते हैं कि जब आप दरवाजे से अंदर जाते हैं तो वहां पर जो ये बागडोर है ना, ये किसी एक के हाथ में होती है, जिन्हें हम परिवार का मुखिया भी कहते हैं। वो कोई एक ही होता है हर किसी घर के अंदर, ये अलग अलग तरीके से। अब आप हर किसी के घर के अंदर जो आप देखेंगे तो उनकी बात ऐसी होती है कि मतलब उनकी बातों को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। आपके घर में कौन है, मेरे घर में कौन है, आपके दोस्तों के घर में कौन है, इवन हमारे जो और रिश्तेदार हैं उनके घर में भी एक ऐसा मुखिया होता है जहां पर जिनकी जो कही हुई बात है वो कोई भी टालता नहीं है, और उनकी बातों को सबको सरे रहा सरे आंखों पर रखा जाता है हर किसी उस पे। अब बात आती है कि जब कोई त्यौहार आता है, जब कोई ऐसी दुखद घटना परिवार के अंदर हो जाती है या कोई खुशी का माहौल आता है तो सबसे पहले उनकी ही सलाह ली जाती है। हम कहते हैं ना कि एक मुखिया है, ये क्या चलन है। लेकिन जैसे घर के अंदर आप देखेंगे तो मम्मी है, मम्मी की सारी बात चलती है, वह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे, हाँ जी ठीक है। घरों के अंदर देखेंगे पापा जी हैं, पापा जी भी सुप्रीम कोर्ट हैं। तो हर किसी घर के अंदर एक एक अलग अलग जगह पर होते हैं, लेकिन कुछ घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चे जब नई नई नौकरियों पर लग जाते हैं, जब उनको लगता है कि उनकी जेब के अंदर थोड़े थोड़े वो हरे हरे से नोट आने लग जाते हैं, तब वो कहते हैं कि नहीं जी, अब

हमारे हिसाब से भी कुछ चलना चाहिए। इसके पीछे सबसे अच्छा एक कारण अगर आप देखेंगे, माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि वो बस खुश रहें, परिवार के अंदर जो खुशी का माहौल है वो बना रहे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते रहें, एक दूसरे का मान सम्मान करते रहें और एक दूसरे को इज्जत देते रहें। हर किसी बात को सम्मान देना चाहिए, ना कि उनकी बातों को नकारा चाहिए। हर किसी की बातों को सुनना भी जरूरी है, ना कि किसी एक की बातों को। कभी कभी क्या होता, कुछ कुछ ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जो लगता है कि भाई ये सब गलत है, लेकिन लेने वाले इंसान को लगता है कि वो सही है। इसीलिए इस सही और गलत के बीच में हम जब किसी एक मत पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं, तभी वो जाके एक परिवार का डिसीजन बनता है और उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। छोटी छोटी जो बातें हैं, भैया ने कहा कि नहीं मतलब कि जी अब मुझे तो बाइक या कार चाहिए। परिवार के मुखिया ने कहा कि नहीं भाई अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, ये पहले करेंगे फिर उसके बाद ये वाला काम किया जाएगा। अब कहने के लिए उनका डिसीजन बिल्कुल सही है, बच्चों के हिसाब से उनका डिसीजन सही है, लेकिन समझना जरूरी किससे है इस समय, ये आप सोचिएगा, है ना। गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे इस गीत के बाद कि कभी कभी ये जो एक मुखिया वाली उपाधि है ये कैसे दी जाती है। तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत जो जनरेशन हैं उनको, क्योंकि कहते हैं ना अनुभव एक दिन का खेल नहीं है, धीरे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा ये, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तब तब आप अपने आप को भी ये कहेंगे कि हाँ आज मेरे पास इतने सालों का अनुभव है जो आज आपके माता पिता कहते हैं और उनसे उनके माता पिता ने कहा।

इनके लास्ट वाले म्यूजिक के साथ हमने भी अपना इंस्ट्रूमेंटल मिलाने की थोड़ी थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन बहरहाल नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको बताएं कि दिल से दिल के तार जरूर मिले पड़े हैं, क्योंकि आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। आज इस आशियाना प्रोग्राम को लेकर हाजिर आपके साथ आपका दोस्त मनीष आजाद, रेडियो वाला। जब रेडियो पर जो आवाज़ है ये मेरी है, उधर जो आप रेडियो में आवाज़ आप सुनाई दे रही है वो आप लोग आपके घर में अंदर अपने अपने साथ में सुन रहे हैं, ठीक है जी। अब जब हमने बात करी है आशियाना के अंदर, जब एक मुखिया की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये जो मुखिया बनाया जाता है ना, तो एक रस्म है जिसको कहते हैं पगड़ी पहनाया जाता है। पगड़ी पहनाने की रस्म जब होती है, जब एक परिवार का जो एक मुखिया है इस परिवार को, इस कुनबे को, जब कहते हैं कि वो अलविदा कह के चला जाता है, तो जब उसके बाद ये जो पगड़ी की रस्म है, ये जब जिसको पहनाई जाती है, यानी कि उस समय जितने भी वो लोग होते हैं, जो आपके घर परिवार के लोग होते हैं, जिनको बड़ा मानते हैं, जिनकी बातों को आप स्वीकारते हैं, उस समय वो सब जब ये रस्म अदायगी की जाती है, ये बताया जाता है कि अब से इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी आपके सर पर है। अब कहने का मतलब ये है कि जब हम ये इस बात को दर्शाते हैं कि आपके साथ अब अगर कुछ भी है तो आपको कोई भी सलाह मशवरा, अपनी कोई बात कहनी है, कोई बात रखनी है, तो सबसे पहले इनके बात सामने वो रखनी पड़ेगी, जो इनका उस समय डिसीजन होगा वो मानना होगा, ताकि आप जब देखेंगे भी, जब इस तरह को देखने के लिए, जब हम परिवार में कोई भी सुख या दुख के अंदर जब हम कोई एक इनविटेशन कार्ड छपवाते हैं, तो जब उसके अंदर जब नाम लिखवाया जाता है, ये उन्हीं नामों को दर्शाया जाता है, उन्हीं को लिखित किया जाता है और उन्हीं को बताया जाता है कि अब इस परिवार की जो बागडोर है वो इन के हाथ में है, क्योंकि अब जो पगड़ी थी वो अब इनको पहनाई गई है। आपके परिवार के अंदर आप देखोगे तो शायद आपने कितने जगह पर ऐसे जाके इस रस्म अदायगी को अपने सामने से देखा होगा और समझा होगा कि इसके मायने अब क्या होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम इस समाज में आगे बढ़ते हैं तो समाज में कितने सारे ऐसे एक रूप हैं जिनको देखना पड़ता है और धीरे धीरे चलकर हमें उनके साथ साथ ढलना भी पड़ता है। यही सब चीज़ें आपको अपने परिवार में बच्चों को बतानी चाहिए, लेकिन होता क्या है, हम सब उनको इन बातों से करके अरे बेटा अभी तेरे के बात ये तेरे मतलब की चीज़ें नहीं है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा बड़ा हो

यानी कि जब समझदार होना शुरू हो जाए तब आपको ये सब उनको बताना बेहद जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे करके सभी के साथ है। आज इस परिवार का है तो कल दूसरे परिवार का हिस्सा भी जरूर होगा। सुनने वाले सभी लोगों से मैं शायद ये वाली बात अब मुझे अब आप सभी लोग भी अपने अपने परिवार के अंदर शायद जिन लोगों की बात ना पता हो कि अब हमारे परिवार के अंदर मुखिया कौन है पूछ सकते हैं।

भाई हमारे हाथ तो कंप्यूटर से भी तेज चल रहे हैं, कंप्यूटर चक्कर चक्कर घूम रहा है, हम यहाँ पर तेज तेज चल रहे हैं। वेरी गुड, फिर से स्वागत आपका प्रोग्राम आशियाना के अंदर। जब कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो पारिवारिक रूप से छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। जिस तरह से हमने आपको अभी बताया कि एक रस्म अदायगी होती है कि जब जिसको पगड़ी पहनाई जाती है वो परिवार का मुखिया बन जाता है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें मतलब यानी कि वो बात तो है उन सभी के साथ में परिवार को लेकर चल

की, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो बात शायद गलत है, जबकि हम उस बात को उतनी वैल्यू नहीं दी, इसलिए वो गलत है। कभी कभी कुछ लोगों की जो बातें हैं, परिवार के बड़े जो मुखिया लोग हैं, जब उन लोगों की बातें होती हैं, वो बातें सराखों पर होती हैं, माननी पड़ती हैं। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा कि आपको हर किसी की बात को सबसे पहले एक बार सुननी जरूर चाहिए, ना कि कोई भी अपनी बात किसी के ऊपर थोपनी चाहिए। अब मैं जो अगला जो मैं लिखा हुआ है इसके अंदर, मैंने ये कि आजकल आप देखेंगे तो न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत सारी अलग अलग रूप में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों काम करते हैं, बच्चे धीरे धीरे इस तरह से वो स्कूल जाते हैं, स्कूल के जाते पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऐसे ही वो माहौल आगे चलता रहता है। लेकिन एक समय आता है कि जब परिवार को उस रूप में उन बच्चों की शादी के लिए रिश्तों की बातें करनी पड़ती है। अव्वल तो ये हो जाता है कि हम बच्चों से आजकल इतने फ्रैंक हो जाते हैं, उनसे बोलते भी हैं कि भाई ठीक है बेटा, अगर आपको कोई पसंद है आप बता दीजिए, अगर आपको पसंद है आप बता दीजिए। यहाँ पर थोड़ी सी समझ तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि दायरा बढ़ाना चाहिए। आपको अपनी शादियों के लिए भी या अपने किसी सलाह मशवरे के लिए भी, ऐसा तो होगा नहीं कि आपने आज किसी को बोला कल शादी हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस वाला काम होता है, हर किसी के साथ और हर किसी घर के अंदर है और हर किसी संस्कृति में, हर किसी समाज में और देश के हर कोने में है। यहां तक कि अगर मैं कहूंगा विदेशों में भी शायद ऐसा ही होता होगा, लेकिन हमारे देश के अंदर तो ऐसा ही होता है। धीरे धीरे करके प्रक्रिया आगे बढ़ती है, लेकिन उस समय भी जो परिवार का मुखिया होता है, हम कहते हैं ना कि एक बार उनको बताना चाहिए। जब उनको हम बताते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी शायद उनके पास भी कोई एक अच्छा रिश्ता या कोई अच्छी जानकारी या कोई अच्छे मिलने वाले लोग होते हैं, लेकिन बात वहां तक पहुंचती नहीं तो, और हम करते नहीं, हम इस उसमें रह जाते हैं कि क्या फायदा है सब कहने से, बच्चे अपने आप ही देख लेंगे, भगवान करे बच्चे अपने आप ही देखें और अच्छा हो। लेकिन आप सच में अपने दिल पर हाथ रख के एक बार सोचिएगा, क्या आजकल के बच्चों में इतना वो वाला पेशेंस है जो आपके मम्मी पापा के अंदर, आपने अपने दादा दादी के अंदर, नाना नानी के अंदर देखा है? जब नहीं है ना, तो इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी बातें समाज में रहकर आपको सीखनी चाहिए। मैं बहुत सारे बच्चों को जब कभी पढ़ाने जाता हूं, बोलता हूं कि अखबार पढ़ना चाहिए, लोगों के पास बैठना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे पुराने जमाने की बातें कुछ जानिए, सीखने को मिलेगा। लेकिन हम समझते हैं कि सब कुछ हमें ही आता है और आपको पता नहीं है मम्मी, और आपको पता नहीं है डैडी, और आपको पता नहीं है दादा, और आपको पता नहीं है दादी। आपके जमाने में ऐसा होता होगा, लेकिन अब ऐसा होता है, यही सब बस मात खा जाते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं ही सब कुछ हूं, आप कुछ भी नहीं। ये वहम अगर दिल से निकल जाएगा तो मुझे लगता है कि परिवार के अंदर एक अच्छी नींव और अच्छे लोग और अच्छे समाज के साथ साथ, जैसे हम सभी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उस परिवार में भी ऐसे ही खुशियां बन जाएगी। सब कुछ सब मिलाकर तो सब कुछ है, आप ही सब कुछ हो ये गलत है।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

हम जिनकी बात कर रहे हैं आकाशवाणी रेनबो की बात कर रहे हैं, आपकी वाणी है आकाशवाणी। आकाशवाणी पर प्रोग्राम चल रहा है कौन सा, आशियाना। आशियाने के लिए आज कौन बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं मनीष आजाद, रेडियो वाले बात कर रहे हैं। रेडियो पर जो आवाज आप सुन रहे हो वो मेरा वाला आवाज है, आपको जो सुनाई दे रहा है वो मेरा वाला आवाज है। मेरा नाम मनीष है, मनीष आजाद। चलिए, जब परिवार की बात करते हैं ना साहब, तो कहते हैं कि बहुत कुछ अपने आप में सहना पड़ता है, आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है। ठीक है, अब अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी पारिवारिक, परिवार को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं, तो आप 9868107070 पर भी आप अपनी बातें बता सकते हैं। अब जिस तरह से हमने कहा कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम परिवार के जब नए सदस्य नए नए ओहदे पर आते हैं, नई नई जिम्मेदारियां उनके कांधों पर आती हैं, तो बहुत कुछ घर के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी तक तो मम्मी पापा काम किया करते थे, ड्यूटी पर जाया करते थे, शॉप पर जाया करते थे, स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते थे, लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो गए जिन्हें आपने पढ़ाया, पढ़ाकर अब उनकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद जब वो ऑफिस से घर आते हैं, तब आपको एक इस तरह से अपना रूप दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो जिंदगी में वो व्यक्ति पहली बार काम कर रहा है और पहला ऐसा ही इंसान है जिसके ऊपर इतना प्रेशर है काम का, और ऑफिस में उसकी कोई सुनता नहीं है, और सब ऐसा लगता है कि सारा का सारा जो दुनिया जहान का काम है वो उन्हीं के सर पर है। अब साहब को या हमारी मेम साहब को, हमारी जो गुड़िया है, उसको कैसे समझाएं कि बेटा जिन प्रेशर्स में से आज आपने अभी कदम रखा है, हम पिछले 20 साल 25 साल 30 सालों से वो लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन तब अचानक से जैसे ही उनसे पूछ लिया जाता है बेटा क्या हुआ, अरे आपको नहीं पता मम्मी, आपको नहीं पता, ये वाली बात कहकर वो हमें उस बात से नजरअंदाज तो करते ही करते हैं, साथ साथ में वो ये भी जताने की कोशिश करते हैं कि आपके ज़माने में ऐसा शायद ना होता हो, अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है, अब टेक्नोलॉजी वैसी आ चुकी है। साहब, मेरे बच्चों, ये सब धीरे धीरे चीज़ें हैं ना, आपके साथ नहीं है, ये बहुत पहले से होते आई हैं। क्या आपको लगता है कि सरकारी दफ्तर सिर्फ 9 से 5 की रूटीन वाले होते हैं? ऐसे ऐसे कितने सरकारी दफ्तर, नहीं मैं कितने ऑफिस के बाप, सरकारी शब्द हटा दीजिए, मैं कहता हूँ ऐसे कितने दफ्तर हैं, शायद आप अपनी मम्मी पापा से कभी उनके साथ बैठ कर आराम से पूछेंगे तो शायद वो लंच भी अपना आराम से नहीं कर पाते होंगे। लेकिन आपकी नई नई जॉब लगी है, आपको लगता है कि ये प्रेशर सारा आपके ऊपर ही है, आप घर पर आते हैं तो अपना ऐसा रूप दिखाते हैं, मम्मी पापा खुद शांत हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई लड़का जाए लड़की ज़्यादा परेशान हो रही है, इनसे कुछ कहना नहीं, तो आप घर के काम कुछ कहना भी चाहते हैं, और अगर आपने बाई चांस की बात गलती से कह भी दिया तो सीधा ही जवाब है, आपको पता है ना मैं अभी ऑफिस से आया हूँ या आई हूँ, और उसके बाद आते के साथ ही मैं ये काम करूँगा कि अब मतलब अब आप कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि अब आप कमाने लग गए हैं। यहीं से जिम्मेदारियां जो कहते हैं ना उनका पतन होना शुरू हो जाता है, जबकि होना क्या चाहिए, आपको अपने दोनों के दोनों जो पलड़े हैं उनको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आपको बाहर का काम बाहर और घर के काम तो आपको घर में रखने पड़ेंगे। लेकिन होता क्या है, समस्या तब हमारे साथ हो जाती है कि जब हम अपने घर के कामों के साथ साथ में हम ये देखने लग जाते हैं कि हमारे जो घर के काम हैं हम उनको ऑफिस में या ऑफिस के काम को घर में लेके चले जाते हैं, समस्या यहां से बड़ी बिल्कुल खत्म हो जाती है, और फिर हम कहते हैं कि साहब अब हम नए नए बॉस बन चुके हैं, नए नए मालिक बन चुके हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आशियाना ऐसे बनता नहीं है, आशियाना बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत चाहिए होती है, और उन सब मेहनतों के पीछे आपका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए थोड़ा सा चिल रहने का और उसके बाद प्रोग्राम करने का और मजा आने का, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर, आशियाना प्रोग्राम चल रहा है, रेडियो पर जो आवाज आ रही है वो मेरी है, मनीष आजाद, रेडियो वाला।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात में मेरी भी मन की जो बात थी ना, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो नई जनरेशन होती है ना, जब उनके ऊपर नई नई जिम्मेदारी आती है, वो थोड़े बौखला जाते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है, क्योंकि अब नई जिम्मेदारी है। एक पीछे एक सोशल साइट पर एक फोटो देखी जिसके अंदर एक पिताजी दिखाए हैं, वो थोड़ा हेल्थी से दिखाए हैं, छोटा बच्चा है, उसको डांट रहे हैं, उसमें दिखते हैं। फिर उसके नीचे जो फोटो दिखाई है कि अब जो पिता हैं वो व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं और जो बेटा है वो बड़ा हो चुका, अब वो चिल्ला रहा है। अब इसका रिवर्स है, इसका मतलब मुझे उसको देख के, हालांकि अब आपको देखकर भी समझ में आ रहा होगा कि पहले वो चिल्ला रहे थे, अब ये चिल्ला रहे हैं, लेकिन अब ये जो सर्कल है ना साहब, ये बदल चुका है। नए बच्चों के ऊपर, नई जनरेशन जिन जी के ऊपर जब ये जिम्मेदारी का एहसास बनता है, तो वो अपने आप को परिवार का मुखिया समझने लगते हैं, कहने लग जाते हैं। यहाँ तक कि मतलब कितने घरों के अंदर मैंने सुना भी है, देखा भी है अपनी आंखों से, ये कहते हुए कि अब परिवार में वही होगा जो मैं कहूँगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है साहब, इसके पीछे कारण ये भी है कि जो एक कमाई का स्रोत है, या जो उसको सोर्स कहते हैं, जहाँ से वो इनकम आ रही है, क्योंकि वो घर का अब जो खर्चा है वो उठा रहा है, या वो बेटी उठा रही है, तो फिर जो खर्चा उठा रहा है क्या उसी की बात मानी जाएगी? या अब वो कमा के लेकर आ रहा है तो क्या अब जैसा वो चाहेगा वैसे ही होगा? इसका मतलब तो अगर वो रात को 10 बजे के बाद अगर घर में घुसता है, 11 बजे के बाद ये घर में घुसता है, या वो बेटी घर के, तो क्या माँ बाप ना पूछें कि आप इतना लेट क्यों आए? क्या अगर वो अपनी मर्जी से कहीं जाना चाहते हैं तो क्या उनसे ना पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अब आप कमाने लग गए हैं। क्या आपको लगता है कि इन बातों से आशियाना बनता है या वो बिगड़ता है? क्योंकि साहब देखिए, धीरे धीरे धीरे करके जहां आप दीवार में एक हथौड़ा और एक कील से एक बार, एक दिन में एक अगर मारेंगे, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि साहब उस दीवार के अंदर वो छेद हो जाएगा, और शायद वो जो कील है वो धस्ती धस्ती इतनी अंदर चली जाए कि वो आपके मन के अंदर ना पीड़ा डालने लग जाए। तो इसलिए कहते हैं परिवार में बच्चों को जिम्मेदारी देना जरूरी है, आनी भी चाहिए समय के साथ साथ में, लेकिन यह भी समझना चाहिए साहब कि परिवार में अगर आपके माता पिता हैं, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं, अगर आप उनकी सेवा करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली वाली बात है, और अगर आप उनको नकारते हैं और फिर आप ये दर्शाते हैं कि आप ही सबसे ऊपर हैं साहब, मेरे हिसाब से फिर मैं कहूँगा कि ये मेरा मत है, देखिए फिर आप भाग्यशाली नहीं है साहब, है ना। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मनीष भाई आपने गलत कहा, कि नहीं आप भाग्य, वो हम ही हैं सब कुछ, तो ठीक है साहब आप ही हैं। फिर इसको कहूंगा शायद मेरी ये थोड़ी सी जो सोच है थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी गलत हो गई आपके मायने में।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
3: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
4: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
5: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
4: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
6: 3 से 5 जुलाई, दिल्ली हाट जनकपुरी, नई दिल्ली में।

0: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
1: आज की रात मजा,
0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

बड़े बुजुर्गों का कहना है कि साहब जब कोई आशियाना बनाया जाता है ना तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर डाली जाती हैं, सीमेंट ईंट रोड़ी पत्थर तो ये सब डालते ही हैं साहब, लेकिन जो असल में उन चार दीवारों के बीच में रहकर जो आशियाना बनता है ना उसके अंदर प्यार की, अपनेपन की, एहसास की, उन खुशियों वाले रंगों की सबकी ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके बनता है वो आशियाना। उम्मीद करता हूँ आज का जो प्रोग्राम है आशियाना आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ जी मनीष भाई ये प्रोग्राम थोड़ा ठीक था, तो हम बस सुनने वाले सभी लोगों ये कहेंगे कि जो नए लोग हैं उनको तो मैं खास कर कहूँगा कि जिम्मेदारी आपके साथ नहीं है, जिम्मेदारी सभी के साथ है। आज आपके साथ है तो जो आने वाली आपकी जनरेशन होगी आप उनको क्या संस्कार, क्या एहसास, क्या अपनापन और क्या जिम्मेदारियां देंगे ये तो भाई वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे जाने का समय हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, प्रोग्राम होगा अल्फाजन, और अभी मेरे प्रोग्राम के बाद में प्रोग्राम शाहिद लेकर आ रहे हैं, प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। इसके बाद शाहिद भाई के साथ आप सुनेंगे सिटी लाइट, सिटी लाइट के बाद में निखिल वर्मा आपके साथ में होंगे, प्रोग्राम होगा मैसेज मसाला मिक्स। फिर उसके बाद में विनीता बेदी आपके साथ में होंगी, आपकी याद आती रहे, और फिर रंगे महफिल प्रोग्राम होगा विनीता बेदी के साथ में। तो फिर मेरे जाने का समय, ध्यान रखिएगा अपना, है ना, इन सभी रंगों को जोड़कर रखिए, बनाइए अपना आशियाना।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। और आज का अंक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं एफएम रेनबो 102.6 पर। आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे और आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हम यहां करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ होते हैं एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स, जो आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं। पर आप जुड़ते हैं प्रतिदिन, इसमें कोशिश करते हैं कि इसमें आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं और हमारी कोशिश होती है कि हम उस समस्या का समाधान करें। आज हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, वो थोड़ा सा हटके जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी से गहरा जुड़ा जरूर है। और साथ ही साथ सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तभी हम उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं। तो विषय सुन लीजिए, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी दो रेडियो डॉक्टर, और दोनों का स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन बधाल, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। नमस्कार मैम, स्वागत।
2: धन्यवाद शालिनी जी। नमस्कार श्रोताओं।
1: और हमारे साथ हमारी दूसरी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर स्मृति सिंह, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैत्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है स्मृति हमारे स्टूडियो में आपका।
3: थैंक यू, नमस्कार, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: श्रोताओं से पुनः एक बार ये रिक्वेस्ट करें कि आपको इस कार्यक्रम को सिर्फ सुनना नहीं है, आपको अपने मन की बात, यानी आपको जो जो समस्याएं इससे रिलेटेड आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनको हमारे साथ शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास सॉल्यूशंस हैं और वो आपको फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो समस्याओं का समाधान पूरी कोशिश करेंगे 4 बजे तक देने की। तो सबसे पहले कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सुमन बधाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो ये बताइए पीएमआर डिपार्टमेंट क्या है और ये क्या कार्य करता है?
2: पीएमआर डिपार्टमेंट, फिजियाट्री भी बोलते हैं, पुनर्वास, ये शुरुआती दौर में तो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, दर्द, न्यूरो रिहेबिलिटेशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इनके इलाज में ये सहायता करते थे। इस समय ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के किसी भी प्रकार या उसके बाद उसको कैसे समाज में पुनर्स्थापित करना है, चाहे वो उनकी वोकेशनल नीड हो या उनको वापस मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में वापस रीइंस्टेट करने का कार्य है। मुख्यतः लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उसके बारे में ये हर तरह की कंडीशंस को ये कार्य करते हैं
1: जी। तो बहुत कुछ आता होगा आपके इस जो विभाग के अंतर्गत, जिस तरह की भी आप बात कर रहे हैं, लोकोमोटर डिसऑर्डर्स बहुत तरह के हो सकते हैं और बहुत कारणों से हो सकते हैं, तो उन कारणों की बात भी हम जरूर करेंगे कार्यक्रम में। पर डॉक्टर स्मृति, आपके हिसाब से कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं इसके अंदर?
3: इसको हम दो तरीके से बांट, सबसे पहले ऑफकोर्स जो जन्म लेता है बच्चा वो डिफरेंटली एबल होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी उसमें भी होते हैं, लेकिन डिफरेंटली एबल कैटेगरी जन्म से, लिंग से, इन सब चीजों से डिसाइड नहीं होती है।

0: एज बैरियर भी नहीं होती, किसी एज में भी किसी को भी हो सकती है। सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है। और रीजन तो हम सब जानते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से डिफरेंटली एबल लोग हो जाते हैं। हम इसको एक विजिबल कैटेगरी होती है जो आप देख पाते हो, लोकोमोटिव लाइक यू नो विजुअली चैलेंज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरी नॉन विजुअल कैटेगरी होती है जिसमें हम देख नहीं पाते हैं, जैसे हीमोफीलिया हुआ, जैसे वो लोग जो सुन नहीं पाते, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, वो लोग जो डाउन सिंड्रोम है, ये कैटेगरी हमें दिखती नहीं है। तो हम इस तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं।
1: जी, पहले गीत सुनेंगे और फिर ये सारी चर्चा हम आगे करेंगे। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में, यानी दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम जो हमारे देश में उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ दो रेडियो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुमन बधाल और डॉक्टर स्मृति सिंह। तो हम बात कर रहे थे कि कौन डिसेबिलिटी कैटेगरी में फॉल करता है। डॉक्टर स्मृति ने हमें बताया कि बहुत तरीके से चैलेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो बाय बर्थ हो चाहे बाय एक्सीडेंट हो। तो डॉक्टर सुमन ये बताएं कि कौन कौन से डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या हर तरह की कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं या उसमें भी कोई लिमिटेशंस होती हैं, कोई कैटेगरीज होती हैं?
1: जी बिल्कुल, भारत सरकार ने गैजेट नोटिफाई में कर रखा है जिसमें 21 कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज रजिस्टर्ड हैं, दे कैन अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी। इनको जैसे कि मैडम ने भी बताया कि हीमोफीलिया, ब्लड डिसऑर्डर्स वाले हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, देन लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एसिड अटैक विक्टिम को भी एक इंट्रोड्यूस किया गया है, देन हियरिंग है, लो विजन ब्लाइंडनेस है और भी इस तरह करके तकरीबन स्पेशल लर्निंग डिसऑर्डर जो कि आजकल लेटली इंट्रोड्यूस किया गया है एंड दैट इज ऑल्सो सेरेब्रल पाल्सी। इस तरह तकरीबन 21 कैटेगरीज हैं जो गैजेट में नोटिफाइड हैं, वो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
0: तो ये अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये पहचान लिया कि आप उस कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन इसके लिए क्या स्पेशल कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई प्रोसीजर है या कोई वेबसाइट है, कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया है या फिजिकली फॉर्म सबमिट करना होता है, ये थोड़ा सा बताएं।
1: जी बिल्कुल, इस समय हमारी भारत सरकार ने बिल्कुल विकलांगता वाले जो व्यक्ति हैं जिनको ये परेशानी है तो वो सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए, यूनिफाइड करने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट है swablamban.com करके, जिसमें ये लोग अपने एरिया के हिसाब से अप्लाई करेंगे तो जो नोटिफाइड हॉस्पिटल है उसमें 3 अस्पतालों की लिस्ट आ जाती है निकल के, जिसमें से चूज कर सकते हैं मरीज को जो पास पड़ता है या जो उनकी एरिया में आता है तो उसके हिसाब से वो हॉस्पिटल उनके प्रिंट होके आ जाता है उनके एप्लीकेशन पे। फिर फिजिकली जाके उनको उस अस्पताल में उस रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या जो भी वहां पे काउंटर होता है उनसे जाके मिलना पड़ता है, फिर वो आगे का प्रोसेस उनको समझाते हैं और हर जिसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है उस कंसर्न विभाग को वो उनको भेजते हैं।
0: जी, जो मेरा अगला प्रश्न था वो हमारे श्रोता ने यहाँ पूछ लिया है, उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया है। लिखने वाले हैं अमृत, कहाँ से लिख रहे हैं ये नहीं लिखा है, पर उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर सुमन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं कि क्या आप प्रोवाइड करते हैं।
1: जी मैं बिल्कुल इनको बताना चाहूंगी, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए अमृतपाल जी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर हम कहें तो कई प्रकार के उपकरण अप्लायंसेस होते हैं, प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस। सफदरजंग विभाग में, पीएमआर विभाग में ऑर्थोसिस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट अभी हो गए हैं। प्रोस्थेसिस की कुछ नॉमिनल कॉस्ट है जो भारत सरकार के या जो ऑलरेडी नोटिफाइड लिस्ट है, कुछ एनजीओ या यूं कहें सीएसआर के अंतर्गत व्हीलचेयर भी जो डोनेशन बेसिस पे मरीजों को उपलब्ध करवाई जाती हैं, ये सारी सुविधाएं जो है सफदरजंग विभाग इनको सुचारू रूप से देता है।
0: जी जी, और सीएसआर की आपने बात की तो एक प्रश्न हमारे पास आया है, अनूप कुमार रांची से लिख रहे हैं कि सीएसआर जो है हर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इस पर आप क्या कहेंगे ये जानना चाहते हैं।
1: देखिए सीएसआर जो है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन इसमें व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन भी होता है। मैं कहूंगी छोटी एनजीओ है, जैसे अगर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूं, किसी को हेल्प करना चाहूं, अगर मेरी एनजीओ रजिस्टर्ड है तो आई कैन ऑल्सो हेल्प। और सीएसआर जैसे कॉर्पोरेट को एक मस्ट है उनको ये करना एक्टिविटी, तो दे हैव टू डू बाय वेरियस चैनल्स।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर स्मृति यहाँ मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि कितना लगता है आपको कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
2: अभी के आजकल के जमाने में सीएसआर 2% ऑफ द कंपनी इनकम, जो जितनी भी बड़ी कंपनी है उनके अपने भी फाउंडेशंस हैं और वो कंपनी के थ्रू भी हर डिसेबल को, आप जैसे मैम ने फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए बताया, विजुअली चैलेंज के लिए भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कंप्यूटर हुआ और सॉफ्टवेयर्स हुए, स्मार्टफोन हुआ, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जिनसे हम मिलते हैं और बहुत सारी कंपनीज इस तरीके की फैसिलिटी सीएसआर एक्टिविटी के अंदर देती हैं। तो आप जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन सारी सारी बड़ी कंपनी में आप देखोगे
0: सीएसआर की एक्टिविटीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली डॉक्टर स्मृति। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, फोन लाइन पर हैं, आइए सुन लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। हेलो,

0: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, प्रश्न कर लें। जी
0: हाँ जी मैम, मैं मिथुन बात कर रहा हूँ गुजरात से।
1: हाँ जी,
0: मैं जानना चाहता हूँ कि नहीं सरकार की क्या क्या योजना रहेगी जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए। मैम
1: जी, अभी ये बात हमें डॉक्टर सुमन बता रही थी। डॉक्टर बताएं इनको फिर से कि क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, यही जानना चाहते हैं। जी जी
2: निखिल जी, देखिए सरकार की, क्योंकि वो पर्सन जिसको डिसेबिलिटी है उसको हम एज ए होलिस्टिक इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए उसको कंसिडर करना चाहिए। तो हमें पहले डिसाइड करना चाहिए कि उसको चाहिए क्या, डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, उनकी जरूरतें कैसी हैं और किस अवस्था में जाके डिसेबिलिटी हुई है। उनकी एजुकेशनल नीड हो सकती है, उनकी वोकेशनल नीड हो सकती है, उनको एक यू कैन से कि एक डेडिकेटेड इनकम चाहिए अपने लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो वोकेशनल नीड हो सकती है, मॉनेटरी नीड्स हो सकती हैं। तो उस इंडिविजुअल को एज ए होलिस्टिकली आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो डिसेबिलिटी कार्ड बनाने के बाद उसके माध्यम से ये सारी उनका बेनिफिट जो है उसको पर्सन को मिल सकता है।
1: जी धन्यवाद प्रश्न करने के लिए, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया। और इस तरह के हमारे श्रोता जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे रेडियो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सुमन हैं और डॉक्टर स्मृति हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हम जो आज बात कर रहे हैं दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनको दी जाती है सरकार द्वारा और एनजीओ द्वारा, वो भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे। हमें इंतजार है आपके प्रश्नों का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों के बारे में, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैम,
1: कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
2: मैं अमृतपाल सिंह बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से।
1: जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं आज इस विषय पर?
2: हाँ मैम, जैसे मेरे एक नॉन है, उनकी एक आंख से बिल्कुल नहीं उन्हें दिखाई देता, तो इसके लिए सर्टिफिकेट के लिए क्या प्रोसीजर रहता है?
1: जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है डॉक्टर सुमैन का, कि किस तरह से ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है, बताएं।
3: धन्यवाद अमृतपाल जी सवाल पूछने के लिए। आपने जैसे बताया कि वो विजुअली चैलेंज है या उनका
1: एक आंख से
3: उनका दिक्कत है,
2: तो, जीरो है।
3: हाँ, तो इसका एक पोर्टल है जो सरकार ने ई सुविधा दी है, swavalamban.com करके, उसमें वहाँ उनको आधार बेस्ड ये सिस्टम है, ताकि जितने भी डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक यूनिफाइड डेटा सरकार को चाहिए, जिससे कि सारी सुविधाएं उनको बेनिफिट जो है इस UDID कार्ड के माध्यम से उनको दी जाए। तो पहले इनको रजिस्टर करना पड़ेगा swavalamban.com पे, उसके बाद इनके आधार बेस के हिसाब से इनका जो एरिया है उसके आसपास इनको 3 अस्पताल प्रायोरिटी के हिसाब से 1, 2, 3 करके इनके लिस्ट में आ जाएगा। तो जो भी अस्पताल इनको डेजिग्नेट किया गया है उस पोर्टल के माध्यम से, वो वहां जाके विजिट करें, कोऑर्डिनेट करें, और वहां उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आसानी से बन जाएगा।
1: तो बिल्कुल धन्यवाद, आपने प्रश्न किया, और आप जैसे और बहुत सारे श्रोता होंगे जो इस बारे में जानना चाहते होंगे, आपके माध्यम से, आपके प्रश्न के माध्यम से उनको भी जवाब मिल गया। हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है, नरेंद्र शर्मा जी हैं किस्तवाड़ जम्मू कश्मीर से, इन्होंने हमें अपने बेटे के बारे में लिखा है कि मेरा पुत्र है जिसकी उम्र 14 साल है, और अभी मेरा बेटा सामान्य स्कूल में कक्षा 8 में अध्ययनरत है, और वो जन्म से उसको हियरिंग वो इम्पेयर्ड है, 90% हियरिंग लॉस है। तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या उसको सामान्य स्कूल में पढ़ने दिया जाए या उसको कोई स्पेशल स्कूल में डाला जाए, क्योंकि इन्होंने काफी बड़ा लिखा है, पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, समय की थोड़ी कमी है। ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह की क्या इनको पढ़ाई कराई जा सकती है कि जिससे वो पैरों पर खड़ा हो सके, और उनको आगे किसी और स्कूल में डाला जाए जिससे कि उनकी आगे की जो जर्नी हो पढ़ाई की भी और जॉब की, वो इजी हो सके। इस तरह के कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या डॉक्टर स्मृति?
4: या सबसे पहले नरेंद्र जी, कोई घबराने की बात नहीं है, और आपका बच्चा अभी सामान्य स्कूल में पढ़ रहा है, और मैं यही आपसे आशा रखूंगी कि उसकी आप सामान्य स्कूल में ही पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। थोड़े चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए आप साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर या उनके जो विशेषज्ञ होते हैं, आपके जम्मू एरिया में भी हैं काफी लोग हैं, और वो हेल्प भी करते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात है, आइडेंटिफाइड जॉब है जो विजुअली चैलेंज, हेयरिंग इम्पेयर्ड या लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ लोग कर सकते हैं, तो उस तरीके के जॉब सरकार ने बताए हुए हैं, और उनमें बहुत सारे जॉब्स हैं जिनमें HH के लिए सीट रिजर्व रहता है, तो उसमें आपका बच्चा सामान्य लोगों की तरह जॉब भी कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, और आप सामान्य स्कूल में ही अपने बच्चे की पढ़ाई जारी रखें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी।
1: चलिए, बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न किया है नरेश जी, और आपको जवाब भी मिल गया डॉक्टर स्मृति की तरफ से। और हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो।
5: हेलो
1: जी, आप अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
5: वीपी सिंह बोल रहा हूँ, साउथ दिल्ली से।
1: जी वीपी सिंह जी, आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे आज इस विषय पर?
5: दो एक्सपर्ट हैं, दोनों से एक एक सवाल है।
1: हाँ जी बताएं।
5: जो सफदरजंग हॉस्पिटल में है जो मैडम है, उनसे सवाल ये है मेरा कि जो पहले से ही विजुअली चैलेंज पर्सन है और मेडिकल कार्ड भी है उसके पास, कंसेशन कार्ड होते हैं,

0: रेलवे में फैसिलिटीज को अवेल करते हैं, जो यूआईडी कार्ड बना दिए हैं, जो टिकट बुकिंग करने के लिए वो यूआईडी कार्ड होना जरूरी है। तो कहाँ से बन सकता है?
1: अभी मैडम ने बताया था यूआईडी कार्ड कैसे बनाया जा सकता है, एक बार शॉर्ट में फिर से बता दें, आप शायद लेट जुड़े होंगे कार्यक्रम में।
2: यूआईडी कार्ड के लिए आपको swablamban.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये एक आधार बेस्ड सिस्टम है जिसमें आपका आधार से और आपके फोन से लिंक्ड है। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन जो जानकारी है आपके फोन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इसमें जब आप रजिस्टर करेंगे आपको 3 अस्पताल की लिस्ट दी जाएगी, तो जिसमें से जो भी अस्पताल आपको बेस्ट सुटेबल लगता है आप वहां विजिट करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
1: चलिए धन्यवाद बीपी सिंह जी, आपका प्रश्न हम तक पूरा नहीं पहुंचा लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। और एक और श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो जी,
3: मैं 80 साल उम्र है मेरी साहब
1: जी, नाम बता दें।
3: जगजीत सिंह है मेरा नाम।
1: अच्छा जी जगजीत सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: 218 में मेरी आंखों का इलाज हुआ था। मेरी रोशनी उस टाइम 20% थी, अब बिल्कुल कम हो गई है रोशनी। कोई हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से?
4: हाँ जी सर, 80 साल के लोगों को गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, आप जिस एरिया में लोकेटेड हैं उसके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, जो स्पेशल स्कूल के हैं, या नॉन गवर्नमेंट एनजीओस के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, क्योंकि इट्स वेरी मतलब एज रिलेटेड डिसेबिलिटी तो आती है। अब जो 75 साल तक सब साल तक जी रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे आंखों से, अब आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, एस सिंपल एज दिस। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होती है। तो उनका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम रन किया जाता है और उनको सुविधा दी जाती है जो मुफ्त में किया जाता है। तो आप जैसे लोगों के लिए भी सुविधा है।
1: इसको कैसे किया जा सकता है अवेल?
4: इसको अवेल करने के लिए आप जिस एरिया में हैं, उस एरिया के जो भी आपके आप पता करो कि उनके आपके एरिया में गवर्नमेंट या एनजीओ से रिलेटेड कौन से स्पेशल स्कूल्स हैं, कौन से स्पेशल सेंटर्स हैं, वहां पर आप जाओगे वो सब सुविधाएं देते हैं। बहुत सारे एनजीओस को आप कांटेक्ट करोगे पर्सनली भी, जो आपके स्टेट में होंगे, तो वो आपके घरों पर भी आके आपको ये सुविधा प्रदान करते हैं।
1: जी जी, तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सिर्फ थोड़ा सा पता करना है, आपको सही जगह पर पहुंचना है। हमारे पास ये व्हाट्सएप मैसेज आया है, पवन ने लिखा है उत्तराखंड से कि CWSN जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए वर्तमान में कोई एजुकेशन फैसिलिटी भी राज्य या केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है? डॉक्टर सुमन आपसे जाना चाहेंगे।
2: जी बिल्कुल, जैसे कि इनका सवाल है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके लिए बहुत सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखी है। तो हालांकि स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है ये बहुत बाद में गैजेट में इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इसमें एक समग्र शिक्षा अभियान है जिसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं इन बच्चों के लिए दी गई हैं। NCERT का जो करिकुलम है उसमें भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए गए हैं इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए। इंक्लूसिव क्लासरूम्स बनाए गए हैं, स्पेशल एजुकेटर्स नॉर्मल क्लासरूम में ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि बच्चों को एक नॉर्मल क्लासरूम का उनके नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के हिसाब से उनको एक आइसोलेटेड फीलिंग ना आए। इसके अलावा एक PME विद्या पोर्टल है, वो भी इन बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
1: जी डॉक्टर स्मृति, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपने शुरू में बताया कार्यक्रम के कि आप एक केयर गिवर भी हैं, तो किस तरह से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की जो बात हो रही है, पवन जी पूछ रहे हैं, तो किन किन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है?
4: हर डिसेबिलिटी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। मैं अगर सबसे पहले तो ये हेल्थ प्रोग्राम है, तो मैं एजुकेशन को शॉर्ट में करके अब हेल्थ पर ज्यादा जाऊंगी। ये एजुकेशन में ट्रांसपोर्ट से लेके और बहुत सारे रूल्स हैं जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट के तरफ से, और बहुत सारे सरकारी स्कूल में फॉलो भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पर किसी भी वजह से, अवेयरनेस की वजह से, एक्ट नया है, 2016 एक्ट आया, फिर 2017 एक्ट आया लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, तो बहुत सारी चीजों की वजह से अभी चीजें ना बन रही हैं, एडजस्टमेंट में हैं, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में। तो सबसे पहले तो FM रेनबो को बहुत सारा थैंक यू कि अवेयरनेस इस बारे में आ रहा है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बारे में बहुत कम बात करते
1: जी,
4: हैं
1: जी, जी।
4: और उसमें इस वजह से काफी सारी प्रॉब्लम होती है। क्लास में बच्चों को कहने को हम कह देते हैं कि समग्र शिक्षा होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, बहुत बार बच्चा क्लास में एडजस्ट नहीं कर पाता है तो कहीं का नहीं रह जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं है तो स्कूल रोज जाने की प्रॉब्लम है, कैसे जाएगा बच्चा, ये वाली सारी प्रॉब्लम है। तो

0: जैसे सीएनजी लगा हुआ है पीछे, तो व्हील चेयर नहीं जा सकती है बच्चे की, बहुत बार बहुत तरीके की प्रॉब्लम है
1: जी, बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की भी बात आपने बताई, और एक श्रोता जरूर वेट कर रहे हैं, तो हम पहले उनको ले लेते हैं, इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: जय किशन अग्रवाल, साइकिल मार्केट चैनल से
1: जी। जी अग्रवाल जी, बताएं
2: आपको। नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
2: मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो कॉलेजेस हमारे यहाँ दिल्ली में हैं, और बाहर के जो विकलांग लोग हैं बच्चे आके पढ़ते हैं, और जो दिल्ली के भी जो विकलांग दूर दूर रहते हैं, क्या उनके लिए कॉलेज में हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, और अगर करते हैं तो किस आधार पे करते हैं?
1: कॉलेजेस की बात की उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या हॉस्टल की जब बात करते हैं तो हॉस्टल में इनके लिए कुछ अलग से कोटा होता है या कुछ अलग से ध्यान रखा जाता है? डॉक्टर स्मृति बता रहे हैं।
0: यस, हर कॉलेज में 4% सीट डिसेबल लोगों के लिए रिजर्व की गई है, 5% रिजर्वेशन है डिसेबल लोगों का। उसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में हॉस्टल हैं, हॉस्टल की प्रायोरिटी देखो, और उसमें जब 4% या 5% सीट रहता है तो जरूरी, तो हॉस्टल की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है? अब होता ये है कि कुछ बच्चे फिर भी घर के पास के होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, तो बहुत सारे हॉस्टल्स में अब क्या करें उसके लिए, तो जो बच्चे आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं और थोड़ा सा मार्क्स बेसिस ले लेते हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, और जो बच्चे दिल्ली के होते हैं उनकी प्रायोरिटी बाद में होती है। बट ऐसा नहीं है कि बच्चों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो एनजीओस चला रहे हैं जिनमें इन बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है। परेशानी तो है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारी सीट सारी चीजें एक तरीके से हो जाती हैं कि सबको हॉस्टल मिल जाता है, सब कुछ हेवन नहीं है, लाइफ इज नेवर हेवन, बट
1: प्रयास तो करते रहना पड़ता है।
0: बट ऐसा नहीं है कि लाइफ इज हेल ऑल्सो, लाइफ इज ब्यूटिफुल।
1: यस, लाइफ इज ब्यूटिफुल। एंड अभी हमारे एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो,
3: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार,
3: नमस्कार।
1: नमस्कार जी, हमारे रेडियो डॉक्टर्स आपको सुन रहे हैं, आप अपना नाम बता दीजिए।
3: मैम, मैं दिल्ली से जाहिद बात कर रहा हूँ, फिल्म दिल्ली से।
1: जी जी जाहिद जी, बताएं।
3: मैम से मेरे सवाल है कि मैं जो है 2001 में सर्टिफिकेट बना था, मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट 2001 में, आरपी पेशेंट हूँ मैं, तो 75% में बना हुआ था। अब जो बिल्कुल आई साइड जो है 1-2% ही रोशनी रह गई है, तो क्या ये दूसरा बन जाएगा नया? और दूसरा सवाल ये है मैम कि इसके मुझे फैसिलिटीज क्या मिलेगी, वो बेनिफिट तो मुझे मिलता है जो पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, इसके अलावा जैसे मैं 32 साल से रेंट पे रहता हूँ, तो कुछ इसका कोई ऐसा है जैसे मकान मिल जाए कोई किसी लोन पे किसी पे, या कुछ आमदनी का सिलसिला बन जाए, जैसे कुछ हमें काम मिल जाए, कोई एजेंसी है या कोई कारोबार या कोई भी चीज इस तरह की जो हमारी इनकम बढ़ जाए कुछ।
1: इन्होंने जो बताया कि 75% इनकी डिसेबिलिटी थी और अब ज्यादा बढ़ गई है, तो डॉक्टर सुमन क्या दोबारा से ये रिवाइज किया जा सकता
4: जी,
1: है?
4: जी बिल्कुल, ये दोबारा अस्पताल में जाके अपना सर्टिफिकेट रीअप्लाई करके और दिखा सकते हैं, अगर वो डिसेबिलिटी अगर वाकई
1: मेडिकल होता होगा इसके लिए।
4: बिल्कुल, दोबारा एक मेडिकल बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाता है और देखा जाता है कि अगर बढ़ गई है तो उसको जरूर रिवाइज किया जाता है।
1: और जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, अभी डॉक्टर स्मृति ने भी बताया बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और जैसे अभी हमारे जो श्रोता है उन्होंने भी बोला कि क्या हमें कुछ काम मिल सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बहुत जरूरी है, और एक स्कॉलरशिप की बात करते हैं कि अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है छात्रवृत्ति मिल सकती है क्या, इस तरह के प्रश्न आते हैं। स्किल्ड ट्रेनिंग या एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ हेल्प मिल सकती है, तो जब हम पुनर्वास पर बात करते हैं तो ये सारे बिंदु भी जरूर छूना जरूरी है। तो मुझे बताएं कि डॉक्टर स्मृति आपसे पूछूंगी कि इस तरह की जो सुविधाएं मिल सकती हैं या मिल रही हैं क्या सरकार की तरफ से?
0: पहले मैं उन भाई साहब को जवाब देना चाहूंगी, हमें डीडीए की स्कीम्स में रिजर्वेशन मिलता है, पीएम आवास योजना में भी हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, और बहुत बार डिसेबिलिटी ग्राउंड पर अगर आपकी इनकम उसको मैच करती है तो घर फ्री के भी मिलते हैं, और आप उसमें बैंक्स के थ्रू पीएम आवास स्कीम के थ्रू पता करके उसको देख सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपको देखना है कि आपकी जो जॉब है आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ स्वयं सहायता ग्रुप भी हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब भी हैं, बहुत सारे तरीके की चीजें हैं। आपको थोड़ा सा अपने एरिया में देखो, हम डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है, मैं भी एक वुमन हूँ, मैंने भी एक्सप्लोर की है जिंदगी, और उस तरीके से आप थोड़ा सा अपने घर के बाहर निकलिए। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपना हाथ फैलाए, अपनी बाहें पसारे, आपका स्वागत करने के लिए, आपको समायोजित करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं।
1: जी, बहुत बहुत पॉजिटिव बातें डॉक्टर स्मृति यहाँ बता रही हैं, डॉक्टर सुमन बता रही हैं, और इस तरह से हमें लगता है कि अगर हम इन सब चीजों का हमें सही जानकारी मिले तो हम ये सब चीजों को अवेल कर सकते हैं। और अभी हम जो बात कर रहे थे प्रशिक्षण के बारे में, अभी डॉक्टर सुमन से मैं फिर से पूछूंगी, लेकिन इस बीच में एक जो मैसेज आया है उसको मैं लेना चाहूंगी। उत्तराखंड कोटद्वार से नरदेव सिंह चौहान जी ने लिखा है कि डॉक्टर साहब, शालिनी मैम आपको नमस्कार, और दिव्यांग समाज के लिए उनके प्रशिक्षण, उन्हें सक्षम बनाने के लिए कौन सी योजना है, इसी बारे में मैं आपसे जानना चाह रही थी। तो ये प्रश्न भी आ गया हमारे श्रोता का।
4: जी बिल्कुल, धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। देखिए, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है और आपका एजुकेशन लेवल क्या है, उसके बाद आपकी हॉबीज क्या हैं। क्योंकि अगर एक जरिया बंद हो जाता है, जैसे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में एग्जांपल दूं, अगर कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और उनकी टांग चली गई है, तो अब उसको देखना पड़ेगा एजुकेशन लेवल क्या है या उनकी हॉबी क्या है, उसको हम वोकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक पीएम दक्ष DEPWD पोर्टल है, जिसमें दो बेसिकली डोमेन है। एक जो डोमेन है वो स्किल ट्रेनिंग के लिए है, दूसरा जो है दिव्यांग रोजगार सेतु है, जिसमें आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई PWD जो पर्सन है किसी भी जॉब देने वाली संस्था के साथ जुड़ सकता है, अस्पताल में जाके भी वोकेशनल रिहैबिलिटेशन करवा सकता है, या वोकेशनल रिहैबिलिटेशन स्कूल्स हैं जो बेसिकली उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देके दोबारा सक्षम बना के और कम्युनिटी में उनको वापस रीइंटीग्रेट करती हैं।
1: तो इस तरह के पोर्टल पे हम इंफॉर्मेशन होंगी,
4: बिल्कुल
1: उस इंफॉर्मेशन से आप उस चीज को अवेल कर सकते हैं। और एक मैसेज हमारे तक पहुंचा है, लिखने वाली है जानवी भारती, इन्होंने लिखा है मेरठ में रहती है, रेडियो डॉक्टर रोज ये सुनती है, उन्होंने लिखा है कि मेरी विकलांगता है आंखों की और मुझे 40% विकलांगता है, क्या कोई स्मार्टफोन या फोन की सुविधा होती है जो हमें मिल सके, जिससे कि हमें हेल्प मिल सके काम करने में और इन सब चीजों के लिए। तो इस तरह की कोई फैसिलिटी है डॉक्टर स्मृति?
0: यस, इस तरीके की फैसिलिटी है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय हमेशा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हमेशा लेके आते हैं स्कीम्स, और उसमें आपको फॉर्म भर के अपनी डिसेबिलिटी UDID के साथ अप्लाई करना पड़ेगा और वो आपको फोन देंगे। मिलता है सब कुछ, सुविधाएं मिलती हैं आजकल।
1: तो सुविधाएं हैं जैसा डॉक्टर स्मृति बता रही हैं, लेकिन आपको सही जगह पर पहुंचना है। यहाँ पर एक गाना सुनेंगे, क्या कहेंगी डॉक्टर स्मृति? एक गीत आपकी पसंद का मैंने निकाला है, और मुझे लगता है डॉक्टर सुमन ने भी मुझे बताया कि ये गीत उन्हें भी बहुत पसंद है, मोनाली ठाकुर की आवाज में मोह मोह के धागे। तो ये गीत मेरा भी बहुत पसंदीदा गीत है, तो हम तीनों मिलकर पहले एक गीत सुनते हैं, लौटते हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं?
2: हाँ, पहले तो शालिनी मैम को, शालिनी तो है, नमस्कार
1: जी। नमस्कार राजेंद्र जी। जी
2: मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से।
1: जी जी, आप अपना प्रश्न करें।
2: और दोनों विशेषज्ञ साहिबाओं को भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार सबकी तरफ से। हाँ जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं?
2: मेरा पहला सवाल ये कि देखिए, दिल्ली में जो है, दिल्ली में बसें चलती हैं और दिल्ली में विकलांगों के लिए बसों में अटेंडेंस भी अलाउ है और जो है पास भी अलाउ है, पर बसें पूरे हिंदुस्तान में चलती है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं है? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल, क्या ट्रेन में और हवाई जहाज में और ये जो मेट्रो चलनी शुरू हुई है, क्या इनमें भी अटेंडेंट और पास की सुविधाएं गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है क्या, इसके बारे में बताया कर चुकी है? और तीसरा सवाल मेरा है कि जो लोग बाईपास हैंडीकैप होते हैं, कुछ लोग बाद में होते हैं, तो जैसे प्ले प्रोसीजर था कि आप उसके लिए आप जाके अस्पताल में हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाइए, तो तमाम उम्र काम करता था, तो अब क्या उसको रिन्यू करना पड़ता है 4-5 साल में, या फिर जो है वही कंटिन्यू पूरी लाइफ चलता है? ये कुछ मेरे सवाल है, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी प्रश्न करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि जैसे इन्होंने भी कहा कि क्या फैसिलिटीज दी जाती है दिव्यांगों को, और आप कुछ कहना चाह रही हैं डॉक्टर स्मृति?
3: या मैं ये कहना चाह रही थी कि सुविधा तो नहीं है, लेकिन हर मेट्रो स्टेशन पर जब आप घुसते हो तो वहां पर आप बता देते हो कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो मेट्रो का स्टाफ स्वयं आपको असिस्ट करता है। आपके जाने से पहले मेट्रो स्टेशन का स्टाफ खड़ा रहेगा आपको रिसीव करने के लिए, और आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं उस जगह की सवारी पर आपको बैठा के छोड़ेगा। तो इस तरीके की सुविधा तो अवेलेबल है, लेकिन ये वाली तो अटेंडेंट वाली सुविधा नहीं अवेलेबल है। और दूसरी बात, ये जो रिन्यू कराने का कह रहे थे मैम, ज्यादा अच्छा बता पाएंगी, लेकिन ये डिसेबिलिटी के पास इसमें जैसे टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी आपके सर्टिफिकेट पर है तो उसको रिन्यू तो नहीं कराना पड़ता है।
1: जी डॉक्टर सुमन, आप बताएं, जैसे ये बोल रहे थे क्या अगर एक बार बन जाता है तो उसको रिन्यू भी कराना होता है क्या?
4: जैसे कि मैडम ने बताया, अगर लिमिटेड वैलिडिटी या टेम्पररी सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू कराना पड़ता है, उसकी अवधि उस कार्ड पे मेंशन होती है कितने समय के लिए कार्ड वैध है या वैलिड है, अगर परमानेंट है तो उसको रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं होती है।
1: जी जी जी, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन कुछ और बहुत जरूरी बातें हैं जो मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, कि जब हम दिव्यांग की बात करते हैं उनकी कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के लिए हम बात कर लेते हैं कि वो हॉस्पिटल में अगर वो पहुंचते हैं तो किस तरह की सुविधाएं उनको दी जाती हैं।
4: जी बिल्कुल, अभी इसके बारे में जागरूकता काफी हद तक आ चुकी है, और भी आगे इसकी आवश्यकता है कि जागरूकता बढ़े और ये प्रोग्राम जैसा कि इस तरह की चीजों की बिल्कुल बेहद आवश्यकता है। अस्पताल में मैं आपको बताना चाहूंगी, दिव्यांगजनों के लिए एक अलग डेजिग्नेटेड काउंटर होता है, जब वो घुसते हैं उनके लिए पार्किंग होती है, सबसे पहले गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग होती है, असिस्टेंस होती है। मैं सरकारी अस्पताल की बात कर रही हूँ, एक डिसेबिलिटी पार्किंग है, देन उनका एक अलग से काउंटर होता है, उनको बकायदा मे आई हेल्प यू से काउंटर से उनको डेजिग्नेट किया जाता है कि उनको किस विभाग में जाके दिखाना है। सुगे में लिफ्ट होती है आजकल, विजुअली चैलेंज के लिए, हियरिंग वालों के लिए हर तरह की लिफ्ट जो है हर फ्लोर पे उपलब्ध है, ताकि वे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके।
1: जी तो ये सुविधाओं की हमने बात की, पर यहाँ ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर स्मृति हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्मृति, ये बताएं किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करती हैं?
3: या एक तो मैं केयर गिवर भी हूँ, तो हॉस्पिटल आना जाना, क्योंकि मेरी बेटी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से अंडर ट्रीटमेंट है वो, तो हॉस्पिटल आना जाना और बहुत सारी चीजों में, क्योंकि बहुत क्राउडेड होते हैं हॉस्पिटल्स, और पार्किंग तो बहुत दूर की बात आती है, तो उसमें आने में पहले प्रॉब्लम होती है। फिर मेडिसिंस जो होते हैं, जो गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों का धन्यवाद जिन्होंने QR कोड मेडिसिंस पर बहुत जगह पर अभी रिकॉग्नाइज कर लिया, 300 मेडिसिंस पर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और सारे मेडिसिन पर भी रिकॉग्नाइज करेंगे, तो मेडिसिन लेना भी अपने आप में एक डिसेबल के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन कई तरह के एक ही साइज की होती है, उसको पहचानना और उसको सब कुछ करना बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब QR कोड या ऐसे एक्सेसिबल मेडिसिन और या हेल्थ केयर के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं तो बहुत ही सुविधाएं हो जाती हैं। बहुत बार डॉक्टर्स एक्सरे या कोई भी चीजें नहीं समझ पाते हैं, तो टाइम का भी ये रहता है, तो बहुत सारी चीजें नहीं बता पाते हैं, लेकिन अवेयरनेस आ रही है, इसलिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड डॉक्टर्स को भी बताना जरूरी है कि कैसे, या हेल्थ कर्मी को बताना जरूरी है, नर्स को, वार्ड बॉय को, कि एक डिसेबल को आप कैसे हेल्प करोगे, उसको किस तरह की जरूरत है, तो उससे ज्यादा सुविधाएं आएंगी हॉस्पिटल में। और सरकार इस तरफ अग्रसर है, लेकिन मुझे पता है कि हम लोगों की ऐसे इनिशिएटिव के बाद सरकार और भी ज्यादा काम करेगी और सारी चीजों को हमारे हेल्थ केयर बहुत सारी पॉलिसीज भी बनी है, अभी काफी अवेयरनेस आई है, लेकिन अभी काफी कुछ करना बाकी है, स्पेशली डिसेबल विथ विमेन विथ डिसेबिलिटी को लेके बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो सोचने में भी, अगर मैं बोलूंगी तो पूरा प्रोग्राम चला जाएगा।
1: जी, जी, जी। हम समस्याओं पर बात आज कर रहे हैं पर समाधान पर भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुमन इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे?
4: जी बिल्कुल, मैं इनको कहना चाहूंगी कि इसके अलावा जब हम अस्पताल में जाते हैं, जैसे अस्पताल की मैं बात करूं तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये सारी इन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू।
1: जी, तो बहुत सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें लगता है हमारे श्रोताओं तक पहुंची होगी। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली डॉक्टर स्मृति की, बहुत सारी जो QR कोड से जो ये दवाइयां परचेज की जा सकती हैं, इस पर कार्य चल रहा है, उस तरह का कार्य और आगे बढ़ता रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है, यश है, न्यू दिल्ली में रहते हैं, ये बोल रहे हैं कि आई वॉन्टेड टू आस्क व्हाट कैन अ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स डू टू रिड्यूस द स्टिग्मा एंड प्रमोट इंक्लूसिवनेस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी हम चाहते हैं जहां पर सबको

0: समान अधिकार हो, तो ये अधिकार और सब कुछ सारी सुविधाएं सबको मिल सके, इसके लिए क्या बहुत जरूरी है? क्या हमें इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करना चाहिए या कलेक्टिव वर्क करना चाहिए? बहुत कम समय है, पर मैं दोनों आप दोनों से थोड़ा थोड़ा सा इस बारे में चाहूंगी।
1: या सबसे पहले तो इस तरीके की स्टिग्मा से लड़ने के लिए जो आज का इनिशिएटिव है वो शालिनी मैम को बहुत सारा धन्यवाद। इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है हम सबको डिसेबल्स को इक्वल समझना चाहिए। उनकी कैपेबिलिटी को देखें, डिसेबिलिटी को बाद में देखें, तो स्टिग्मा अपने आप चला जाएगा। उनसे फ्रेंडशिप करें, उनकी जिंदगी में समझे ये सोसाइटी के लिए जरूरी है कि उनके अलग से कॉलोनी ना हो, अलग से घर ना हो, अलग से वो एक दूसरे के साथ न रहें। हमें कोशिश करना चाहिए, हम सबको कोशिश करना चाहिए, हम डिसेबल भाई बहनों को भी कोशिश करना चाहिए कि हम मोर ऑफ सबके साथ रहने की कोशिश करें और उनको अपने बारे में खुल के बताएं, खुल के अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और खुल के उसके समाधान के बारे में बताएं और हंसे खुशे से रहें। डिसेबिलिटी सबके पास है, किसी न किसी तरीके से उसको बस केटर करने की जरूरत है।
0: बहुत अच्छी बात बोली। और डॉक्टर सुमन, आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स?
2: बिल्कुल, मेरे भी यही है कि हमें डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, सोशल इंक्लूजन पे हमें ध्यान देना चाहिए, बेबी इट्स इकोनॉमिक और इन डे टू डे लाइफ। अगर हम उनको अपने से अलग नहीं समझेंगे, दे विल बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी, तो स्टिग्मा अपने आप चले जाएगा। दे विल नॉट कंसिडर देम स्पेशल, यू इंक्लूड देम इन सोसाइटी एंड वेलकम देम, क्योंकि देखिए सबकी भागीदारी से ही समग्र प्रगति संभव है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली, और अब इसी तरह से हम मिलजुल कर रहें और कार्यक्रम आप सुनते रहिए, और ये कार्यक्रम आपको बहुत सारी जानकारी अब तक पहुंचाएगा। और आज का जो ये कार्यक्रम था वो विशेष हमने केंद्रित किया था दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके ऊपर, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स पर। और हमारे साथ हमारी रेडियो डॉक्टर्स रही डॉक्टर सुमन बादाल, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर स्मृति सिंह हमारे साथ थी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैत्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों समय निकाल कर यहाँ आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
2: धन्यवाद।
0: और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का समय आ गया है, और आप अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को दीजिए इजाजत, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंदे पर रात 9 बजे।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: हाय
4: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर श्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। भारतीय प्रवासियों ने उनके स्वागत में पारंपरिक नृत्य और गायन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। इससे पहले प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त रीवा सुंदरजा आम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गया है। इसकी पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। इसके लिए रीवा के किसानों को ₹150 प्रति किलोग्राम का मूल्य मिला। ये मूल्य स्थानीय बाजार भाव से अधिक है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. Today I'm talking about upscaling. Upscaling के माध्यम से कंपनियां नए कर्मचारियों को नियुक्त करने पर समय और बजट खर्च करने के बजाय अपने मौजूदा कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाकर पैसे बचा सकती है। इसके अलावा मौजूदा कर्मचारी अपनी नौकरी से गारंटीकृत वेतन और आरामदायक कार्यस्थल के माहौल से ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी अब सशुल्क छुट्टियां, किफायती स्वास्थ्य सेवा और पेशेवर प्रशिक्षण जैसे लाभों की उम्मीद करते हैं। कर्मचारियों को अपस्किल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करके संगठन कर्मचारियों को ये संदेश देते हैं कि उन्हें महत्व दिया जाता है और कंपनी के साथ उनका भविष्य समर्पित है। नौकरी की भूमिकाएं और उनकी आवश्यकताएं तेजी से बदल सकती हैं। कर्मचारी अपनी कंपनी में विकास के अधिक अवसरों की अपेक्षा करते हैं। ये कौशल अंतराल को कम करके किसी संगठन को अधिक प्रतिस्पर्धित बनाने में सक्षम है। इससे कौशल अंतराल को भरने के लिए कंपनी के बाहर से भर्ती करने की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे कर्मचारी संतुष्टि बढ़ती है, प्रेरणा, प्रदर्शन और मनोबल बढ़ता है। इससे कर्मचारियों की प्रतिधारणा क्षमता बढ़ती है। नियुक्तियों पर रोक और नौकरी बाजार में तंगी का मतलब है कि संगठनों को आवश्यक भूमिकाओं के लिए नई प्रतिभाओं को अपने यहाँ ही खोजना होगा, जो कि कौशल उन्नयन से संभव होता है। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla spice.lamhe.vanilla। कौशल अंतराल की पहचान करें। अपस्किलिंग रणनीति विकसित करते समय कंपनियों को सबसे पहले अपने संगठन में मौजूद कौशल अंतराल की पहचान करनी चाहिए। ये कदम व्यवसायों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनके अपस्किलिंग प्रयास उनके कार्यबल की जरूरतों के अनुरूप हो। इसके बाद कंपनियों को अपस्किलिंग प्रयासों के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, बाजार में सबसे नए उपकरण पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो सकता है। हालांकि ये विकास दीर्घकालिक रूप से व्यवसाय की मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए एक संगठन को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वे दीर्घकालिक मूल्य बढ़ाने के लिए अपने मुख्य कौशल को कैसे सुधार सकता है। हालांकि उद्योग के रुझाने के साथ बन रहे और नई तकनीक का उपयोग करना अभी भी आवश्यक है, ताकि कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रख सके। एक बार कौशल अंतराल की पहचान हो जाने के बाद व्यवसाय उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निर्माण और चयन करना शुरू कर सकते हैं, जो उनके लिए सबसे अधिक सार्थक हो। ये कुछ कारकों को निर्धारित करता है, जैसे क्या वॉल्यूम प्रशिक्षण सत्र की आवश्यकता है या फिर एक पर एक पाठ अधिक लाभदायक होगा। क्या प्रशिक्षण आंतरिक रूप से किया जा सकता है या किसी बाहरी शैक्षणिक संस्थान को नियुक्त करने की आवश्यकता है। किस प्रकार की शिक्षा सबसे अधिक सार्थक है, मार्गदर्शन, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सत्र या उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम। कौशल उन्नयन की योजना तैयार करना। दोस्तों, अब मैं आपको अपस्किलिंग के लाभ के बारे में बताने जा रहा हूँ आज के लम्हे प्रोग्राम में, और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। अपस्किलिंग में मौजूदा कर्मचारियों को नई नौकरी कौशल सिखाने में मदद मिलती है। कंपनी को नौकरी के आवेदकों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है और कर्मचारी अनुभव को बेहतर बनाता है। इसके अलावा जबकि अपस्किलिंग

कार्यक्रम महंगा है, वे एक मजबूत बॉटम लाइन और निवेश पर रिटर्न उत्पन्न करते हैं। श्रमिकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण के अवसर बनाना अक्सर कार्यस्थल की समस्याओं को संबोधित करने की तुलना में कम खर्चीला होता है। निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने से कर्मचारी प्रतिधारण दर भी बढ़ती है, जिससे टर्नआउट कम होता है और भर्ती और ऑनबोर्डिंग लागत कम होती है। कर्मचारी जुड़ाव से सुधार करता है। संभवित और मौजूदा कर्मचारी अपने नौकरियों में पेशेवर विकास और प्रशिक्षण के अवसर चाहते हैं और वे ऐसी भूमिकाओं की तलाश करेंगे जो ये विकल्प प्रदान करती हैं। अपस्किलिंग इन कर्मचारी मांगों को पूरा करता है, जैसे कर्मचारी उत्पादकता को अनुकूलित करता है, कर्मचारी जुड़ाव में सुधार, अंततः उत्पादकता बढ़ाता है। साथ ही अगर कर्मचारी उस तकनीक को नहीं समझते हैं जिसके साथ वे काम करते हैं तो वे अपनी नौकरी में उत्कृष्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कर्मचारियों को नई तकनीक में अपस्किलिंग करना उनकी उत्पादकता में सुधार के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, अब रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के बीच अंतर आप समझेंगे आज के लंबे प्रोग्राम में चेतन के साथ। अपस्किलिंग का मतलब है मौजूदा कर्मचारियों को अतिरिक्त कौशल प्रदान करना। ये नए कौशल किसी मौजूदा भूमिका को बेहतर बनाने या उसके विस्तार करने या किसी व्यक्ति के करियर पथ में अगले चरण के लिए योग्य बनने के लिए सीखा जाता है। अपस्किलिंग का एक उदाहरण एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो सकती है जो अपने डेवलपर्स को एक नई भाषा की प्रशिक्षण देती है जिसका उपयोग वे नए उत्पाद विकसित करने के लिए करेंगे। दूसरी ओर रीस्किलिंग का मतलब है किसी असंबंधित भूमिका के लिए नए कौशल सीखना या करियर में बदलाव करना। रीस्किलिंग के लिए अक्सर किसी कर्मचारी को किसी अलग क्षेत्र में डिग्री या प्रमाण प्राप्त करने के लिए कॉलेज या ट्रेनिंग में वापस जाना पड़ता है। रीस्किलिंग का एक उदाहरण है निर्माण श्रमिक हो सकता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए स्कूल वापस जाता है। अपस्किलिंग कर्मचारियों को उनके करियर में एक रेखिया पथ के लिए विकसित करती है, जबकि रीस्किलिंग का उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति के करियर के लिए पार्श्व आंदोलन के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का कार्यक्रम अपस्किलिंग के बारे में। With this, we come to the end of today's Lamhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla. This program is sponsored and produced by Adventist Media Center.

आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। आपके साथ साथ में कौन सा वाला प्रोग्राम है? इस प्रोग्राम का नाम है आप अल्फा जन की बात कर रहे हैं। जब अल्फा जन की बात करते हैं तो अल्फा जन के अंदर ये समय है अपने आप को डिटॉक्स करने का। सो लेट्स डिटॉक्स योर सेल्फ। आप अब ये सोच रहे होंगे कि डिटॉक्स करने के क्या फायदे? अरे साहब, सबसे पहले मन में अगर कोई बात जब आ जाए ना तो उसके दूर करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस मन के अंदर आई हुई बात को दूर नहीं किया गया तो भाई साहब मैं कहता हूं कि आपको वो अंदर ही अंदर गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट में करता रहेगा और फिर आपको वो कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं डिटॉक्स तुरंत के तुरंत कर दिया जाए, यानी कि उसकी सफाई जरूर कर दिया जाए। वैसे तो डिटॉक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको सबसे

अच्छा कोई डिटॉक्स करने का तरीका मुझे समझ में आता है या आपको समझ में आता है तो उसको मेरे हिसाब से सेल्फ मोटिवेट कहते हैं। अगर आपको ये तरीका आपने अपना लिया ना तो साहब जिंदगी भर के लिए आपको बहुत कुछ आसान आसान लगने लग जाएगा। तो आज के सर्फा जेन के अंदर मैं यहां पर आपके साथ आपका दोस्त मनीष आजाद, रेडियो वाला, रेडियो पर जानकारी देने के लिए आपके साथ में। तो फिर बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए अपने आप को लेट्स डिटॉक्स।

अल्फा जेन के अंदर प्रोग्राम के अंदर मैंने भी कुछ कुछ सीख लिया, जैसे ये जो लास्ट में कोरस के अंदर प्रोग्राम मिला, धन्ना धन्ना मैं देने सीख लिया, अब इसके साथ साथ सीखने की जरूरत क्या रहेगी, है ना। जब मन में ये वाला सवाल आ जाए कि अब क्या जरूरत रहेगी साहब सीखने की, हमें सब कुछ हमें पता है, क्या कहा, जब सब कुछ पता है तो साहब फिर तो इसका मतलब आप तो सबसे ऊपर आ गए मन में। लेकिन जब बात हम कहते हैं ना कि अगर आपके मन में ये अगर बात है, हम डिटॉक्स करने की अगर बात करें तो साहब जब डिटॉक्स करने की बात आते हैं मन में बहुत सारे मैल सच में होते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं साहब हमारे मन में कुछ नहीं है साहब, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। अगर मन में कुछ नहीं है तो फिर सोच विचार किस लिए। इसलिए कहते हैं सबसे अच्छा जो बेहतर तरीका है खुद को ये जानने का कि आप कहां पर सही हैं और कहां पर गलत हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा सवाल आप अपने आप से खुद से करें कि आप अपना बेस्ट कहां पर देते हैं और कहां पर आपकी खराब वाली परफॉर्मेंस आ रही है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको अपने आप को बेहतर आकलन करने से ये समझ में आएगा कि बेस्ट और वर्स्ट वाला जो सीन है वो कहां पर आ रहा है। क्योंकि मेरा खुद का एक ये मानना है कि हम अपने आप से सबसे अच्छे से सवाल भी कर सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं। और मेरा मानना है कि साहब अपने आप से अच्छा जज करने वाला कोई भी नहीं होता। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि जब भी आप बच्चों से परीक्षा में पूछ लो घर आते, बेटा एग्जाम कैसा हुआ, अरे क्या बताऊं पापा, अरे क्या बताऊं मम्मी, एकदम बढ़िया हुआ है। जबकि बच्चे को सच में अपने आप में पता होता है कि एग्जाम कैसा हुआ है, कौन कितने पानी में है, ये पता होता है। अगर आपको कोई कह दे कि आपको भाई साहब 1 किलोमीटर है ये 1 मिनट में पार करना है, नहीं होगा ना। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं कर दूंगा, मैं तेज भागता हूं, नहीं साहब, थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकल होकर सोचना शुरू कीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी, अपने आप को डिटॉक्स करने में सच में बहुत बहुत बहुत मदद मिलेगी। आगे आपको ये बताऊंगा कि मन के अंदर का जो एक इंसान है उसे कैसे बाहर निकालें, है ना। क्योंकि बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आपने वाली बात सुनी होगी, तो क्या है बताएंगे आप गीत के बाद में।

सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

फिर से स्वागत आपका प्रोग्राम अल्फा ज़ेन, और अल्फा ज़ेन के अंदर हम बात कर रहे हैं लेट्स डिटॉक्स की, यानी कि डिटॉक्स करने के कितने सारे ऐसे तरीके हैं। आप ये खुद जानते भी हैं, कुछ अपनाने से डरते हैं और कुछ ना ना ना करते रहते हैं। देखिए, शरीर के अंदर की जो सफाई है ना, अगर आप योगा करने जाते हो तो योगा वाले गुरुजी, योगा वाले जो सर जी हैं वो बताते हैं, अंदर ऐसे लंबी सी सांस लीजिए। लंबी सी सांस होती है, वो कहते हैं फेफड़े उससे उनको जो बिल्कुल अच्छी वाली जो हवा मिलती है उनको, वो उससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आपको लगता है पेट थोड़ा सा गड़बड़ है तो 2-3 दिन तक आपको बोला जाता है कि भाई आपको हल्का हल्का वाला खाना खाना है। इसका मतलब ये जानते हैं कि हल्का खाना खाने से आप, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, दाल हो गई, जो पेट के अंदर कुछ गड़बड़ होगा वो सब साफ हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ कुछ डॉक्टर्स, अगर आप, भगवान न करे कभी आप ऐसे अस्पताल में अगर भर्ती हो जाते हैं, तो उस दौरान आपको लिक्विड डाइट दी जाती है, ताकि कुछ ऐसा आपके जो लिक्विड डाइट्स के वो आपका जो शरीर है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अब ऐसा ही जो हमारी जो नई जनरेशन है उनके साथ भी है। कहा जाता है कि जब आप देखेंगे, जब दशहरा आता है तो उस दशहरा के दौरान में बहुत सारे सोशल साइट्स पर ये चलता है कि मन के अंदर की आप अपने रावण को मारिए, अपनी अंदर जो आपकी बुराइयां हैं उनको मारिए। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके अंदर जितनी बुराइयां हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। लेकिन कोई व्यक्ति कहता थोड़ी है ये कि हमारे अंदर कोई बुराई है। हर कोई इंसान अपने आप को अच्छा मानता है। इसका तरीका क्या है साहब? अच्छा तो हर कोई इंसान है ही, क्योंकि जो ईश्वर की ये जो रचना है ये सच में बहुत अच्छी है। लेकिन हम कुछ कुछ कुछ सोच सोच कर अपने हिसाब से, ना जी ऐसा ना जी वैसा, सब गड़बड़ गड़बड़ हम कर देते हैं। तो जब गड़बड़ गड़बड़ कर देते हैं तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए इसकी सफाई बेहद जरूरी है। सो डू योर सेल्फ एंड डिटॉक्स योर सेल्फ, यू कैन गेट मैनी मैनी मैनी एम्बिएंट रिजल्ट्स। तो इसलिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए बेटर होगा कि आप अपने आप को डिटॉक्स करके देखिए। कभी कभी अच्छा लगता है साहब अपने आप को ऐसे करना।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
9: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
10: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
9: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
10: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
11: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
12: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
13: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

भैया जी प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जैन। अल्फा जैन में हम बात कर रहे हैं डिटॉक्स करने की, अपने आप को कैसे आप डिटॉक्स कर सकते हैं। अब साहब देखिए, बात मन में जब आती है ना कि साहब ये भी कर लो वो भी, यानी कि इच्छाएं बहुत सारी हैं मन में, आज ये कर लें आज वो कर लें, और इस तरह की इच्छाएं तो साहब टीनेज वाली जो उम्र होती है ना बहुत ज़्यादा आती है। आज जैसे ही कोई फिल्म देख ली, मतलब देशभक्ति वाली, तो फौजी बनना है साहब। देखा कि नहीं ये नहीं भाई, फौजी नहीं बनना। अब ऐसा करके डॉक्टर वाली फिल्म देखी, डॉक्टर बनकर मुझे बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस करने हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों की जान बचाऊंगा। फिर अगले ही पल कुछ और देख लिया, फिर वो बनना है। यानी कि हर घंटे के बाद ये जो इच्छाएं हैं ना, ये अपने आप बनती हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे वो बढ़ती रहती हैं, वो प्रबल होती रहती हैं। फिर आप मम्मी पापा से कहते हो मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जेनरेशंस के अंदर वो पेशेंस वाला जो हिसाब है ना, वो नहीं है साहब। अब अपने आप को इसको हम कैसे सही कैसे कर सकते हैं? सही करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जिस भी उम्र में हो, अगर मैं कहूँगा कम से कम आप 10th तक तो आप पास कर लीजिए। विदेश के अंदर तो कितने सारे ऐसे स्कूल्स हैं, आप देखेंगे साहब वहाँ तो एडमिशन्स ही 6th क्लास से होते हैं। वो कहते हैं साहब 5वीं क्लास तक के बच्चों को अपने पास घर पे रखिए, घर पे पढ़ाइए, घर पे सिखाइए। हम तो असलियत में जो पढ़ाई होती है यहाँ से पढ़ाते हैं, यानी कि वो सिखाते हैं तब तक, और फिर वो जब स्कूल्स के अंदर से ही सिखाना शुरू कर देते हैं कि आपको अपने बर्तन भी खुद साफ करने हैं, कपड़ों की तय भी लगानी है, सब कुछ। यहाँ तो आप समझ जाइए साहब, 5 बार 10 बार जब तक आवाज़ ना लग जाए, मजाल नहीं भाई साहब कि वो काम हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर एक काम कर दिया तो कहा जाता देखो मैंने कितना काम कर दिया, है ना। जनरेशन से अब अपने आप को हम कैसे हम सोचें कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं। A4 साइज का पेपर लेना है, उसको लैंडस्केप कर दीजिए, उसको बीच में से एक लाइन डाल दीजिए। अपने आप के हिसाब से जितना आप अपने आप को जानते हो, बिना इसके अंदर कोई भी झूठ लिखे, सच और सच लिखना है। बस उसके अंदर आप देखिए कि अपना आप बेस्ट कहाँ दे सकते हैं, उल्टे हाथ की तरफ लिखिए, कहाँ पर कमी आ रही है सीधे हाथ पे लिख दीजिए। दोनों के फायदे, अगर मैं ये करता हूँ तो यहाँ तक जाऊँगा और ये नहीं करता हूँ तो यहाँ के जाऊँगा, इसके परिणाम ये निकलेंगे, इसके दुष्परिणाम ये निकलेंगे, आपके हाथ में चीज़ आ जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ हम ना करने के बजाय हम दूसरों पर आरोप, तो उससे क्या होता है, जो मन के अंदर वाली जो चीज़ें हैं ना वो बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। और फिर जब हर किसी घर के अंदर बात चलती है, एक दिन जब बम फटेगा पता चलेगा, और एक दिन जब बम फटता है तब बहुत सारी बातें, मैंने उस समय ऐसा कहा था, तुमने उस समय ऐसा कहा था, यही सब चलता रहता है साहब। इसलिए अपने आप से सवाल करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको अपने आप से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। ठीक है ना।

दीदी ने कही कि सीधे पॉइंट पे आओ ना, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं कि भाई हमारा जाने का समय अब आ चुका है, क्योंकि ये शाहिद कहेंगे प्रोग्राम आपके साथ में सिटी लाइट, उसके बाद में निखिल वर्मा आएंगे लेकर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, उसके बाद में वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम होगा सैटेलाइट का, सुहासिनी आपके साथ में होगी, विनीता बेदी आपकी याद आती रहे, फिर उसके बाद होगा वेस्टर्न म्यूजिक का इन द ग्रूव, सुहासिनी आपके साथ में, विनीता बेदी प्रोग्राम करेंगी रंगे महफिल। ठीक है साहब, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो अल्फा जैन वाला प्रोग्राम था, अपने आप को डिटॉक्स कैसे करें उसके बहुत सारे तरीके आपको पता हैं, और मैं तो उम्मीद से आपको यही कहूँगा कि अगर आपको वो तरीके अपनाएंगे, अपने आप को कागज पर उतार के लेकर आएंगे, तो बहुत कुछ आप यकीनन पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी मेहनत अपने आप को खुद को करनी पड़ेगी, अपने आप से खुद से सवाल करना होगा, क्योंकि जब आप सवाल खुद से करते हैं ना साहब, मैंने कहा ना आप अपने आप को खुद जानने के लिए इससे बढ़िया बेहतर कोई जज है ही नहीं, क्योंकि आप अपने आप को भली भांति जानते हैं कि आप कितने पानी में हैं और कितने नहीं। इसलिए अपने मन के अंदर के मैल को बाहर निकाल दीजिए, उसके बहुत सारे तरीके हैं। लोगों की बात भी अगर सुनेंगे, मम्मी पापा की बात सुनेंगे, क्या कोई भी ऐसा मम्मी पापा माता पिता हैं जो अपने बच्चों को बुरा चाहेंगे? नहीं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर साहब आप भी मम्मी पापा जरूर बनेंगे, तो आप उस समय अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सुनते रहिएगा आकाशवाणी रेनबो, आपके लिए लगातार 24 घंटे कई सारे कार्यक्रम के साथ साथ आपको मनोरंजन तो कराते ही हैं, आपको जानकारी भी बेहतर देते हैं, तो बस बने रहिए हमारे साथ में। बाकी अगली जो आवाज आएगी वो सिटी लाइट में शाहिद भाई की आपके साथ में होगी। बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा

0: इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फौरो ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जोयसास जोस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
4: यह देश का नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो, और यहां पर प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका इवनिंग फेवरेट शो सैटेलाइट्स। मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद।
5: Welcome to the show.

वेलकम बैक टू द शो सैटेलाइट 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर शाहिद के साथ। पुलिस जनता की समस्याओं को सुनती और उनको हल करने में मदद करती है, हम सभी जानते हैं, पर क्या उनकी अपनी समस्याएं नहीं होती हैं? पुलिस कर्मियों की सर्विस रिलेटेड इश्यूज के रेस्टोरेशन के लिए और रेजोल्यूशन के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नया इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है। अब पुलिस कर्मियों को अपनी सैलरीज, पेंशंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट्स या छुट्टियों से रिलेटेड अकाउंट्स, बिल्स और एप्लीकेशंस या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए, मैटर्स के निपटारे के लिए ऑफिसेस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और अकाउंट्स ब्रांच के ऑफिशियल्स अब खुद हर 15 दिनों में पुलिस स्टेशन और यूनिट्स पहुंचकर शिकायतों को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे, और इस तरीके से दिल्ली की पुलिस जो है, पुलिस जो जनता की सेवा में उनकी समस्याओं को हल करने में लगी रहती है, अब उनकी समस्याओं का हल होगा वहीं, यानी कि पुलिस स्टेशन में ही।

सुखविंदर सिंह क्लिंटन सिरिज की आवाज और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक एयरमैन का म्यूजिक आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। और अब दिल्ली का नया हेरिटेज हब बनने वाला है कौन? यमुना बाजार। अभी तक तो काफी कंजेस्टेड सा, काफी खराब सा और बहुत ही दबा हुआ सा, जो बिल्कुल साफ साफ नजर में नहीं आता ऐसा लगता है, लेकिन दिल्ली का यमुना से सदियों पुराना नाता फिर एक बार जीवंत होने जा रहा है। डीडीए ने यमुना बाजार एरिया के हिस्टोरिकल कैरेक्टर को रिवाइटलाइज करने के लिए एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। इसके तहत डिमोलिशन का काम पूरा होने के बाद, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वजीराबाद से लेकर पुराने रेलवे ब्रिज के बीच मौजूद 32 हिस्टोरिक घाटों का कायाकल्प किया जाएगा। और उसके बाद ये पूरा एरिया देश के अलावा दुनिया भर के टूरिस्ट्स के लिए मेजर कल्चरल और पब्लिक प्लेस के तौर पर अपनी अलग पहचान बना लेगा, क्योंकि इसकी अब खूबसूरती जो दिखेगी वो बिल्कुल अलग ही होगी। तो इस तरह से यमुना बाजार बनेगा दिल्ली का हेरिटेज हब। लौटेगा 122 साल पुराना गौरव और लौटेगी वो हिस्टोरिक तारीखी इश्क भी।

सिटी लाइट्स में आगे बढ़ें और सिटी में जो मौसम चल रहा है उसकी बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, तो आगे बढ़ेंगे लेकिन मौसम की बात भी कर लेते हैं। फिलहाल जो मौसम चल रहा है वो कुछ गरज वाला और आंधियों वाला तो चल रहा है लेकिन अभी बरस वाला उतना नहीं हो पाया है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो भी 42-43 डिग्री सेल्सियस के बीच ही घूम रहा है और आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी धूप की कल भी और आजकल कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा धूप की तेज़ी है, तो आप भी अपना ख्याल रखें। और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है और यही अगले कुछ दिन रहने वाला है, लेकिन एक बदलाव है और वो बदलाव है काफ़ी सुहाना और ये बताया जा रहा है कि मानसून जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते दिल्ली में दस्तक दे सकता है। और कल के बारे में भी यही प्रेडिक्शन है, कल है संडे तो कल भी हल्की बारिश हो सकती है लेकिन उसके बाद 30 जून और 1 जुलाई को पूरी पूरी उम्मीद है कि बारिश अच्छी खासी होगी और मौसम बदलेगा। साथ ही जुलाई के फर्स्ट वीक में मानसून के दस्तक देने के बाद काफी ज्यादा उम्मीद है कि मौसम हो जाएगा सुहाना बारिश होने से। एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो दिल्ली की एयर क्वालिटी फिलहाल पुअर कैटेगरी में चल रही है और आज का जो AQI था वो 173 रिकॉर्ड किया गया। धूप की तेजी काफी ज्यादा है तो आप अपना ख्याल रखें, जब भी आप बाहर निकलें तो अपने आप को कवर करें, ऊपर से कुछ सर पर लगाएं जैसे कि कैप या कोई और चीज़, और साथ में पानी की बोतल आप ज़रूर रखें।

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
2: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
3: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
3: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
4: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
6: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4-5 रेनबो पर।
7: देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम सिटी लाइट्स आप सुन रहे हैं, मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद।

दिल्ली गवर्नमेंट ने यमुना के किनारे 8 ऐसी अनसेफ या असुरक्षित वल्नरेबल लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है, जहां पर मानसून के दौरान 24 घंटे 24/7 राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जरूरत रहेगी। ऐसा 2023 और 2025 जैसी भयानक बाढ़ की सिचुएशन को दोबारा होने से रोकने के लिए किया जा रहा है। आपको याद होगा कि 2023 में जो हाल बुरा था, पानी कहां तक आ गया था बारिशों की वजह से, तो इस बार ऐसी सिचुएशन ना आए बारिशों के मौसम में, क्योंकि मानसून बहुत जल्द आने वाला है जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो तैयारी पहले से ही कर ली गई है। उस समय आपको याद होगा कि नदी का पानी सड़कों पर आ गया था और नजदीकी रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गया था, और वहां पर काफी ज्यादा असुविधा हो गई थी, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, और साथ ही पूरे शहर में जरूरी सेवाएं भी, जो सर्विसेज होती हैं, एसेंशियल सर्विसेज, रोजाना की, रोजमर्रा की जरूरत की घर की चीजें, उन पर भी बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा था और वो सर्विसेज बहुत बुरी तरीके से बाधित हो गई थी। तो इस बार उन हॉटस्पॉट्स को, 8 हॉटस्पॉट्स को जो कि यमुना के किनारे मौजूद हैं, उनके साथ साथ ही हैं, तो मॉनसून फ्लड मॉनिटरिंग के लिए उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, ताकि पहले से ही तैयारी कर ली जाए।

और अब सिटी लाइट्स में आपको मैं बता दूं आपके रोजमर्रा के सफर से, आपके कम्यूट से जुड़ी हुई दो अहम इंपॉर्टेंट अपडेट्स। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरीज आई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजादपुर मंडी के पास ड्रेनेज की खुदाई और निर्माण कार्य में बिना रुकावट जारी रखने के लिए 16 जून से कुछ ट्रैफिक अरेंजमेंट्स इंप्लीमेंट किए गए थे और ये अरेंजमेंट्स 15 जुलाई तक जारी भी रहेंगे। तो क्या है वो अरेंजमेंट्स और कहां से हो गए, कहां कहां पर डाइवर्जन, वो आपको बता दें कि इस दौरान जो ये काम चल रहा है ड्रेनेज की खुदाई और निर्माण का, उसके दौरान जो की डाइवर्जन पॉइंट्स हैं वो है आजादपुर चौक ट्रैफिक लाइट से जहांगीरपुरी टी पॉइंट मुकरबा चौक, इसके अलावा महेंद्र पार्क से आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के बीच ट्रैफिक मूवमेंट भी अफेक्टेड रह रहा है और रहेगा इतने दिनों तक, यानी कि 15 जुलाई तक ये अल्टरनेट रूट आपको लेना पड़ेगा। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ये एडवाइजरी है कि आप इस रास्ते से बचें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या तो यूज़ करें या फिर दूसरा रास्ता लें। अगर आप इस रास्ते पर जाते हैं तो आपको परेशानी भी हो सकती है, ट्रैफिक में फंसना भी पड़ सकता है और इसके लिए आप अगर अल्टरनेट रास्ता लें तो उसके लिए आउटर रिंग रोड है जो मुकुंदपुर की तरफ जाता है, वो आप रास्ता ले सकते हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

जसविंदर नरूला और रेमा फर्नांडिस की खूबसूरत आवाज, खूबसूरत ट्रैक प्यार तो होना ही था। आप सुने मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद और सिटी लाइट्स में एक और आपको ट्रैफिक से रिलेटेड जानकारी दे देते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मथुरा रोड पर स्थित भोगल फ्लाईओवर जो आश्रम चौक को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन एरिया से जोड़ता है, वो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम यानी RRTS के कंस्ट्रक्शन वर्क को फैसिलिटेट करने के लिए वेनेसडे से शुरू होने वाले 4 दिन तक आधी रात से सुबह 4 बजे के बीच ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। तो आप ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा, अगर आप इस तरफ से गुजर रहे हो तो आपको ये रात आधी रात से सुबह के 4 के बीच बंद मिलेगा। ये जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दी गई है ताकि कम्यूटर्स को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप अपना सफर आसानी से पूरा कर सकें।

अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें ताकि आपको कोई ठग ना ले। और साथ ही जब आप बाहर निकलें अपनी गाड़ी लेकर के, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि ट्रैफिक के रूल रेगुलेशंस को जरूर फॉलो करें, वो आपकी सेफ्टी के लिए हैं। गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, और जब टू व्हीलर राइड करें तो हेलमेट बहुत जरूरी है आपकी सुरक्षा के लिए। अपना रखें बहुत अच्छी तरीके से ख्याल, और सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। शायद साइनिंग ऑफ, निखिल इज कमिंग अप लेकर के मैसेज मसाला मिक्स। टेक केयर एंड बाय बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी

0: का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी अभी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो हेलो, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा। जी हां, एक बार फिर आ गया हूं लेकर इन सतरंगी पटरियों पर अपनी अतरंगी यारी के साथ म्यूजिक, मस्ती, एंटरटेनमेंट और बहुत सारे मैसेजेस भी, बिकॉज शो का नाम ही है मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें हम करते हैं ढेर सारी बातें। मैं देता हूं आपको एक टॉपिक और उस टॉपिक पर आप भेजते हैं मुझे अपने मैसेजेस। तो जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मतलब आपको बहुत इजी लगेगा। देखो क्या होता है ना, कभी हमें कोई रेसिपी देखनी होती है या फिर हमारा फ़ोन ख़राब हो जाए तो उसे कैसे ठीक करें, या फिर ट्रेन का टाइम जानना हो, कोई फॉर्म भरना हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना हो, बस याद ना हो कि कोई काम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली हम जाते हैं गूगल खोलते हैं और उस पर सर्च करते हैं, है ना। लेकिन लेकिन लेकिन हर किसी के घर में, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है, आई मीन अ ह्यूमन गूगल जिसे हम बोल सकते हैं, जो आप बस इजीली उनके पास रीच आउट करते हो कि भाई ये काम समझ नहीं आ रहा है, या ये चीज़ कहाँ मिलेगी, या फिर कौन सी वैकेशन पे कहाँ जाया जाए, कहाँ टिकट्स बुक होंगी, कहाँ कैसे क्या कुछ कर सकता हूँ, इस वो सब आपको आंसर

बस इंस्टेंटली मिल जाते हैं। तो बस आज आप मुझे बताएंगे कि आपकी लाइफ में वो कौन है जिसको आप गूगल की तरह यूज करते हैं, जो आपके लिए एक, जिसके लिए आपको फोन नहीं खोलना पड़ता, जिसके लिए आपको टाइप कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको उनके पास जाना होता है या फिर उनसे सिंपल एक मैसेज या कॉल पे पूछना होता है कि भाई ये काम कैसे करूं। तो बता दीजिए मुझे कौन है आपकी लाइफ में आपका ह्यूमन गूगल। 9868107070, 9868107070, 9868107078 007070 इस पे आप मुझे मैसेजेस भेज दीजिए। आपके मैसेजेस का मैं इंतजार कर रहा हूँ और शो का आगाज हमेशा की तरह एक प्यारे से गाने के साथ।

गम फिसल जाता है और कोई भी परेशानी हो वो दूर हो जाती है अगर आपके पास कोई ह्यूमन गूगल फॉर्म हो, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके पास जाकर आप सब कुछ पूछ सकते हो इससे पहले आप इंटरनेट से कुछ पूछें, है ना। तो वही आज हम आपसे पूछ रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंच गए हैं। पहला मैसेज जो हमें आया है, ये मैसेज हमें आया है

जी दैट्स सो ट्रू. मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि घर में हमारे ना घर में आसपास, वही मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ. एक्चुअली यही हमारी सारी बात है कि आप हमें वो बताइए, जब ये गूगल नहीं था, जब ये इंटरनेट नहीं था, तो भी लोग एक दूसरे से ही पूछते थे ना कि वहाँ का रास्ता कैसा है, कब कहाँ कैसे जा सकते हैं, मौसम कैसा रहेगा, यू नो, वो सब क्या सबका एक्सपीरियंस होता था. और वही सब एक्सपीरियंस जो है वही ह्यूमन फॉर्म में है वो लोगों के पास जो हम पूछते हैं. पापा जो सब चीज़ों के इंजीनियर होते हैं, मम्मी जिनके पास रेसिपी, मेडिसिन, खोई हुई चीज़ें जो आपको गूगल नहीं ढूंढ के दे सकता, वो मम्मी ढूंढ के दे देती है. दादी नानी, उनके पास तो पूरा इंसाइक्लोपीडिया है घर की, जितनी भी नुस्खे होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं. बड़े भाई बहन आपके काम में आपकी मदद करते हैं, आपकी पढ़ाई में आपके असाइनमेंट रेस्क्यूअर हैं. ऑफिस के कोई एक जो कुछ सारे शॉर्टकट्स आपको बता देते हैं, चाहे वो टेकी कज़न हो या फिर एक ऐसा फ्रेंड जिसको हर कैफे, हर रेस्टोरेंट, हर मूवी, क्रिकेट के सारे स्टैट्स और ट्रैवल के जितने भी हैक्स हैं वो सब पता होता है. या फिर आपके पड़ोसी जो जिनसे आप कंसल्ट करते हो, जिनसे आप पूछते हो कि भाई ये चीज़ लेना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ तो कैसे लो, है ना, वो सब. तो आज हमें आपको यही बताता है कि आपकी लाइफ में वो कौन है जो आपके लिए गूगल से ऊपर है, जिनसे आप सारी चीज़ें पूछते हो. तो बस दिल खोल के उनकी तारीफ कर दीजिए और हमें बता दीजिए. अभी सुन रहा हूँ आपको एक बहुत ही प्यारा गाना, और उस गाने के बाद एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि जब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तारीफ करी है कि मम्मी पापा, तो उनके रिलेटेड कुछ सॉन्ग्स भी मैं आज शो में प्ले करूँगा डेफिनेटली. बट अभी फिलहाल ये गाना, बिकॉज नाउ आई एम फीलिंग गुड, इतने टाइम बाद में आया हूँ और आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सारा मजा आ रहा है, तो आई फील गुड. हियर इज द सॉन्ग, एंजॉय.

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं, मैं सिर्फ साला मिक्स और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा। और आज हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपकी लाइफ में आप गूगल का यूज ना करते तो कौन है वो ह्यूमन गूगल जिसके पास आप मदद के लिए जाते हो, जो आपको सारे सवालों के जवाब बस चट से झटपट बता देते हैं और आपको जरूरत ही नहीं लगती गूगल या इंटरनेट पर जाने की। मैसेजेस भेज दीजिए अपने 9868107070 पे, आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूँ मैं। और बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी आ भी चुके हैं, तो ये मैसेज जो हमारे पास आया है, ये मैसेज आया है हमें किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और केशव रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग। और आज के टॉपिक पर हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे ह्यूमन गूगल हमारा भांजा है जिसका नाम रवीश कुमार है, जिसको बहुत कुछ नॉलेज है और कुछ भी पूछना हो या कुछ भी करना हो सीधे उसको बता देते हैं और सटीक जवाब भी मिलते हैं और नाइस प्रेजेंटेशन कह रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप शो सुन रहे हैं, आपने मैसेज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज हमें भेजा है अनु शर्मा जी ने सरिता विहार से, लिख रहे हैं कि गूगल की तरह पूछ लेता हूं घर में अनुभवी छोटे बड़े लोग, अम्मा, भाई, बहन, बेटी, जो अपने क्षेत्र में होते हुए भी बहुत सारी जानकारी रखते हैं और सवाल का उत्तर दे देते हैं जब इनसे कुछ भी पूछ लेता हूं। पिता, दादा, दादी नहीं, वरना वह भी सूचनाएं देने में काबिल थी। एक्चुअली अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात करी अनिल जी कि सब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो एनसाइक्लोपीडिया हैं, वो सब कुछ जितनी नॉलेज है उनके पास वो सब मतलब गूगल पे भी नहीं होगी, मैं जो बात कर रहा था। तो वही आज आपको हमें बताना है भाई कि कौन है आपकी लाइफ के ह्यूमन गूगल। 9868107070 पर। और अगला मैसेज पढ़ते हैं, ये मैसेज हमें भेजा है इनका नाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट, नाम भी मुझे मिल गया है। जी हाँ, पंकज कामरवती महाराष्ट्र से मैसेज भेज रहे हैं और

है कि मेरी लाइफ में ह्यूमन गूगल है, मेरे दोस्त ललित, जिसे मैं अपनी समस्या बताता हूँ और वो उसका समाधान खोज के दे देता है। पिछली बार मैंने उनसे पूछा था कि पैन कार्ड और आधार को लिंक कैसे किया जाता है, तो उन्होंने मुझे इसकी सटीक जानकारी दी और सही जानकारी भी दी थी। वो बहुत पढ़े लिखे हैं और उन्होंने मतलब हाईली क्वालिफाइड और PhD भी कर रखा है। ऑल राइट, दैट्स सो ग्रेट कि आपके पास इतने यू नो नॉलेजेबल दोस्त हैं। और प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं कि मेरी लाइफ में ह्यूमन गूगल कोई नहीं है। कोई बात नहीं, आप हमारे दोस्त हैं, हम हैं, और आपको जो भी जानकारी चाहिए भाई, आकाशवाणी रेनबो आप तक हर जानकारी पहुंचा रहा है, तो बस आप हमारे साथ बने रहिए तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मैसेज और पढ़ लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है रंजीत कुमार मंडल ने सिकटी अररिया बिहार से। लिख रहे हैं कि मैं अपने मित्रों को ही ह्यूमन गूगल की तरह यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि उनके पास बहुत सारी नॉलेज है। ऑल राइट, और भी मैसेजेस हम तक आ रहे हैं, मैं सारे मैसेजेस पढ़ूँ जैसा कि मैं आपसे हमेशा वादा करता हूं। तो आई एम नॉट गोना मिस एनी मैसेज। और सिलीगुड़ी से मीरा सिंह का मैसेज भी हम तक आ चुका है, और ये मैसेज हमें बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं हमारे पास, तो मैं सारे मैसेजेस लूंगा, लेकिन अभी वक्त है गाने का। और मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि भाई हम बात कर रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मम्मी, हमारे पापा, ये सब हम तक बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे गाने इन पर भी बने हैं और बहुत सारी नॉलेज इन सबको है। तो भाई ये गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, सुनिधि चौहान की आवाज़ में, नीरजा मूवी का ये गाना आप सबके लिए।

ऑलराइट, सो अगला जो मैसेज है वो है हमें भेजा है नरेंद्र सोनी ने देवगढ़ से, लिख रहे हैं कि सर हमारी मम्मी के अलावा अगर कोई खास कुछ हुआ तो आकाशवाणी जिसे हमारे कुछ जानकारी ले सकते हैं तो वो हम सुन लेते हैं। वही मतलब तो आप सब मेरे दिल की बात जानते हैं ना, जो बात मैं कह चुका हूँ या करने वाला हूँ वो आप पहले ही मैसेज में भेज चुके हैं। सो यही तो है दिल से दिल का कनेक्शन। ऑलराइट, और मीरा सिंह जी का मैसेज सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल से है, लिखते हैं कि मेरी लाइफ में मेरी छोटी देवरानी जिनका नाम कविता है वो मेरी ह्यूमन गूगल है और वो बहुत प्यारी सिस्टर भी है मेरी। ऑल राइट, दैट्स सो क्यूट, आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा। और कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान मैसेज भेज रहे हैं, लिख रहे हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, इस वक्त मेरे पास मेरे रेडियो दोस्त मोहम्मद यासीन हाशमी जी कस्बा गुन्नौर मुझ फारूक अली खान से मिलने आए हैं, इस वक्त हम साथ मिलकर एफएम सुन रहे हैं। ऑल राइट, बहुत अच्छी बात है जी, आप सब लोग साथ बैठे हैं और साथ मैसेज शो भी सुन रहे हैं और अपने मैसेजेस भी सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच जी, इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। और अशोक विहार से भुवनेश मैसेज भेज रहे हैं, अशोक विहार दिल्ली से लिख रहे हैं, हाउ आर यू ऑन टुडेज़ टॉपिक, आई वुड लाइक टू से दैट द ह्यूमन गूगल इन माई लाइफ आर माई पेरेंट्स, माई सिस्टर एंड माई बेस्ट फ्रेंड, वेन एवर आई टॉक टू दैम आई फील लाइट एंड ऑल माई टेंशन गेट रिजॉल्व। दैट इज सो ट्रू, मैंने कहा ना कि आपको ह्यूमन गूगल है ना, वो आपके घर में ही, आपके दोस्त यही सब है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आपके घर में ही इतने सारे लोग हैं जिनसे आप मदद ले लेते हैं और आपको इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यू नो इट्स ग्रेट। और एक मैसेज और पढ़ लेते हैं, ये मैसेज हमें भेजा है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, लिख रहे हैं कि माता पिता से बड़ा कोई शिक्षक सलाहकार नहीं होता, निस्वार्थ भाव से माता पिता से बड़ा कोई प्यार करने वाला भी नहीं होता, दैट इज़ सो ट्रू, और उनसे बड़ा गूगल ह्यूमन गूगल कोई भी नहीं होता, ये भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, अब एक मैसेज मेरे पास आया है और अब मुझे इनका नाम नहीं पता, और ये मैसेज भेज रहे हैं जर्मनी से, ऑलराइट, बट इन्होंने मेरा नाम दो दो बार गलत लिखा है। इन्होंने पहले मुझे बोला है विकास जी, विकास हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और फिर आदित्य जी, लेकिन मेरा नाम निखिल है। और मैसेज पढ़ लेता हूँ इनका, लिए मैसेज लिखते हैं कि माता पिता से बड़ा और विश्वसनीय कोई भी हमारा सहारा संभव नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद से मेरी पत्नी ने हर मुश्किल समय में संभालने में मेरा पूरा साथ दिया है, धन्यवाद। थैंक यू सौरभ, बहुत अच्छा मैसेज है आपका, और वही आपके गूगल भी हैं ऐसा मुझे लग रहा है। अंशी का मैसेज आया है हमें हस्तिनापुर मेरठ से, लिखते हैं कि आज के टॉपिक पर ये कहना चाहूँगी कि जब बात ह्यूमन गूगल की आती है तो मेरी तो सर मैं तो अपनी बहन काजल से सब बातें पूछ लेती हूँ, वही सारे सजेशंस देती है और मुझे हमेशा मदद मिल जाती है। थैंक यू सो मच अंशी आपके मैसेज के लिए, और भी मैसेजेस हैं आए, सब मैसेजेस पढ़ूंगा, आपसे वादा है मेरा, लेकिन अभी गाने का वक्त भी हो चुका है ना, तो एक गाना सुन लें। और अब की बार हम मतलब मम्मी की तो हमने बात कर ली ना, अब एक गाना है पापा, और ये गाना यू नो इट्स यू ऑल नो और आई एम नो मतलब आई नो दैट आई एम गोना सिंग अलॉन्ग और यू विल ऑल्सो सिंग अलॉन्ग, क्योंकि ये गाना है ही इतना प्यारा कि आप सब इस गाने को जानते हैं भाई, ये तो फेवरेट पापा का गाना है।

पापा कहते हैं बड़ा लाभ करेगा, और ये तभी सोचते हो जब हम उनके पास कुछ क्वेरी लेके जाते हैं और वो पट से जवाब दे देते हैं कि भाई अब तो मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तो तुम्हें नाम करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यू हैव ऑल द आंसर्स। और मैसेजेस पढ़ लेते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। ये मैसेज हमें भेजा है कंगन हेड़ी से, अमन बाउट ने, और अमन आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट करिए, बट ये सॉन्ग रिक्वेस्ट शो नहीं है। हमारे पास बहुत सारे शोज आते हैं, मेरा वाला गाना हो गया, और भी बहुत सारे शोज हैं जहाँ पे आप अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं गाने की, तो डेफिनेटली वो आपको सुनाएंगे। बट आप शो सुन रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इरशाद अहमद शाह शाहजहाँ बेगम कस्बा बिलराम से मैसेजेस भेज रहे हैं और कह रहे हैं इरशाद साहब कि मेरी गूगल पार्टनर मेरी वाइफ या मेरी बीवी हैं, और लिख रहे हैं कि उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच। और ये मैसेज हमें भेजा है मोहम्मद सरफराज आलम ने, और कह रहे हैं कि आपने संदेश पढ़ा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, और सरफराज साहब सबसे पहला मैसेज मैंने आपका ही पढ़ा था शो में, तो ये मैं कंफर्म कर देता हूँ। और मतलब आप शो नहीं सुन पाए इसके लिए आई एम सो सॉरी, बट अब अगर अभी आप शो सुन रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैसेज हमें भेजा है हमारे दोस्त प्रेमचंद प्रेमी जी ने धामपुर से, और लिख रहे हैं कि नमस्ते, आज का टॉपिक नहीं सुन पाया, अभी सुना है। ओके, कह रहे हैं कि आज के टॉपिक पर यही कहूँगा कि एक बुज़ुर्ग हमारे रिश्तेदार हैं दादाजी, जब भी कहीं भी किसी भी बात का लेकर मैं संशय में होता हूँ या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनसे पूछ लेता हूँ, वो बिल्कुल करेक्ट बताते हैं, यानी कि मेरे ह्यूमन गूगल मेरे दादाजी श्री प्रकाश वीर सिंह जी हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। और देखिए आप लोग फिर कहेंगे कि मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, आप दोनों दोस्तों का मैसेज फिर से बैक टू बैक मेरे पास आया है। ऑलराइट, और अगला मैसेज है डॉली का, और डॉली लिखती है कैसे हैं, भगवान जी की कृपा से मेरे सवालों के जवाब अपनों से ही मिल जाते हैं, कम ही होता है कि किसी से कुछ पूछूं। ओके, अपने आप इनको अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके ह्यूमन गूगल आप खुद हैं, ये मतलब ऑल राइट, एंड हो भी सकता है भाई, आप कभी कभी क्या होता है ना कि खुद बैठो अकेले में सोचो तो सब जवाब आपके पास खुद ब खुद मिल जाते हैं। कुलदीप वर्मा जी हम इस तरफ हेलो लिख रहे हैं, तो कुलदीप जी, और जिन्होंने भी अभी भी ट्यून इन किया, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है।

0: अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है, अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है और आज का टॉपिक आपसे मिस हो गया है, तो भैया आज का टॉपिक यही है कि आपकी लाइफ में वो कौन है जिनको आप एक गूगल की तरह यूज करते हैं, जिनसे आप सारे सवाल, सारी परेशानियां, कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी हो आप सीधा उनके पास जाते हैं और उनके पास बाकायदा सारे सवालों के जवाब भी होता है। होता है ना, घर में हम पूछते हैं कि भाई जाओ उनको पूछ के आओ, उनको सब पता होगा, या कहीं जाना होगा तो उस रास्ते कैसे जाएं, या क्या वहां की बस कल अवेलेबल होगी, या फिर ट्रेन की टिकट जो है वो अवेलेबल होगी। बहुत सारी चीजें होती है जो कोई ना कोई जवाब लेकर बैठा होता है हमारा ह्यूमन गूगल। तो आपको मुझे बताना है 9868107070 पे। और बहुत सारे लोग मेरा नाम या तो गलत ले रहे हैं या फिर वो कह रहे हैं कि आपका नाम नहीं सुना, बट मैं तो कई बार अपना नाम बोल चुका हूं, एक बार और बोल देता हूं। मैं हूं आपका अपना म्यूजिकल हमसफर आरजे निखिल वर्मा, है ना, अब आपको नाम याद हो गया। ऑलराइट, अगला मैसेज पढ़ते हैं। ये मैसेज भेजा है वेस्ट बंगाल से सादिर ने, इस्लामपुर वेस्ट बंगाल से भेजे हैं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम या कुछ भी जानकारी चाहिए होती है तो मैं अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ, वो दिल्ली में रहते हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। ऑलराइट, दोस्त का नाम बता देते हैं, उनकी तारीफ हो जाती भाई। और एक मैसेज और पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको एक छोटे से ब्रेक पर ले जाऊंगा और उसके बाद सॉन्ग, है ना। ऑलराइट, मुझे भी ब्रेक चाहिए। लिख रहे हैं कि नमस्ते जी, मैं नवलू वरक फ्रॉम मलपण गोवा से, मैं इस वक्त सुन रहा हूँ आकाशवाणी रेनबो चैनल पर मैसेज मसाला मिक्स, और प्रोग्राम बहुत अच्छा है और प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, थैंक यू जी। बट अगर आप ये भी बता देते कि आपकी लाइफ में ह्यूमन गूगल कौन है तो वो भी अच्छा होता है ना। ऑलराइट, और ये मैसेज एक और ले लेता हूँ, छोटा सा मैसेज, मैसेजेस बहुत है, मैं क्या करूँ, हर बार बोलता हूँ ये लास्ट मैसेज है, लेकिन ये मैसेज पक्का लास्ट है, इसके बाद ब्रेक भी लेना है मुझे। और ओके, ये मेरी ही तारीफें हैं तो ये मैं अपने तक रखूँगा। थैंक यू सो मच नरेंद्र सोनी भाई, आपने इतना कुछ लिखा और आपको आवाज़ अच्छी लग रही है, तो थैंक यू सो वेरी मच। और इसके बाद बहुत सारे मैसेज आए हमारे दोस्त काट से, मोहम्मद फुरकान साहब के, और उन्हेल जिला से भेरूलाल बख्तारिया जी का भी मैसेज हम तक पहुँच गया है। साथ साथ महेश बोहरा अजमेर से लिख रहे हैं, जिला खांडवा मध्य प्रदेश से भी हमें मैसेज आया है, दुर्गेश नागानपुरे जी का, गुड्डू धाकर साहब का भी मैसेज आया है। तो ये सारे मैसेजेस जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा है एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। आप सुनते रहिए, जुड़े रहिए हमसे, और शो मैसेज मसाला मिक्स यूँ ही जारी रहेगा, बस इस गाने के उस पार, मतलब एक ब्रेक, उसके बाद गाना, फिर मिलते हैं। ऑलराइट,
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, हम भी आपके यार हैं, आपके दोस्त हैं, जो दिल से दिल तक कनेक्शन बना के रखते हैं 24/7 आपके लिए, हर इन्फॉर्मेशन, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं। और मैसेजेस आ रहे हैं आपके, ये मैसेज हमें आया है भैरूलाल वक्तारिया धाकड़, उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं कि हमारा गूगल तो आकाशवाणी है, सुबह से रात तक आकाशवाणी के बहुत सारे स्टेशन सुनता हूँ जिसमें समस्त जानकारी मिल जाती है। ऑलराइट, वो तो हम हैं आपके लिए। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे जी ने बस अपनी अटेंडेंस लगाई है, शो सुन रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हमारा मैसेज आया है गुड्डू धाकर साहब का, मध्य प्रदेश जिले उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से लिख रहे हैं कि न मेरा ह्यूमन गूगल लिख रहे हैं कि मेरा ह्यूमन गूगल मेरे लड़के का दोस्त है और सामाजिक रीति रिवाज के लिए मोहल्ले में एक अम्मा है, हम उनसे पूछते हैं। मैंने कहा था ना कि हमारे आसपास ही सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत कहीं पर नहीं भी पड़ती, मतलब पड़ती है ऑब्वियसली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जब सब रिसोर्सेज हमारे आसपास हो ह्यूमन फॉर्म में तो फिर कई बार नहीं भी पड़ती है ना। ऑलराइट, और ये मैसेज हमें भेजा है मोहम्मद इम्तियाज़ एंड सलमा बेगम जवाहर कैंप से कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं कि वैसे तो जब से पेरेंट्स चले गए हैं तब से कोई भी नहीं है हमारा ह्यूमन गूगल। मैं खुद ही अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अब किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं है, वक्त के साथ सब बदल गया है। बट ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि अभी जैसे डॉली ने भी कहा था कि कई सारे सवालों के जवाब आपको अपने पास से ही मिल जाते हैं, अपने आप से मिल जाते हैं, तो हमें कई बार नहीं भी ज़रूरत पड़ती, तो इट्स ऑल राइट एज फार एज आप खुश हैं, आपको जवाब मिल रहे हैं तो ठीक है। ये मैसेज भेजा है हमें फिर से हमारे दोस्त नरेंद्र सोनी जी ने, लिख रहे हैं कि जब गूगल भी नहीं होता था तब से हम केवल और केवल आकाशवाणी को ही अपना सबसे सच्चा और ज्ञानवर्धक जानकारियों का खजाना मानते हैं।

हैं, थैंक यू जी, और हम हैं, तभी तो इतने साल हो गए हैं, 90 से ऊपर, यू नो, अब साल होने वाले 90 साल हो चुके हैं, एंड हम 100 वर्ष शताब्दी की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इससे बड़ा तो खजाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये मैसेज हमें आया है मोहम्मद फुरकान का, लिख रहे हैं कि टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं गूगल से भी कहीं ज़्यादा परफेक्ट अपनी मम्मी को समझता हूँ, मुझे बिजनेस के सिलसिले में कई बार बाहर जाना हो या कस्टमर से कोई डील करनी हो तो मैं अपनी मम्मी से ही पूछता हूँ, और यकीन मानो गूगल से कहीं ज़्यादा जानकारी मम्मी के पास होती है और वो सब बातों का जवाब देती है, और वो जवाब परफेक्ट भी होते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, है ना। तो थैंक यू सो मच, और मैसेजेस मैंने पढ़ लिए हैं अब तक जितने आए थे, थैंक गॉड मैंने किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया है, और अभी भी आप मैसेज भेज सकते हैं बिकॉज वी हैव गुड अबाउट 10 मिनट्स, है ना। और अभी जो मैं आपके लिए सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सबके बारे में बात कर दी है, तो भाई हम अब एक गाना जो है ना, वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी, मतलब जो कई लोगों ने बोला है कि उनके लाइफ पार्टनर उनके लिए उनका गूगल पार्टनर है, उनके ह्यूमन गूगल फॉर्म है, तो एक गाना बहुत ही अच्छा है श्रेया घोषाल और टोची रायना की आवाज़ में, वन ऑफ माई फेवरेट्स एज वेल, इन्जॉय।

जी हाँ, धीरे धीरे शो का जो वक्त है वो भी खत्म होने वाला है और अब मैं लूँगा आपसे विदा। लेकिन आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको सॉन्ग्स पसंद आए, शो पसंद आए, थीम पसंद आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि ह्यूमन गूगल जो है ना आपके आसपास ही होते हैं, और कभी कभी गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात हमने बहुत सारी कह ली, लेकिन क्या हमें ये भी रियलाइज़ हुआ कि इंटरनेट पर डिपेंडेंसी है पर इतनी भी नहीं। अगर हम अपनों से बात करने लगें तो शायद जो बातें जो हमने अपने बीच में बैरियर्स बना दिए हैं खाम खा के, वो दूर हो जाए। हर चीज़ के लिए बड़ों को नज़रअंदाज करना और

नेट पर रिलाई करना वो कम हो सकता है, बिकॉज यू ऑल नो, आपने खुद ही जवाब दिए है ना। तो बस उस फासले को, उस जो गैप को है वो आपके और अपने अपनों के बीच, अपनों के दरमियाँ, उसको आज बस ये सोच के ख़त्म करना कि अभी कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी ना तो उस इंसान को ढूंढूंगा जो मुझे वो जवाब दे सके इससे पहले कि मैं इंटरनेट पर जाऊँ। बस इतना ही आपको करना है। छोड़े जा रहा हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे गाने के साथ और मिलूंगा आपसे फिर मैसेज मसाला मिक्स में। अभी सुहासिनी आएंगी लेकर अगला प्रोग्राम, तो आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना हमारे साथ और सुनते रहना है आकाशवाणी रेनबो। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ, योर सेल्फ एंड एवरी वन अराउंड यू। बाय, मिलता हूँ आपसे 8 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशेल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुम

0: मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: Yes, we bring it to you only on Akashvani Rainbow. मैं हूँ आपके साथ, आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा। शो का नाम है म्यूजिक मस्ती एंड हम आपके लिए लेकर आएंगे एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स जिसमें म्यूजिक के साथ साथ मस्ती, डांस और हिट नंबर्स भी होंगे। ये गाना आप सबके लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, बिकॉज म्यूजिक मस्ती में बैक टू बैक डांसिंग ट्रैक्स आप सबके लिए।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: यस, म्यूजिक मस्ती ऑन है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। मैं आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हमसफर आर्चिल वर्मा।

0: टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मोर म्यूजिक मोर मस्ती। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। मैं हूं आपका अपना म्यूजिकल हमसफर आर्ज निखिल वर्मा।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: सकता हूँ।
1: उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आने का नहीं जी, जाने का वक्त हो गया है मेरे, और आपको छोड़े जाऊंगा तो बैक टू बैक ट्रैक्स के साथ विनीता रहेंगे आपके साथ अगले प्रोग्राम में, अगला प्रोग्राम आपकी याद आती रहे। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और मिलूंगा आपसे बहुत जल्द इसी जगह इसी चैनल पर। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, एंजॉय द प्रोग्राम और दो सॉन्ग्स जो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। बाय बाय।

आकाशवाणी रेनबो की इस खास पेशकश आपकी याद आती रही में आज आपके साथ हूं मैं आपके दोस्त विनीता बेदी। दोस्तों, कुछ शामें ऐसी होती हैं जो ढल तो जाती हैं मगर भीतर कहीं ठहर जाती हैं, जैसे किसी पुराने खत में दबा गुलाब जिसकी खुशबू बरसों बाद भी उंगलियों में उतर आती है। आज की ये महफिल उन्हीं गीतों के नाम है जो प्रेम को कभी भी शोर नहीं बनने देते, बस चुपचाप किसी धड़कन की तरह साथ चलते रहते हैं। तो आइए यादों की इस भीगी पगडंडी पर पहला कदम रखते हैं। शुरुआत उस गीत से जिसमें सांझ का रंग है, बिरह की नमी है और ऐसा जैसे धुंध में जलता कोई अकेला दीपक। लगा आपको कभी?

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही। और दोस्तों, कभी कभी शाम जो है ना, वो केवल दिन का अंत नहीं होती, वो दो दिलों के बीच की सबसे लंबी दूरी भी होती है। जब कोई पास होकर भी जैसे बहुत दूर लगता है, ऐसी ही एक सांझ का एहसास। फिर मन में आते हुए अनेक सवाल, बार बार वापस लौटने की ऐसी मजबूरी, जैसे लहरों पर लौट कर आती बांसुरी की धुन हो गई।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। ये यादें भी ना बड़ी अजीब होती हैं, ना तो पूरी तरह लौटती हैं और ना ही पूरी तरह ठहर जाती हैं, बस बिना बताए मन की खिड़की पर बैठी रहती हैं, बारिश की किसी पहली बूंद की तरह। और जब दिल सचमुच किसी को महसूस करता है ना, तो वो सवाल नहीं पूछता, बस धीरे से कहता है कि कैसी है ये रुत तड़पाने वाली।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं।

की याद आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सिर्फ नजरों से जिए जाते हैं। दो आंखें और उनमें छुपी हुई एक पूरी दुनिया। अगला गीत मासूमियत की उसी खामोश भाषा को समर्पित है, जहां यादें उन निगाहों में टिक कर रह गईं।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। कुछ प्रेम कहानियां दोस्तों कभी पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कभी अधूरी भी नहीं लगती। उनकी कसक ही उनका सौंदर्य बन जाती है। सच कहूं तो अब जो गीत मैं आपके लिए बजाने वाली हूं ना, उसमें आंखों की भाषा है, टूटे हुए सपनों की चुप पीड़ा है, और एक ऐसा दर्द है जो सुनने वाले के भीतर उतर जाता है और वाकई में एक एहसास कायम हो जाता है कि कुछ दर्द कभी दिल से नहीं उतरते, कुछ यादें कभी दिमाग से नहीं जाती, और कुछ लोग शायद हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उन्हीं की तो यादें हैं जो रात भर तड़पाती हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दोस्तों, हवा जब पुराने दिनों को छू कर आती है हल्के से, तो सिर्फ पर्दे नहीं हिलते, दिल के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। गुलजार साहब के शब्दों और लता जी की आवाज में अब सुनिए तन्हाई की ये बेमिसाल सरगोशी। आपकी याद आती रही, विनीता बेदी के साथ।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, जिंदगी का सबसे कठिन सच शायद यही है कि जो पल अभी हमारे साथ है वो कल सिर्फ याद बनकर रह जाएगा, लेकिन कुछ आवाजें, कुछ गीत समय से परे चले जाते हैं। और जब भी दिल अकेला होता है ना, तो जाने क्यों, जाने कैसे, चुपचाप धीरे से लौट आते हैं। क्यों, कुछ नहीं पता।

दोस्तों, किसी का साथ कभी कभी आदत नहीं, इबादत बन जाता है। हर रास्ता, हर मौसम, हर गीत उसी तक जाकर ठहरता है और फिर दिल बस यही कहता है कि हाँ, तुमसे ही। और इसी के साथ आपकी याद आती रही। मैं आज इतना ही। यादों के ये दीप यूं ही जलते रहें और संगीत आपके जीवन में हमेशा एक कोमल उजाला बनाए रखे। विनीता बेदी को दीजिए इजाजत आपकी याद आती रही समाप्त करने की। मिलते हैं अभी रंग महफिल की महफिल में।

0: साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होगा। यह पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि इस्तीफे पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी और ईंटों की गहनों का पूरा हिसाब किताब में मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई जारी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंश को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच भारतीय समयानुसार सुबह 2:30 बजे से शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अपने अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। देविका सिहा, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज एंड द टाइम बाय स्टूडियो क्लॉक इज 10:05 एंड 49 seconds. Welcome to the Western Music Program that is In the Groove with me, Suhasini. So let's begin, as I promised that I'll be playing Eagles with Hotel California.

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: मिल गया है बबई। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक एंड आफ्टर दैट लिटिल ब्रेक एंड लेट्स मूव ऑन टू फ्यू मोर मैसेजेस दैट आई हैव। एंड आई हैव अ मैसेज फ्रॉम अंकुर मेहता। ही सेज दैट क्यूटी प्लीज प्ले रॉकसेट। ओके, आई विल डेफिनेटली ट्राई इफ आई कैन स्क्वीज इन दैट रिक्वेस्ट। एंड वेरी नाइस शो एंड ऑल सॉन्ग्स आर ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच। दैट इज फ्रॉम गाजियाबाद, मनोहर लाल गांधी, विजयनगर। You're welcome to the show and I'm hoping that you're enjoying the program as well. And M. Rajkumar from Trichy also said in, says, good evening, Arjun Suhasini, glad to catch you on In The Groove. Yes, I'm so happy to be here. And also I have a message from Anubhav from Bihar and he says that, hello dear, I'm listening to you right now and welcome to all of you on the program. But let's start with none other than Kurt Cobain singing The Man Who Sold The World, Nirvana, and of course Shania Twain and Bee Gees. Don't go anywhere. Stay tuned to Akashwani Rainbow on the show In The Groove.

0: उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम है रंग महफिल। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ अल्फाज पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और कुछ गजलें सुनी नहीं जाती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। आज की शाम भी कुछ ऐसी ही है, जहां चांदनी की खामोशी है, यादों की हल्की सी आहट है, और दिल के आईने में ठहरी हुई कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। आइए उन अशार और सुरों की दुनिया में चलें, जहां हर मिसरा किसी दिल की धड़कन बन जाता है और हर गजल किसी अधूरी दुआ की तरह देर तक हमारे साथ रहती है। रंगे महफिल में आज विनीता बेदी के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी रेनबो पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। और

रंग महफिल की महफिल में आप हैं आज विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जिन्हें जितनी बार पलटिए हर बार कोई नया दर्द, कोई नई मुस्कुराहट सामने आ जाती है। और दोस्तों, ख्वाहिशों का भी अजीब मिजाज है, पूरी हो जाएं तो नई जन्म ले लेती हैं और अगर अधूरी रह जाएं तो उम्र भर साथ निभाती हैं। कहते हैं ना, हसरतों का भी अपना एक शहर होता है, हसरतों का भी अपना एक शहर होता है जहां हर ख्वाब अधूरा होकर भी जिंदा रहता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं प्रोग्राम रंग महफिल में और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मोहब्बत कभी आवाज नहीं देती, बस खामोशी से दिल में उतर जाती है और जब कभी भी लौट कर आती है ना तो अक्सर याद बनकर रह जाती है। दोस्तों, कुछ रिश्ते मुकम्मल होकर भी अधूरे रह जाते हैं और कुछ अधूरी मुलाकातें उम्र भर साथ चलती हैं। इन्हीं एहसासों को दिल से महसूस कीजिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में और देखिए तो ये गज़ल में वो क्या दीवानगी की बात करते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग महफिल विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, सच तो ये है कि दौलत से घर सजते हैं लेकिन दिल नहीं। दिल को तो बस मोहब्बत, अपनापन और सुकून चाहिए। जिसके हिस्से में कनात की रोशनी आई, वही फकीर होकर भी सबसे अमीर निकला। लीजिए पेश है जगजीत सिंह की दिलनशी आवाज में खूबसूरत गजल।

मक्ता पेश कर रहा हूँ। ये एक ऐसे शायर हैं जो वैसे अरब हैं, कुवैती हैं, लेकिन उनकी तालीम अलीगढ़ में हुई है। उर्दू शायरी का काफी शौक है उन्हें। खालिद उनका तखल्लुस है। खालिद

दोस्तों, जब उम्मीद का आखिरी दिया भी टिमटिमाने लगे तब शायरी दिल का हाथ थाम लेती है, और शायद इसी वजह से गजलें सदियों बाद भी ताज़ा ही लगती हैं। दोस्तों, अंधेरों से शिकायत कैसी, रोशनी की तलाश ही जिंदगी है ना? और अब आज की महफिल यहीं तक। रुखसत होने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी आपसे कि महफिलें ख़त्म हो जाती हैं मगर एहसास नहीं, सुर थम जाते हैं लेकिन उनकी गूंज कहीं खोती नहीं। इसी गूंज, इसी खुशबू और इसी शायराना सिलसिले के साथ अब विनीता बेदी को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता

0: अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इसके तहत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इस पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थीं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही थीं। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:05 और 41 सेकंड हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो और शोल, लेकर हाजिर हूं मैं एसएम शरीफ आपके साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के

से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थी और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल चेतावनी दी कि जो कोचिंग सेंटर जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें दिल्ली में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो मैसेज में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत रेगुलेटरी कानून लाएगी ताकि ज्यादा सख्त निगरानी, बेहतर जवाबदेही और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों को पूरा करने के लिए एक महीने का समय दिया जा रहा है। दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे उनकी संख्या 900 हो या 1000, संख्या मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी और उनकी सुरक्षा कैसी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी तरह की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की जानकारी ईमेल, मैसेज या फोन के जरिए दे सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बात की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा TET परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली से TET प्रश्न पत्र लाए थे और कथित तौर पर उन्हें लगभग 1.5 करोड़ के सौदे में बेचने की तैयारी कर रहे थे। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:05 और 43 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: सगरे गाँव की गोरिया
1: पुछू पुछू मैं छोड़ रहा।

0: है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जेवर में 6,750 करोड़ रुपए की 2 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में जेवर

31 साल की शालू और 55 साल की माधुरी इलाज के लिए मोटरसाइकिल से गोरखपुर जा रहे थे। आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ये दुर्घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हाटा पिपराइच रोड पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर एम अभिषिक्त किशोर और शहर के पुलिस आयुक्त शंखव्रत बागची ने 30 जून को भारत की राष्ट्रपति की विशाखापत्तनम यात्रा के लिए कल सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने INS डेगा, राष्ट्रपति के यात्रा मार्गों और नोटेल के बैठक स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सभी विभागों को प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने और सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, बिजली, पेयजल, चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अचूक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात मार्ग में परिवर्तन, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और निगरानी सहित व्यापक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पाकिस्तान के कराची में घनी आबादी वाले गुलिस्तान जौहर इलाके में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें कल 3 पैरामिलिट्री जवान मारे गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे से शुरू होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:05 और 37 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट ने भी पुष्टि की दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि भारत ने पिछले 12 सालों में हेल्थ केयर के क्षेत्र में

0: डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम 15 अगस्त से पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा, जिसमें हर नागरिक के लिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधा होगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों तक की हेल्थ केयर सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने चेन्नई पोर्ट के जरिए चीन में बने पटाखे और आतिशबाजी के सामान भारत में तस्करी करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान निदेशालय के अधिकारियों ने चीन से आए 2 40 फीट के कंटेनर रोके, जिनके बारे में गलत जानकारी दी गई थी। उनमें ट्रॉली बैग और स्पिरर हैं। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि इन कंटेनरों में करीब 46,000 पटाखे और आतिशबाजी के सामान छिपाकर रखे गए थे, जिन्हें चालाकी से अन्य सामानों के पीछे छिपाया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक समय हुआ है 3:05:09। आइए अब सुनते हैं मिडनाइट मेलोडीज़।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक

0: लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28

0: जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो ना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें, ताकि भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA के तहत मिल रहे नए मौकों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत यूके पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बिजनेस प्लीनरी की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बात की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा TET परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान कल एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि

मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले दो दिनों में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आंधी चलने की आशंका प्रकट की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हमनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे ब्रिटेन की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें, ताकि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता के तहत मिल रहे नए अवसरों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत ब्रिटेन व्यापार सत्र की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में दोनों देशों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए CETA का एक क्रांतिकारी फ्रेमवर्क के तौर पर स्वागत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा TET परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव शॉ और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 सालों में स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। देश सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा के बड़े लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है, ताकि हर नागरिक को आसानी से और सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। राज्य मंत्री ने इसका ब्यौरा दिया। एक प्राइवेट मीडिया चैनल में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण में उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य योजना को लेकर नजरिया बदला है। अरुणाचल प्रदेश में केई पानीयोर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान कल एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले के उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन केमिन मार्ग अब भी बंद है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। श्रोताओं, वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।